0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: पंकज जी कोटा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी लोग तीर्थ स्थान पर तीर्थ यात्रा करते हैं जबकि भगवान सभी जगह हैं, कण कण में हैं, तो धार्मिक स्थलों पर जाना चाहिए या नहीं महाराज जी?
2: मेहंदी में लालिमा होती है ना, पर मेहंदी के पूरे पेड़ को चीर डालो कहीं लालिमा दिखा दो तुम तुम्हें सामने है ना, उसकी एक प्रक्रिया है ना। उसके पत्ते तोड़िए, उसको बांटिए, बांट के लगाइए, आधा घंटा लगा रहने दीजिए, फिर धो दीजिए। तो आपको दूध में घी है, पूड़ी पका सकते हो, लेकिन घी है उसी में। उसकी एक प्रक्रिया है, उसको दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकालो, फिर उसको तप्त करो, तब वो घी बन जाएगा। समझ रहे ना? ऐसे परमात्मा सर्वत्र है, चीर फाड़ डालो किसी को कहीं भी अगर मिल जाए तो बताओ। उसकी प्रक्रिया है साधना। साधना के लिए हमें पवित्रता चाहिए, तो हम भगवान के परम पवित्र दिव्य स्थानों में जाते हैं, हरिद्वार, काशी, इनमें हमें पवित्रता मिलती है। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो हमारे अच्छे भाव होते हैं, तो वो भाव भगवान को समर्पित हो जाते हैं और हमें भगवान का अनुभव हो जाता है। जब हमारा भाव बन जाए ना, तो हम कुत्ते से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव बन जाए तो हम ईंट से भी भगवान प्रकट कर सकते हैं। हमारा भाव ना बने तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखाई दे रहे दुर्योधन को। दुर्योधन का भाव नहीं है भगवान के प्रति। तो श्री कृष्ण को एक बहुत विद्वान प्रवीण यदुवंशी समझता, वो भगवान नहीं मानता, दुर्योधन भगवान नहीं मानता। जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो बंदी बनाने की कोशिश की, वो भगवान को मनुष्य मानता रहा, कभी भगवान नहीं माना। तो बात समझ में, ये जो तीर्थ बने हैं ये पावर है, अध्यात्म के पावर है। जैसे गंगा जी नहा के आप देखो कैसा लगता है, एकदम फ्रेश, लेकिन नियमानुसार। अब गए कुल्ला कर रहे हो, थूक रहे हो और मल रहे हो, साबुन लगा रहे हो, कोई अनुभव नहीं होगा। गए साष्टांग दंडवत किए, माथा में जल रखा और गए चुपचाप 5, 7, 11 डुबकी लगाई, एकदम बाहर हो गए, देखो एकदम आनंद आएगा। वृंदावन आयो, परिक्रमा लगाओ, बिहारी जी के दर्शन करो, किसी का दिया हुआ कुछ खाओ मत, रजरानी लगाओ, नाम जप करो, जब जाओगे तो एक अच्छा अनुभव होगा, एक आनंद अनुभव होगा। अब यहीं आओ, इधर उधर सब गंदगी करो, तो जब जाओगे तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। ये परम पवित्र स्थान बनाए गए हैं कि हमको अध्यात्म का सहयोग मिले, हमारे जो गलतियां हो गई, पाप हो गए, वो नष्ट हो जाए। भगवान सर्वत्र है, पर जैसे दूध में सर्वत्र घी है, दूध से काम नहीं चल सकता, उसका प्रक्रिया। तो ऐसे प्रक्रिया का मतलब साधना। तो साधना का प्रारंभ करने के लिए हमें जो पवित्रता चाहिए, वो गंगा है, काशी है, जो बड़े बड़े तीर्थ है, इनमें इसीलिए जाया जाता है कि हम गृहस्थ हैं, हमसे कोई ना कोई पाप बन जाते हैं, तो इन तीर्थों में जाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं, हमारे पुण्य बनते हैं, हमारा हृदय पवित्र होता है। अवश्य जाना चाहिए, पर जिस पद्धति से रहना उसी पद्धति से रहना। हर तीर्थ में एक दिन उपवास करना चाहिए, अगर 3 दिन वास करे तो 1 दिन उपवास करना चाहिए, दूसरे दिन फलाहार करना चाहिए, तीसरे दिन अन्नाहार करना चाहिए, 1 दिन तो प्योर पूरा ऐसे जल पे रहना चाहिए या ऐसे कष्ट सहना चाहिए तीर्थों में जाकर। 1 दिन उपवास करो, वृंदावन की परिक्रमा करो, बिहारी जी के दर्शन करो, यमुना स्नान करो, यमुना जी के पास बैठकर नाम कीर्तन करो, नाम जप करो, ये कमाओ। जो तीर्थ स्थानों में परम पवित्र भाव कमाए जाते हैं, वो लेकिन बड़ा विचित्र है, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी बात करेंगे, यमुना किनारे भी बैठकर गंदी क्रियाएं करेंगे, इधर उधर सब गंदी बातें करेंगे, तो धाम का फिर लाभ कहाँ मिल पाएगा? तो समझ पाते हो, जरूर जाना चाहिए।
3: तो महाराज जी जैसे इतने बड़े बड़े तीर्थ स्थल है, कभी कभी वहाँ पे अनहोनी हो जाती है, इंसान भगवान को पाने जा रहा है।
2: आप हमारी बात सुनो, अनंत जन्मों से भटका हुआ जीव, शरीर तो छूटना ही है, राइट टाइम है शरीर का, और अगर वो हरिद्वार में शरीर छोड़ता है, वो वृंदावन में शरीर छोड़ता है, काशी में छोड़ता है, उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कितना बढ़िया लाभ मिला, शरीर तो छूटना ही था, लेकिन शरीर ऐसी जगह छूटा कि भगवान की प्राप्ति हो गई। तो इसमें लाभ हुई कि हानि हुई?
3: लाभ।
2: हाँ, तो हमें निगेटिव नहीं सोचना, हमें पॉजिटिव सोचना है। काशी है, वृंदावन धाम है, हरिद्वार है, गंगा का तट है, यमुना का तट है, इनके किनारे प्राण निकलते हैं तो जीव की उत्तम गति होती है। प्राण तो निकलने थे लेकिन यहां निकले, ये उत्तम गति हुई। जैसे आपके 100 रुपया जेब से बिहारी जी के सामने कट गए तो निश्चित मान लो करोड़ों का नुकसान होना था। आप वृंदावन आए तो धाम की कृपा से मात्र 100 रुपये में वो कार्यक्रम हो गया तुम्हारा। अब वो अगर तुम पॉजिटिव नहीं सोचते तो निगेटिव सोचकर जलोगे, तुम आए ना तो तुम्हारा मंगल हो गया, करोड़ों का नुकसान भगवान ने 100 रुपये में निपटा दिया। या ठोकर लगी, थोड़ी चोट लग गई, बहुत बड़ी हानि थोड़ी सी चोट में निपटा दी। उसे हम निगेटिव क्यों सोचे, उसे हम पॉजिटिव सोचे। जो सत्य है, जो सत्य है, ये परम सत्य है, कोई बहानेबाजी नहीं, ये परम सत्य है। एक दो मित्र थे, एक जब सयाने हुए तो शराब पीने लगे, गंदे आचरण करने लगे, वैसे आगमन युवा खेलना शराब पीना ऐसे सब। और एक था रोज गंगा नहाने जाना, भजन करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना। तो बहुत दिनों के बाद दोनों मित्र मिले, दूर से देखा वो गंगा नहाने वाला आ रहा है, और उसने देखा कि वो हमारा मित्र जो भटक गया गंदे आचरणों में वो आ रहा है। तो जो गंगा नहा के आ रहा तो एकदम आह, नीचे देखा तो खजूर का कांटा घुस गया उसके पैर में, नंगे पैर गंगा नहाने गया था। और उसके ठोकर लगी जो पाप कर्म करता था, तो एक थैली मिली असरफियों की। तो उसने कहा रोज गंगा नहाता है, राम राम रखता है, क्या हुआ, देख खजूर का कांटा, मैं मनमानी आचरण करता हूं और देख ये थैली मिली। उसको लगा यार कि हम इतना संयम नियम से चल रहे हैं, हमें खजूर का कांटा इतना बड़ा होता है, इसलिए आज से मैं गंगा नहीं नहाऊंगा, भगवान का भजन नहीं करूंगा। तो जब किसी को संशय हो जाता है तो भगवान धर्मात्मा पुरुष का संशय निवृत्त करने के लिए कोई न कोई रूप धारण करते हैं, चाहे ग्रंथ रूप मिल जाए या कोई संत मिल जाए। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या, लाओ मैं निकाल दूं। तुम भगवान का भजन करते हो इसलिए तुम धन्य हो। तो उनका अब ये सब बातें हमको मत बताओ कि धन्य हो, धन्य वो है। तब उनका बेटा तुम्हें उसे पूर्व जन्म की बातें याद नहीं है, तुम्हारा पूर्व जन्म में इस समय तुम्हें सूली की सजा मिलनी थी, खजूर के कांटे से इसलिए निकल गई कि तुम गंगा नहाते हो, नाम जप करते हो, और इसे चक्रवर्ती सम्राट होना था, और ये अपने पाप कर्म करके बस ये आखिरी थैली है, ये जहां भोग लेगा तो इसको दुर्गति प्राप्त होगी, और तुम्हारा ये कांटा ही आखिरी है, और ये जहां हटा इसकी पीड़ा हटी तो तुम आगे परम धाम को परम लाभ प्राप्त करोगे। तो कभी कभी वर्तमान की घटनाओं में हम लोग भगवान पर अश्रद्धा कर लेते हैं, पॉजिटिव बात हम सोचे, नहीं तो हमें भगवान की इस मंगल में विधान में अश्रद्धा हो जाएगी, नहीं हो जाएगी।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
8: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
7: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल सिरी में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री कमलश्री कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
9: जी हाँ, कमलश्री कमलश्री कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
10: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
11: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
12: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
13: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
14: श्रोता लोग प्रणाम, सुप्रभात, इस सुबह सवेरे के सुहाना मौसम में स्वागत बरुआ सबके। हम हैं राउर रेडियो दोस्त दीपाली और ये हम लेके हाजिर बानी स्वस्थ वर्धक घरेलू नुस्खा। वैसे तो कार्यक्रम के नाम तो रहुआ पता ही बा, आपन देह आपन देखभाल। दोस्त लोग, ये कार्यक्रम में हम बतावेनी कुछ हेल्थ टिप्स और ब्यूटी टिप्स, तो आई श्री गणेश कही जाओ आज के शो के। दोस्त लोग, आज हम सबसे पहले बताएं प्याज के बारे में। सफेद प्याज के गुलाबी, लाल और पीला प्याज के किस्म से उत्तम मानल गईल बा। प्याज के भोजन के साथ कच्चा रूप में ही प्रयोग करे के चाहिए, ताहे कि पाके से ओके खाद्य गुण नष्ट हो जाला। प्याज एगो उत्तेजक आहार है, अतः एकर प्रयोग अधिक मात्रा में ना करे के चाहिए। प्याज के बीज से वृय के मात्रा बढ़ेला और दांत में लागल कीड़ा नष्ट हो जाला। प्याज के पत्ता में पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए, थायमिन और एस्कॉर्बिक एसिड पावल जाला। प्याज के सेवन से पेशाब खुल के आवेला और बलगम पिघलेला। औषधि प्रयोग में प्याज के रस ही प्रयुक्त होला। तो दोस्त लोग, चले जानल जाओ कि प्याज के प्रयोग से कौन कौन बीमारी से पीछा छुड़ावल जा सकेला। बाजीकरण, बाजीकरण में सफेद प्याज के छील के लुगदी बनाई और मक्खन में भूरा रंग तक तली। यदि ई तलल प्याज के एक चम्मच मात्रा रोजाना शहद के साथ सेवन कैल जाए, तो ऐसे काम शक्ति बढ़ी और यौनांग भी सबल हो जाए। ई उत्तम बाजीकरण के काम करेला। पेशाब में जलन होकल पेशाब रुकल में यदि पेशाब करते समय जलन हो रहल होके, तो एक चम्मच प्याज के लुगदी के 500 ग्राम पानी में उबाली। आज जब मात्रा आधा शेष रह जाए, तो ओकरे के ठंडा करके छान ली और वो पानी रोगी के पिलाई। ऐसे पेशाब के जलन दूर हो जाए। एक प्याज के कद्दूकस करके 10 गुना चीनी के साथ रोगी के दी। ऐसे पेशाब के रुकावट दूर हुई और पेशाब के निर्बाध प्रवाह पुनः चालू हो जाए। दिल के दौरा में प्याज पर 7 वर्ष तक शोध करे के बाद यदि 100 ग्राम कच्चा प्याज रोजाना खाई जाए, तो दिल के दौरा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, खून में थक्का बने के प्रवणता और कोलेस्ट्रॉल के बढ़ल सामान्य हो जाए, जैसे हृदय की प्रणाली सुचारू रूप से काम करे लगी। हैजा होके पे हैजा के इलाज में प्याज एगो प्रभावकारी साधन है। 5 से 6 चम्मच प्याज के रस में 7 काली मिर्च डाल के बारीक पीस ले और ये रोगी के दी। ऐसे प्यास कम लगी और बेचैनी वमन और दस्त सिरे की शिकायत भी दूर हुई। ऐसे अधिक प्रभावकारी बनावे खातिर इसमें थोड़ा सा चीनी मिला दी। खूनी बवासीर में 30 ग्राम प्याज के पानी के साथ बारीक पीस ले आ इसमें 60 ग्राम चीनी मिला के रोगी के देवे से बवासीर रोग में खून आवल बंद हो जाए। मिर्च मसाला और खटाई के प्रयोग उपचार के दौरान ना करें। दोस्त लोग अबे हमनी के जननी है संग प्याज के बारे में। अब चली जान ली हल जाओ घिग्वार यानी ग्वार पाठा के बारे में। ग्वार पाठा के पौधा स्वयं ही खेत के किनारे जंगल में या नदी किनारे पैदा हो जाला। आयुर्वेद में एक सिनग्ध भारी शीतल प्रकृति वाला तिक्त स्वाद में मधुर विपाक में कड़वा व्रीय बलवर्धक रक्त शोधक वातहर तथा नेत्र हितकारी मानल गई बा। एकर प्रयोग जिगर तिल्ली शोथ खांसी दमा कब्ज अंड वृद्धि त्वचा और रक्त विकार के दूर करे में भी सहायक मानल गई बा। यूनानी चिकित्सा में एक शुष्क गर्म कब्ज हरे वाला रक्त शोधक रज और मूत्र प्रवर्तक अमाशय के बल देवी वाला जिगर तिल्ली के विवर्धन के कम करे वाला। पाचन सुधारक नेत्र खातिर हितकारी कृमि नाशक संधि विकार में लाभकारी और बवासीर में गुणकारी मानल गई बा। घिग्वार के प्रयोग अनेक सौंदर्य प्रसाधन में भी कई जा रहल बा। एकर प्रयोग में सावधानी ई बरते के बा कि प्रसूता स्त्री जब तक बच्चा के स्तनपान करा रहल होके ता एकर सेवन ना करे। एही प्रकार गर्भवती स्त्री भी एकर प्रयोग ना करे। यदि कोनो रोग के कारण शरीर के कोनो अंग में रक्त स्त्राव हो रहा होके तब भी एकर प्रयोग वर्जित पा। यदि एकर प्रयोग निर्दिष्ट मात्रा से अधिक कर लियल जाए तो दस्त और मरोड़ शुरू हो जाए। तो दोस्त लोग चली जानल जाओ घिग्वार के रोग उपचार के बारे में। कफ विकार में यदि कफ अधिक होके छाती में रुकल होके और बाहर निकले में कठिनाई होके तो घृत कुमारी के रस छाती पर मली ऐसे आराम मिले। खांसी में 1/2 चम्मच ग्वार पाठा के रस लेके उसमें 1/4 भाग सौंठ और 1/4 भाग काली शहद मिला के पिलाई। चोट लागे पे घाव के स्वच्छ करे के बाद घाव पर ग्वार पाठा के रस लगाई इसे घाव पाके ना पाई। ज्वर में ग्वार पाठा के रस में हल्दी डाल के रोगी के पिलाई और पंजा तथा माथा पर ई रस के मालिश करी। साथ में रोगी के सुदर्शन चूर्ण भी दी इसे बुखार उतर जाई। दर्द और वायु विकार में ग्वार पाठा की सब्जी बना के रोगी के खिलाएं। यदि पेट में गैस रुकल होके तो ग्वार पाठा की गुदा लेके उसमें जीरा काला नमक सेंधा नमक और हल्दी मिला के रोटी बनाई और रोगी के खिलाएं। ऐसे गैस और पेट दर्द दोनों में आराम मिलेगा। विकल्प के रूप में ग्वार पाठा के बारीक टुकड़ा काट ली उसमें जीरा अजवाइन सेंधा नमक और नींबू के रस डाल के शीशी में बंद करके 5 से 7 दिन पड़ा रहेगी। जब पेट दर्द गैस और अपचन के शिकायत होके त तीन टुकड़ा मुंह में रख के ई रस के चूसी या अचार के तरह सेवन करी त ई सब रोग में राहत मिली। जिगर के सूजन में सेंधा नमक या काला नमक मिला के रोगी के ग्वारपाठा के रस पिए के दी। बवासीर में 15 से 30 ग्राम ग्वारपाठा के रस रोगी के पिए के दी। साथ ही घीग्वार के गुदा में हल्दी के चूर्ण मिला के मस्सा पर लगाई, ऐसे काफी राहत मिली। दांत में दर्द व दांत के हीले में दांत पर ग्वारपाठा के छिलका रगड़ी और चबाई, ऐसे ये दोनों रोग में आराम मिली। आग से जलन पर ग्वारपाठा के पत्ता के चीर के उनमें से गुद्दा निकाल के जलल होकल स्थान पर दिन में 2 से 3 बार लगाई, ऐसे शांति मिली और ये जलन कम हुई और ये घाव भी शीघ्र भरी। शारीरिक बल और पुष्टि खातिर ग्वारपाठा के 3 से 4 पत्ता के चीर के उनमें से गुद्दा निकाल के गिलोय और नीम के चूर्ण के 1 चम्मच मिला ली। एमे से रोजाना 2 से 4 चम्मच खाई त शरीर में बल वृद्धि हुई और शरीर पुष्टि हुई। हिचकी आवे पे ग्वारपाठा के 2 चम्मच रस में 1/2 चम्मच सौंठ के चूर्ण मिला के सेवन करे से हिचकी बंद हो जाई। सूजन में घीग्वार के पत्ता में पीसल हल्दी और जीरा डाल के लेप तैयार करी और इस सूजन के स्थान पर लगाई, ये प्रयोग कई बार करे से सूजन दूर हो जाए। यदि शरीर में कहीं गांठ फट जाए तो घीग्वार के गुद्दा में हल्दी के चूर्ण और लहसुन मिला के प्रभावित स्थान पर गरम गरम लेप करी तो ऐसे गांठ दब जाए। दोस्त लोग आज खातिर बस इतना ही, कहे कि अब उस समय आ गई बा जेमें दीपाली ली है रउआ से जाए के विदा। नमस्कार।
15: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
16: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
17: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
18: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
19: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
17: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
16: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
17: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
19: कॉल करे 87-894-18744।
20: ठक ठक।
21: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
22: अच्छा मिला ही नहीं।
21: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
23: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
21: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
23: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
24: देखिए मुझे लगता है कि आपको उन्हें बुला लेना चाहिए।
21: ठीक है डॉक्टर। मम्मी जी उठिए, खाना खा लीजिए।
25: नहीं बेटा, नहीं खा पाऊंगी। वेदिका ने फोन उठाया?
21: नहीं माँ, वो अभी उनके यहाँ देर रात हो रही होगी ना, उन्हें पता नहीं चलेगा, मैंने उनके लिए मैसेज छोड़ दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं दोबारा भी कोशिश करूंगी।
25: ठीक है बेटा, बस तू मेरे पास बैठी रहे और सुन, लॉयर अंकल को आज ही बुला ले, मैं नहीं चाहती कि कोई देर हो जाए।
21: कैसी बात कर रही है मम्मी जी, आप पहले ठीक हो जाइए और फिर ये सब काम कीजिए। चलिए आराम कीजिए।
25: नहीं बेटा,
21: मुझे कुछ नहीं सुनना, चलिए सो जाइए।
0: आई एम अनेबल टू टेक योर कॉल नाउ, सो प्लीज लीव योर मैसेज आफ्टर द बीप।
21: हाय वेदिका, मैं प्रार्थना बोल रही हूँ। मम्मी जी की तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है, 4 दिन से आपसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी उनको होश आता है तो आप ही के बारे में पूछती रहती हैं वो, और उन्होंने लॉयर अंकल को भी घर बुला लिया है। हो सके तो एक बार उनसे मिलने आ जाइए, उन्हें उन्हें अच्छा लगेगा और उनके होते सारी फॉर्मेलिटीज भी हो जाएंगी, तो वो भी सही रहेगा। हेलो,
0: हाय प्रार्थना, वेदिका हियर। आई गॉट योर मैसेज, मैं कल ही आ रही हूँ, माँ को कहना कल ही आ रही हूँ मैं।
21: ठीक है वेदिका, खुश हो जाएंगी वो, मैं उन्हें बताती हूँ, आप आइए। मम्मी जी, वेदिका आ रही है कल, उनका फोन आया था।
25: सच? बेटा अब थोड़ी भूख लगी है, कुछ खाएं?
21: जी मैं अभी लाती हूँ। यस
1: हेलो प्रार्थना जी, मैं नील। मेरे पिताजी और आपके ससुर जी बहुत करीबी थे, मैं बचपन में आंटी के पास आया करता था। आज पापा ने बताया कि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो मैंने सोचा मैं आकर मिल लूं। मैं आई कम इन?
21: जी बिल्कुल, आइए आइए ना।
1: अरे ये घर में तैयारियां किसकी चल रही हैं?
21: जी वो आज बहुत सालों बाद इस घर की बेटी वेदिका अमेरिका से आ रही है ना मम्मी जी से मिलने, इसलिए थोड़ा बहुत।
1: अच्छा, पापा बता रहे थे कि आंटी काफी सालों से बेडरिडन हैं, तो वेदिका पहले उनसे मिलने कभी नहीं आई?
21: जी वो थोड़ा बिजी रहती है ना, इसलिए मैं ही मम्मी जी के साथ रहती हूँ।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है।
2: भाभी, हाउ आर यू स्वीटहार्ट, कितना समय हो गया हमें एक दूसरे से मिले हुए।
21: हाँ वेदिका, अरे आप ये इतना सारा सामान?
2: वो ना गिफ्ट है कुछ माँ के लिए।
21: वेदिका पर ऐसे समय में गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी?
2: ओफो, हम खाली हाथ कहीं नहीं जाते, कॉन्शियस ही अलाउ नहीं करती ना। खैर तुम नहीं समझोगी, तुम तो अपनी शादी में भी कुछ नहीं लाई थी, है ना?
1: हाय वेदिका जी, आपको शायद याद नहीं होगा मैं नील हूँ, बचपन में एक दो बार आपसे मिला था, आंटी से मिलने आया।
2: ओह हाय नील, प्रार्थना माँ कहाँ है?
21: चलिए मैं आप दोनों को ले चलती हूँ।

0: इतने सालों में इन्हें कभी नहीं लगा कि अपनी माँ से मिल ले। और जब प्रॉपर्टी की बात है तो मैडम गिफ्ट लेके पहुँच गई है सीधे यहाँ।
1: प्रार्थना जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ?
0: सॉरी नील, मुझे आपके सामने ये सब नहीं कहना चाहिए था।
1: नहीं नहीं, मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, ईश्वर सब देखता है, ईश्वर सब जानता है। सच्चाई और प्यार के सामने पैसों और पोजीशन की शक्ति का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जाने दीजिए, आप अपना ध्यान कहीं और लगाइए। जब तक वो लोग आपस में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मैं आपको एक कहानी सुनाऊं।
0: कहानी?
1: हाँ, एक कहानी।
2: कहानी सुना रहे हो? अरे वाह, फिर तो मैं भी सुनूंगी।
0: लेकिन हाँ, आप तो मम्मी जी के साथ कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रही थी ना?
2: हाँ, इम्पोर्टेंट बट बोरिंग, ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तुम सुनाओ ना, कहानी सुनाओ।
1: ठीक है, तो बात तब की है जब रावण को अपनी शक्ति का बहुत अहंकार था। वो भक्ति भाव में नहीं, शक्ति बल में विश्वास रखता था। एक दिन की बात है।
3: भ्राता कुबेर का अलका अब पूरी तरह से मेरा हुआ।
4: ये पुष्पक विमान तो अद्भुत है महाराज।
5: इस विमान से तो पूरी धरती दिखाई पड़ रही है। वो देखिए महाराज, पर्वत की चोटी कितनी छोटी दिखाई देती है।
3: अद्भुत। अरे ये क्या, ये विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा?
4: रुक जाओ, कौन हो तुम? कहां से आ रहे हो? कहां चले जा रहे हो?
3: मुझे नहीं जानता मूर्ख, मैं महाराज दशानन अभी अलका राज्य जीत कर आ रहा हूँ। चल हट मेरे सामने से।
4: मूर्ख, वो तो तुम हो दशानन, पर तुम ये भी जान लो कि तुम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। यहाँ प्रभु शिव और उनकी अर्धांगिनी देवी पार्वती शांति के पल बिता रहे हैं। इस मार्ग को पार करना वर्जित है।
3: मेरे लिए कुछ भी वर्जित नहीं, मुझे रोकने का साहस मत कर और हट जा मेरे रास्ते से।
4: मूर्ख, तू जानता नहीं अपनी शक्ति के अहंकार में तू क्या करने जा रहा है। अपने प्राण प्यारे हैं तो अभी भी समय है, संभल जा, ये दुस्साहस मत कर।
3: मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है? मेरे मार्ग में आएगा तो बहुत पछताएगा तू मूर्ख प्राणी। रुक जा, मैं अभी इस पूरे पर्वत को ही अपने मार्ग से हटा देता हूँ।
6: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: ये क्या हो रहा है प्रभु?
1: विचलित ना हो प्रिय, लगता है कोई दुस्साहसी है जिसे अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है।
0: इसे रोकिए महादेव, देखिए सभी पशु पक्षी और जीव जंतु भयभीत हैं। रोकिए इसे।
1: करने दो प्रिय, इसे प्रयास कर लेने दो।
2: क्षमा करें प्रभु, आपके शांति के पलों में बाधा आई है। ये दशानंद बहुत अहंकारी है, मैंने उसे रोकने का प्रयास किया पर।
1: चिंता मत करो नंदी, मैं बस देखना चाहता हूँ इस नीच का साहस, देखना चाहता हूँ इसका अहंकार कहाँ तक जाता है।
0: बस प्रभु रोकिए उसे।
1: ठीक है, रोकता हूँ उसे। रुक जा दशानन, अपनी शक्ति का बहुत अहंकार है तुझे दशानन।
3: हाँ है, बोल क्या कर लेगा तू
1: दुस्साहसी। रुक जा, तेरा अहंकार मैं अभी चूर चूर कर देता हूँ।
4: महाराज ये क्या किया आपने? शिव के क्रोध की बलि चढ़ गए आप।
3: बहुत पीड़ा हो रही है, बाहर निकालो मुझे यहाँ से। सैनिकों!
4: महाराज शिव के आगे हम कुछ नहीं कर सकते। महाराज
3: क्या अर्थ है इस बात का?
4: महाराज अब तो आपको स्वयं शिव ही इस पीड़ा से मुक्त कर सकते हैं। उनके गुणगान गाइए, प्रसन्न करिए उन्हें, साधना कीजिए उनकी।

0: अरे ये कितने वर्षों से यहाँ पर्वत के नीचे दबा हुआ है।
1: हे प्रभु, ये मेरे पापों का प्रायश्चित था, मुझे क्षमा करें प्रभु। मेरे अहंकार में मैं ये समझ नहीं पाया कि आप ही मेरे प्रभु महादेव हैं। मैं भक्ति नहीं बस शक्ति बल का प्रयोग करना जानता था। मैं समझ नहीं पाया कि आप सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ हैं, देवों के देव महादेव हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मुझे अपनी शरण में ले ले।
0: आयुष्मान भव, तुमने अपनी साधना से मुझे प्रसन्न कर दिया दशानन। तुम्हारे अंदर ये बदलाव देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।
2: इसी तरह रावण का अहंकार टूट गया और उसे एहसास हुआ कि शक्ति भी भक्ति का मुकाबला नहीं कर सकती। और फिर वो तो महादेव थे, वो सर्वज्ञाता है, सब जानते हैं कि कौन कितना सच्चा है और कौन कितना झूठा, किसके मन में प्यार है और कौन स्वार्थी है।
3: अरे वेदिका, क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं?
4: मुझे माफ कर दो प्रार्थना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ।
3: क्या हुआ वेदिका?
4: मैं बहुत स्वार्थी थी प्रार्थना, मुझे अपनी ऐशोराम की जिंदगी में कभी माँ की जरूरत नहीं महसूस हुई। माँ मुझे जब याद करती तो मैं उन्हीं को मन में भला बुरा कह के रह जाती थी। तुम फोन करती तो भी जवाब नहीं देती, और आज भी मैं इसीलिए यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अगर माँ को कुछ हो गया तो प्रॉपर्टी।
3: वेदिका, मैं ये सब जानती हूँ, अब मुझे क्यों?
4: नहीं प्रार्थना, मैं लेकिन मुझे एहसास है इस बात का, पता नहीं क्यों जब नील हमें ये कहानी सुना रहा था, मेरे अंदर एक आवाज मुझे उसका इशारा समझने को कह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई इशारा है। बस बहुत हो गया स्वार्थ, बहुत उछल लिया पैसों की शक्ति पर, अब वापस लौटने का वक्त आ गया है। नील, थैंक यू।
2: अरे आप मुझे क्यों थैंक यू बोल रही हैं?
4: पता नहीं नील, बस ऐसा लगा जैसे तुमसे आज मिलने का कारण ही यही था कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो तुम्हारी कहानी से।
2: मेरी कहानी? नहीं, ये तो महादेव की कहानी है और मैं कुछ नहीं करता, करते तो वही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे मिलने के पीछे कोई कारण था आज, तो हो सकता है कि ये भी शिव का ही कोई खेल हो।
5: बेटा। हाँ मम्मी जी, आई।
6: वो प्रॉपर्टी, तुमने लॉयर अंकल से बात की है ना?
4: माँ कैसी बातें कर रही हो, प्रॉपर्टी का क्या करना है? ये क्या टाइम है ये सब डिस्कस करने का? और फिर जो है आपका और भाभी का ही तो है, आपने मुझे इतनी अच्छी फैमिली और लड़के के साथ सेटल किया है कि मुझे इस सबकी जरूरत ही नहीं है। माँ आप बस अभी मेरे साथ रहो ना।
6: बेटा।
4: मैंने बोला ना माँ, मेरे साथ रहो बस।
2: अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ, जरा जल्दी में हूँ।
4: क्या हुआ नील, तुम भी रुक जाओ ना, कहाँ जा रहे हो?
2: जी वो मुझे थोड़ा दूर जाना है।
6: अच्छा तो मैं आपके लिए कुछ खाने को रख देती हूँ।
2: नहीं, मेरे पास सब इंतजाम है।
4: अच्छा तो मैं कैब बुक कर दूँ? वैसे लोकेशन क्या डालूँ?
2: नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास मेरा नंदू है ना, मेरी बाइक, घूमते घूमते हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाएंगे।
6: पर बेटा तुम जा कहाँ रहे हो?
2: आंटी मैं वो बस भोलेनाथ के धाम अमरनाथ, मैं तो कहता हूँ आप लोग भी आइए कभी, आप ठीक हो जाएंगी तो जरूर आइएगा।
6: ऐसी हालत में
2: आप फिक्र मत कीजिए आंटी, वहां आपकी खातिरदारी मैं करूंगा। मैं चलता हूँ, जल्द ही मुलाकात होगी। हर हर महादेव।
7: क्यों पैसा पैसा करता है, तो पैसे में क्यों मरता है? एक बात बता दे तू मुझको, उस रब से क्यों नहीं डरता है? क्यों बिड़ू, पैसे को ज्यादा अहमियत नहीं देने का, परिवार को देने का, इससे पहले कि माँ बाप और परिवार जैसे अहम रिश्ते और उनका आशीर्वाद हमारे सर से हट जाए। उन पे ध्यान दो, उनकी इज्जत करो भिड़ू, देखना तुम्हें तरक्की से कोई दूर नहीं कर सकेगा। अगर माँ बाप का आशीर्वाद तेरे सर पे रहा, बात खत्म बॉस। शिव, मोह, माया। माया से ऊपर उठना सिखाता है, शिव परिवार से प्यार करना सिखाता है। हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा शिवा।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
10: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
11: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
10: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
10: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
11: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
10: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
11: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
4: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
5: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
4: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
6: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
7: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
6: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोसमोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
0: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। टीबी मरीजों को फूड बास्केट का किया गया वितरण। यह हलुम को लेकर दंडाधिकारियों साथ जिला पदाधिकारी ने की ब्रीफिंग। ईवीएम वेयर हाउस का किया गया निरीक्षण। सावन की पहली सोमवारी को उमड़ी सभी शिवालयों में भीड़ और अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने गोपालगंज क्लब में आयोजित कार्यक्रम में टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत टीबी मरीजों के बीच फूड बास्केट का वितरण किया। यह कार्यक्रम चेंबर ऑफ कॉमर्स गोपालगंज एवं लायंस क्लब के सहयोग से आयोजित किया गया था। इसके माध्यम से चयनित टीबी मरीजों को पौष्टिक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी ने वृक्षारोपण भी किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने तथा उनकी देखभाल करने की अपील की। उन्होंने कहा कि स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए पौष्टिक आहार के साथ स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण भी आवश्यक है। जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में चेहल्लुम पर्व को लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की संयुक्त ब्रीफिंग की गई। इस अवसर पर अपर समाहर्ता राजेश्वरी पांडे, अपर समाहर्ता लोक शिकायत निवारण रोहित कुमार और डीएसपी मुख्यालय तथा अनुमंडल पदाधिकारी सदर डॉक्टर प्रेरणा सिंह और सामान्य शाखा के प्रभारी अजय कुमार सहित तमाम पदाधिकारीगण मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को अपने अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर समय से पहुंचकर पूरी सतर्कता एवं सजगता के साथ दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया। आज श्रावण की पहली सोमवारी पर जिले के सभी शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ दिखाई दी। माताएं, बहनें और पुरुष श्रद्धालु भी सुबह से ही हर हर महादेव के जय घोष के साथ भगवान शिव को जलाभिषेक कर रहे थे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर सभी बड़े शिवालयों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। साथ ही धनेश्वर नाथ और सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ी भारी जन सैलाब को नियंत्रित करने के लिए पुलिस बल और दंडाधिकारियों ने लगातार काम किया। इसको लेकर आज शांतिपूर्ण तरीके से सभी क्षेत्रों में भगवान शिव को जलाभिषेक किया गया। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ईवीएम वीवीपैट वेयर हाउस का निरीक्षण किया। दोनों अधिकारियों ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में वेयर हाउस का मासिक निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान वेयर हाउस की त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, सीसीटीवी कैमरों की सतत निगरानी, अग्निशमन एवं सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता, लॉग बुक संधारण तथा ईवीएम और वीवीपैट मशीनों के सुरक्षित रखरखाव का गहन जायजा लिया गया। उप निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. शशि प्रकाश राय को सुरक्षा मानकों के अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने तथा वेयर हाउस की निगरानी व्यवस्था को सदैव सक्रिय रखने का निर्देश दिया गया। अलग अलग थाना क्षेत्रों से पुलिस ने लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार पुलिस काम कर रही है। इसी कड़ी में कुचायकोट थाना की पुलिस ने रंगदारी के मामले में प्राथमिकी अभियुक्त बसंत शाह को गिरफ्तार किया। यह कुचायकोट के रामगढ़वा निवासी प्रभु शाह का पुत्र बताया जा रहा है। इधर थावे पुलिस ने हत्या के प्रयास में भी फरार चल रहे आधा दर्जन प्राथमिकी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पकड़े गए आरोपी गोविंदा मुसहर पिता केदार मुसहर, केदार मुसहर पिता स्वर्गीय तप्ती मुसहर और इनके साथ 3 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही एक दूसरे मामले में प्राथमिकी अभियुक्त प्रसाद मुसहर पिता स्वर्गीय भोला रावत उर्फ भोला मुसहर, ये सभी मठ गौतम चौरिया टोला थाना थावे के रहने वाले हैं। इन दोनों पर एक ही मामले में काउंटर केस दर्ज किया गया था और इसी में इन सभी लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने अब दोनों पक्ष से गिरफ्तार आधा दर्जन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो वहीं कुचायकोट पुलिस ने 119 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ भी 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक कार और मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। पकड़े गए आरोपियों में ऋतिक रोशन पिता सत्येंद्र सिंह साकिन तरैया जिला छपरा और विधायक राय पिता किताबो राय साकिन विदित कोवा थाना राजेपुर जिला मोतिहारी और तीसरा संजय कुमार पिता चंदेश्वर शर्मा थाना सिवाय पट्टी जिला मुजफ्फरपुर के निवासी हैं। तीनों को उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया। थावे पुलिस ने भी 11 लीटर से अधिक विदेशी शराब के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने विदेशी टोला में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की, जहां से शराब के साथ अभियुक्त योगेंद्र शाह उर्फ भूअर पिता झगरू शाह जो विदेशी टोला थावे का रहने वाला है और मनोज प्रसाद पिता स्वर्गीय भरत प्रसाद यह भी विदेशी टोला थावे का निवासी है, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया। विजयपुर थाना की पुलिस ने भी 27 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मुसहरी बाजार मछली हत्ता के पास छापेमारी की, जहां से शराब तस्कर मंगल राम को गिरफ्तार किया गया। यह मुसहरी बाजार के ही भूजल राम का पुत्र बताया जा रहा है। जादोपुर थाना की पुलिस ने शराब के मामले में फरार चल रहे एक प्राथमिकी अभियुक्त विनय यादव को गिरफ्तार कर लिया। यह गुमनिया थाना विशंभरपुर के बबुना यादव का पुत्र बताया जा रहा है। उत्पाद पुलिस ने एक क्रेटा कार से 720 लीटर से अधिक विदेशी शराब को पकड़ा है। यह कार्रवाई कुचायकोट के जलालपुर कुर्म टोला रोड पर पुलिस ने की, जहां से गाड़ी और शराब को जब्त किया गया। बताया जा रहा है कि इसमें तस्कर शुभम शर्मा जो महुआ टोला थाना कुचायकोट का निवासी है, इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं इसका एक साथी भीम यादव, जो बिशंभरपुर के सिसवा का रहने वाला है, यह फरार हो गया है। पुलिस ने दोनों पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है और गिरफ्तार आरोपी शुभम शर्मा के बयान पर पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई कर रही है। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जन समस्याओं को सुनने के बाद उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने का प्रयास किया। जादवपुर थाना की पुलिस ने रामपुर टेंगराही गांव में 15/7/2026 के हुए एक फायरिंग के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गंडक नदी के किनारे अवैध शराब के क्रय विक्रय को लेकर दो पक्षों के बीच मारपीट और गोलीबारी की घटना हुई थी। इसमें पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना स्थल से 22 लीटर अवैध देशी शराब, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया था। इसी मामले में पुलिस ने कांड दर्ज कर तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, जिसमें पुलिस अधीक्षक ने विशेष टीम का भी गठन किया था और इस टीम के द्वारा जांच पड़ताल करते हुए इस मामले में नामजद अभियुक्त मुकेश यादव, पिता साधु यादव, साकिन भगवानपुर थाना नौतन जिला पश्चिमी चंपारण को बरई पट्टी तीनमुहानी के समीप से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। साथ ही मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे भी अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। थावे के सेंट्रल बैंक के बाहर रखी एक मोटरसाइकिल को अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। इस घटना को लेकर बरगछिया गांव निवासी करण कुमार सिंह ने थावे थाने में अज्ञात चोरों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़ित के बयान पर अब पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है, साथ ही सीसीटीवी कैमरों को भी खंगाला जा रहा है। पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता मानिकपुर निवासी वाई बी गिरी की मां सोना देवी का 105 वर्ष के उम्र में निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव मानिकपुर में किया गया। इस दौरान उनके बहुत सारे जानने वाले लोग अंतिम संस्कार में उपस्थित हुए।
6: भोरे थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव में एक 25 वर्षीय युवक का पेड़ से लटकता हुआ शव जब इलाके में लोगों ने देखा तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल कर रही है। प्रथम दृष्टया पारिवारिक कलह से तंग आकर आत्महत्या की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस का इस पर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मृतक का नाम अरविंद चौहान बताया जा रहा है, जो भोरे थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव का ही रहने वाला बताया जा रहा है।
5: और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। बारिश की संभावना बनी हुई है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, Facebook और Instagram पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ उठा सकते हैं। अंत में मुख्य हाल चाल एक बार फिर। टीबी मरीजों को फूड वास्केट का किया गया वितरण। यह हलुम को लेकर दंडाधिकारियों साथ जिला पदाधिकारी ने की ब्रीफिंग। ईवीएम वेयर हाउस का किया गया निरीक्षण। सावन की पहली सोमवारी को उमड़ी सभी शिवालयों में भीड़। और अलग अलग थाना क्षेत्रों से लगभग 2 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894 या 9198886973।
13: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
14: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
15: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94 3945651 या 97 0 97 0 6 575।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
3: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: ये सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: ठक ठक
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388 8947 या 9198 8697 3।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोड़ गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: ओम नमः शिवाय।
3: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
2: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
3: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
2: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
3: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
2: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
3: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
2: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
3: बोलबम हर

0: झारखंड में अपना अभियान शुरू करेंगे। और अब आइए समाचार विस्तार से कर लेते हैं। सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। कल नई दिल्ली में हुई एक बैठक में भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की। बैठक के बाद श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी की मांग की है।
1: ये माफीनामा जकरबर्ग के तरफ से आना चाहिए और ये जकरबर्ग नहीं देते हैं तो जो सेफ हार्बर का जो प्रोटेक्शन है उनको सेक्शन 79 में, वो सेफ हार्बर का प्रोटेक्शन उनसे वापस ले लेना चाहिए। महिलाओं के कंटेंट का वो उतारते नहीं है, भारत सरकार के ये नियम बड़े सख्त हैं और इनकी जो पॉलिसी है कि ये जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को नहीं मानते हैं। इन सारी चीजों से सेफ हार्बर हटाने की बात करनी।
0: राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस के अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई के सांसदों ने भी गठबंधन की बैठक में भाग लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली सरकार और विभिन्न राज्यों की सरकारें जंतर मंतर और देश में अन्य जगहों पर हाल ही के प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों और प्रदर्शनकारियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र हैं। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के नेतृत्व में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई को न्यायालय के आदेश में पहले आपराधिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी रखने की अनुमति का तात्पर्य केवल गंभीर और जघन्य अपराधों से जुड़े लोगों से था। एक रिपोर्ट।
2: अदालत नीट पेपर लीक के विरोध में जंतर मंतर पर 20 जुलाई को और अन्य जगहों पर प्रदर्शन में विद्यार्थियों पर पुलिस की अत्यधिक सख्त कार्रवाई के आरोप से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। प्रदर्शन में घायल पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने भी यह आरोप लगाते हुए प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। पीठ ने कहा कि वह पुलिस अधिकारियों की विशेष जांच टीम गठित करने या सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है ताकि पुलिस की अत्यधिक कड़ी कार्रवाई के आरोपों की जांच की जा सके। अब इस मामले की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से मैं चाहत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत और उज्बेकिस्तान ने कल नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान महत्वपूर्ण खनिजों, खनन, व्यापार, ऊर्जा, अवसंरचना, रक्षा और शिक्षा क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री बख्तियार सैदोव की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान ये बैठक हुई। विदेश नीति के मुद्दों पर डॉ जयशंकर ने कहा कि भारत और उज्बेकिस्तान का आतंकवाद, उग्रवाद और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने पर समान दृष्टिकोण है।
2: Deeply appreciate that the government and people of
3: हम इस बात की सराहना करते हैं कि उज्बेकिस्तान की सरकार और वहाँ के लोगों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के लिए दृढ़ रुख अपनाया है। आपकी अपनी चुनौतियाँ और आपके अपने अनुभव हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम दोनों ने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस दिखाई है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए

0: रक्षा मंत्रालय के सैन्य और असैन्य विभागों के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया है। कल नई दिल्ली में आयोजित 85वें सशस्त्र बल मुख्यालय सैन्य सेवा दिवस समारोह में श्री सिंह ने कहा कि सैन्य और असैन्य दोनों सेवाएं राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं।
1: आज भारत में यूनिफॉर्म और सिविल सर्विस दोनों का एक ही कमिटमेंट है, राष्ट्र प्रथम, नेशन फर्स्ट। जब उद्देश्य एक हो तो व्यवस्था की हर शक्ति राष्ट्रीय सामर्थ्य में बदल जाती है। सिविलियन और मिलिट्री ऑफिसर्स के बीच स्ट्रक्चर्ड क्रॉस एक्सपोजर को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है।
0: ब्रिक्स भ्रष्टाचार रोधी कार्य समूह और संपत्ति वसूली पर ब्रिक्स विशेषज्ञ नेटवर्क की दूसरी बैठक आज हैदराबाद में शुरू होगी। एक रिपोर्ट।
2: कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की सचिव रचना शाह इस बैठक का उद्घाटन करेंगी। बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ नीति निर्माताओं, विशेषज्ञों, कार्यपालकों और भ्रष्टाचार विरोधी तथा कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि भागीदारी करेंगे। सदस्य संपत्ति वसूली के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने और शासन में पारदर्शिता तथा जवाबदेही बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे। हैदराबाद में होने वाली ये बैठक जून में वर्चुअली रूप से आयोजित पहले ब्रिक्स भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक के परिणामों पर आधारित है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने का आखिरी मौका दिया गया है। श्री ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान और कई खाड़ी देशों के कूटनीति आग्रह करने के बाद नियोजित सैन्य हमलों को रोक दिया गया है। श्री ट्रंप ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए बातचीत जारी रखने की पहल को पहला चरण बताया। वहीं दूसरे चरण में ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने अमरीका के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष बातचीत की खबरों का भी खंडन क्या है। श्री बगाई ने कहा कि ईरान और ओमान के बीच हाल ही में हुआ समुद्री समझौता केवल जहाजों की सुरक्षित आवाजाही तक सीमित है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
3: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: और अब मौसम का रुख कर लेते हैं। उड़ीसा में प्रमुख नदियों और उनकी सहायक नदियों में जलस्तर घटने के कारण बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हीराकुंड बांध के 4 और द्वार बंद कर दिए गए हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है क्योंकि मुख्य नदियां में पानी का स्तर कम हो रहा है। हीराकुद बांध अधिकारियों ने 4 और स्लुइस गेट बंद कर दिए हैं और अब बाढ़ का पानी 13 गेटों से नियंत्रित तरीके से छोड़ा जा रहा है। राहत बचाव और पुनर्वास का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, खासकर बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जिलों में जहां लोग बहुत मुश्किल हालात में है। राज्य सरकार का कहना है कि प्रभावित परिवारों को भोजन, सुरक्षित पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं, पॉलीथिन सीट और अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। जैसे जैसे बाढ़ का पानी कम हो रहा है, कई जिलों में स्कूल फिर से खुल गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच मौसम विभाग ने 4 और 5 अगस्त को मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। एक रिपोर्ट।
5: मौसम विभाग ने असम से सटे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कई जिलों के लिए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन मौसमीय परिस्थितियों का प्रभाव असम के कछार, डिमा हसाव, पश्चिम कार्बी आंगलोंग, विश्वनाथ, लखीमपुर, धेमाजी और तिनसुकिया जिलों पर पड़ सकता है। विभाग ने असम से सटे नागालैंड के अधिकांश जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है, जिसका प्रभाव सराइदेव, शिवसागर, जोरहाट और गोलाघाट जिलों पर पड़ सकता है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने संबंधित जिलों के लोगों से सभी आवश्यक सावधानियां बरतने और सतर्क रहने की अपील की है। कल बाढ़ से संबंधित 2 और मौतें दर्ज होने के साथ ही राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 87 हो गई है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केरलम के 14 में से 12 जिलों में आज मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम

0: और त्रिपुरा के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना है। विभाग के अनुसार दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरलम, माहे, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में दिन के समय तेज वर्षा होने की उम्मीद है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ तूफान की संभावना व्यक्त की गई है। और अब बात खेलों की कर लेते हैं। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी आज से दक्षिण कोरिया में शुरू हो रहे BWF सुपर 300 टूर्नामेंट कोरिया मास्टर्स में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। ये टूर्नामेंट 9 अगस्त तक चलेगा। सभी की निगाहें 17 वर्षीय तन्वी शर्मा पर होंगी, जिन्होंने ताइपे ओपन में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतकर इस टूर्नामेंट में प्रवेश किया है। तन्वी भारत की महिला एकल टीम का नेतृत्व करेंगी। पुरुष एकल में किदांबी श्रीकांत अमरीका ओपन में उपविजेता रहने और पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। पुरुष एकल टीम में श्रीकांत के साथ किरण जॉर्ज, मिथुन मंजुनाथ, थारुण मन्नपल्ली, रौनक चौहान और सनेथ दयानंद शामिल हैं। वहीं महिला युगल में सोनाली सिंह और रितिका ठाकुर के साथ प्रिया कोंजिंग बाम और श्रुति मिश्रा प्रतिस्पर्धा करेंगी। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद फरहत। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात में विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आने की खबरें आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला की सुर्खी है, नवीन के गढ़ में पीके का चमत्कार। जनसत्ता लिखता है, जीते प्रशांत, विरोधी अशांत। भाजपा के राष्ट्राध्यक्ष का किला ढहा, उपचुनाव में करारी हार। हंगामे के बीच सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने का विधेयक पारित। गृहमंत्री अमित शाह के सदन में नहीं आने पर विपक्ष का हंगामा जारी, राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। दैनिक जागरण ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट के शब्द को प्रकाशित किए हैं, छात्रों के प्रदर्शन की आड़ में अपराधी रियायत के हकदार नहीं। ग्लासगो के बाद नजर अहमदाबाद पर, भारत 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों को सिर्फ एक आयोजन के तौर पर नहीं बल्कि 2036 के अहमदाबाद ओलंपिक दावेदारी के लिए मेगा ड्रेस रिहर्सल के रूप में देख रहा है। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, अलविदा ग्लासगो, अहमदाबाद को 2030 के गेम्स की मशाल मिली। ईरान से बातचीत शुरू, डोनाल्ड ट्रंप ने टाला संभावित बड़ा सैन्य हमला, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द भी प्रकाशित किए हैं, कूटनीति की राह, बातचीत से बचेगी हजारों जिंदगियां। हिंदुस्तान ने इस विषय पर अपने संपादकीय पन्ने पर एक लेख भी प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, क्या ईरान पर काम करेगी नई अमरीकी रणनीति। विश्लेषण में कहा गया है कि अमरीका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, युद्ध विराम का कोई फैसला अंतिम नहीं माना जाएगा। नवभारत टाइम्स ने देश में अंगदान को लेकर बढ़ रही जागरूकता का समाचार आंकड़ों सहित प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, अंगदान बढ़ा, रिकॉर्ड 20,000 से अधिक ट्रांसप्लांट। डिजिटल पोर्टल शुरू होने के बाद 5,00,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ ली।
0: धन्यवाद जया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय समिति ने फेसबुक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाए जाने पर मेटा की आलोचना की। मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से माफी की मांग की। एनडीए संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में विद्यार्थियों के नाम दर्ज प्राथमिकी बंद करने या वापस लेने के लिए स्वतंत्र। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के पास समझौता करने का एक आखिरी मौका। ईरान ने बातचीत की खबरों का खंडन किया। और खेलों में, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी आज कोरिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करे।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करे 9006978856 या 6203139564।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो? क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
3: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
2: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
8: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
6: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटते क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
11: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीरा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
12: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
11: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: टाइनी हीरो भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9956 59536 या 9956 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
4: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
5: इंडियन सिनेमा को मिल गया था उसका पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना, लेकिन हम थे ओल्ड स्कूल यानी कि दिलीप कुमार के फैन और हमें मिल गई थी हमारी सारा पानी।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं।

0: क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434468 पे।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61 12 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: पूर्व विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों से किया पराजित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के नाम दर्ज FIR वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक होगा हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। और मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर को जीत मिली है। उन्होंने निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों के अंतर से पराजित किया है। प्रशांत किशोर को कुल 64,151 मत प्राप्त हुए, जबकि भाजपा के नीरज कुमार को 44,827 मत मिले हैं। राष्ट्रीय जनता दल की रेखा कुमारी 14,273 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रही हैं। वे अपना जमानत भी नहीं बचा सकीं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने प्रशांत किशोर को इस जीत के लिए बधाई दी है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने कल नई दिल्ली में मेटा के अधिकारियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेसबुक वीडियो को कुछ समय के लिए हटाए जाने के संबंध में मुलाकात की। भाजपा सांसद और समिति के अध्यक्ष निशिकांत दुबे ने प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने के लिए मेटा इंडिया की आलोचना की है। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री दुबे ने कहा कि समिति ने मेटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग से इसके लिए माफी मांगने की मांग की है, और यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो धारा 79 के अंतर्गत उन्हें दी गई सेफ हार्बर प्रोटेक्शन वापस लिया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि दिल्ली और अन्य राज्य सरकारें नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस कार्रवाई से जुड़े मामलों में दर्ज FIR को वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। एक रिपोर्ट।
1: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि 28 जुलाई के आदेश में गंभीर अपराधों में शामिल आरोपियों पर ही कार्रवाई की बात कही गई थी। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि छात्रों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की सरकार की मंशा बरकरार है, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत FIR बंद करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर दिशा निर्देश तय करने पर विचार कर रहा है। मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। समाचार कक्ष से अतहर सईद।
0: प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान आयोजित किया जाएगा। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कल इस अभियान के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए सभी जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में बताया गया कि 12 अगस्त को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय भव्य तिरंगा यात्रा आयोजित की जाएगी। इस यात्रा में संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री भी शामिल होंगे। वहीं 13 अगस्त को मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्य स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने डाबर इंडिया को शहद, गाय का घी और खाद्य तेल जैसे कई उत्पादों को 100% के दावे के साथ बेचने से प्रतिबंधित कर दिया है। एक रिपोर्ट।
2: प्राधिकरण ने बताया कि प्रतिबंधित किए गए उत्पादों में शहद, सेब का सिरका, शुद्ध नारियल तेल, तिल का तेल, गाय का घी, नारियल पानी, नारियल का दूध और अन्य ऐसे उत्पाद शामिल हैं। प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी की वेबसाइट पर बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों पर 100% प्राकृतिक, 100% शुद्ध, 100% शुद्धता की गारंटी, 100% जैविक और 100% नारियल पानी जैसे भ्रामक दावे पाए गए हैं। प्राधिकरण के अनुसार 100% के दावे FSS विज्ञापन और दावे विनियम 2018 का उल्लंघन है। डाबर इंडिया ने आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो नोटिस में उल्लिखित बातों की जांच कर रहा है। ईशानी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस फर्जी खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चेतावनी दी है कि यदि दूध में मिलावट को तेजी से नहीं रोका गया तो इससे भारत की 87% आबादी को कैंसर का खतरा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि WHO द्वारा ऐसा कोई परामर्श जारी नहीं किया गया है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन NDA संसदीय दल की साप्ताहिक रणनीति बैठक मंगल मिलन आज संसद भवन में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य गठबंधन की पूर्ण एकता का प्रदर्शन करना है। पिछली बैठक 28 जुलाई को हुई थी जिसमें तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए गुट नवगठित नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI के सांसदों ने भी भाग लिया था। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में पिछले दो दिनों से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून की ट्रफ रेखा वर्तमान में पटना से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले दो दिनों तक प्रदेश में बारिश की परिस्थितियां बनी रहेंगी। मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
1: दिनांक 4 अगस्त को राज्य के पश्चिम चंपारण, समस्तीपुर एवं वैशाली जिलों के एक या दो स्थानों पर अति भारी वर्षा तथा सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, अररिया, किशनगंज एवं कटिहार जिलों के एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। राज्य के सभी भागों में मेघ गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: इधर हमारे अररिया संवाददाता ने बताया है कि जिले के विभिन्न भागों में देर रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। इससे लोगों को एक तरफ गर्मी से राहत मिली है, वहीं कई स्थानों पर जल जमाव की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। इस बीच बांका जिले में बारिश के दौरान वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग झुलस गए हैं। प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हजरत इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी कुर्बानी अमर है और ये समाज को हर दौर में रास्ता दिखाती है। प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई प्रभावित है। हड़ताल के 6 दिन आज भी विभिन्न स्थानों पर कूड़ा उठाव और निस्तारण का काम ठप है। बारिश के मौसम में गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लगने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। हालांकि साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था का दावा किया गया है, लेकिन ये नाकाफी साबित हो रहा है। इधर नगर निगम प्रशासन ने सफाई व्यवस्था में बाधा डालने और अनुबंध की शर्तों के अनुरूप पर्याप्त मानव बल तथा वाहन उपलब्ध नहीं कराने के मामले में एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की है। प्रशासन ने एजेंसियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, साथ ही अतिरिक्त आर्थिक दंड भी लगाया है। रेलवे भर्ती बोर्ड की ओर से विभिन्न पदों के लिए 6 अगस्त तक कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित की जा रही है। रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 2 जोड़ी विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन जयनगर, लखनऊ और राजगीर वाराणसी के बीच परिचालित हो रही है। इधर श्रावणी मेले के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलवे ने लखीसराय के अशोक धाम पर 6 जोड़ी ट्रेनों का अस्थायी ठहराव करने का निर्णय लिया है। पटना के मोकामा और बरौनी के बीच राजेंद्र सेतु से समानांतर बने नए रेल पुल को चालू करने और दानापुर तथा सोनपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर इंटरलॉकिंग कार्य होंगे। इसके मद्देनजर रेलवे ने 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक अलग अलग तिथियों पर 339 ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है। वहीं 384 ट्रेन परिवर्तित मार्ग से चलाई जाएंगी। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने बांका जिला परिषद के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के निजी सहायक ओम प्रकाश मंडल और रात्रि प्रहरी जागेश्वर मंडल को 1,26,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों की गिरफ्तारी बिल भुगतान के एवज में रिश्वत की मांग के आरोप में की गई है। इस मामले में 7 अन्य लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुबनी जिले के जयनगर में पदस्थापित तत्कालीन SDM गुलाम मुस्तफा की 49,00,000 रुपए से अधिक चल और अचल संपत्ति जब्त कर ली गई। आय से अधिक मामले में निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। पटना पुलिस ने सुल्तानगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सनिचरा मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान एक 4-पहिया वाहन से 35,00,000 रुपए के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अररिया जिले के सोनमनी गोदाम थाना क्षेत्र के डुब्बा टोली से SSB की टीम ने नेपाल के रास्ते बिना पासपोर्ट वीजा भारत में प्रवेश करते 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया। SSB के 56वीं बटालियन के द्वितीय कमान सह कमांडिंग अधिकारी नितिन गुप्ता ने यह जानकारी दी है। पटना पुलिस ने बाढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बूढ़ी चक में पिछले दिनों हुई लूटपाट की घटना का उद्भेदन करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों के पास से एक देसी पिस्तौल, कारतूस और लूटे गए चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। राजधानी पटना में आज से 6 अगस्त तक 52वीं बिहार राज्य जूनियर बाल कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर के इंडोर हॉल में आयोजित इस प्रतियोगिता में प्रदेश के विभिन्न जिलों की 16 टीमें भाग लेंगी। सभी टीमों को 4 पुलों में विभाजित किया गया है। इस प्रतियोगिता के आधार पर बिहार टीम का चयन किया जाएगा। फ्रांस में संपन्न 19वें फेस्टिवल इंटरनेशनल शतरंज प्रतियोगिता में पटना के रयान मोहम्मद ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर नॉर्म प्राप्त किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने बांकीपुर उपचुनाव के परिणाम से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, प्रशांत ने भाजपा का बांकीपुर किला ढहा, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रशांत किशोर को जीत पर दी बधाई। दैनिक जागरण ने इसी खबर को अपनी लीड बनाते हुए लिखा है, भाजपा के गढ़ बांकीपुर में प्रशांत किशोर की सेंध। दैनिक भास्कर ने बर्निंग ट्रेन शीर्षक से लिखा है, समस्तीपुर सहरसा पैसेंजर में लगी आग, 500 यात्री बचे। प्रभात खबर लिखता है, राम मंदिर ट्रस्ट में हुआ बदलाव, आरएसएस के पूर्व सर कार्यवाह भैयाजी जोशी ने छोड़ा पालक का पद। राष्ट्रीय सागर का शीर्षक है, नीट पीजी परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी, घर के पास ही रहेगा सेंटर। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जीते, भाजपा के नीरज कुमार को 19,324 मतों से किया पराजित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, राज्य सरकारें हालिया विरोध प्रदर्शनों में छात्रों के नाम दर्ज, FIR वापस लेने या बंद करने की प्रक्रिया अपना सकती हैं। प्रदेश में 9 से 17 अगस्त तक होगा हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारी की समीक्षा की। और मौसम विभाग ने आज भोजपुर, बक्सर, सारण, सीवान, पश्चिम चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, अररिया, कटिहार और किशनगंज जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974434068 पे।
6: तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
7: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
6: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
7: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
6: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
7: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
8: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
6: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Pick it up, pick it up.
10: Hello.
9: Now pick your

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM और समय हो गया है हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: भारती जी बोल रही हैं?
1: नहीं।
2: अच्छा, मनोरमा मैम।
1: जी जी
2: मैम, गाना सुनना है। जी मैम, कैसी हैं आप?
1: जी मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
2: हम भी ठीक है
1: जी। तो अपना नाम बता दीजिए।
2: मैम मीता देवी नाम है।
1: अच्छा, कहाँ से बोल रही
2: है?
1: अच्छा,
2: बोलिए।
1: सब बढ़िया, आप अपना बताइए, क्या कर रही हैं?
2: मैम दोपहरिये का खाना बना रही हूँ, आज तो फाइनल ना सोमवार है।
1: पूजा पाठ हो गया ना?
2: जी मैम हो गया।
1: चलिए, तब तो फास्टिंग होंगी।
2: हाँ फास्टिंग है मैम। ये रितेश पांडे नहीं है, एगो गाना है कि अब पटरी नहीं जानी चांदनी सिंह गानी, रितेश पांडे के एगो शिव जी के गाना नहीं दिखा।
1: दो लाइन जाके बता देती तो।
2: मैम पहले वाला ये चीज हम भूल गए हैं। अरे वो नहीं बोले कि अब पटरी नहीं धान नहीं पिसाई कटरी नहीं जमी।
1: हाँ हाँ,
2: चांदनी सिंह बोल वही सुना लीजिए मैम।
1: अच्छा ठीक है, और सुनवाना भी है जी
2: आपको? भारती मैम को, समी मैम को, और ठंडे वाला जो नंबर है उसके लगाते हैं ना तो कभी भी नहीं लगता है मैम। बड़ा वाला मोबाइल से लगेगा?
1: नहीं, छोटा वाला से भी लगता है और बड़ा वाला दोनों से
2: मैम नहीं लगता है। लगाते हैं ना कभी कभी, माने हम लोग ज्यादा नहीं लगाते हैं, ए वाला में लगाते हैं। मैसेज उतना करना नहीं आता, इंग्लिश नहीं पढ़े हैं लोग थोड़ा।
1: तो कॉल के माध्यम से? कोई बात नहीं, कॉल के माध्यम से आप जुड़ सकती हैं।
2: मैम जब भी लगाते हैं ना नंबर तो याद है, 72, 77, 16, 65 मगर नहीं, मैंने और दिन करते थे ट्राई मगर नहीं लगता है। लगता है मैम कि मेरा मोबाइल में कोई प्रॉब्लम है।
1: नहीं नहीं, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होगा।
2: अच्छा।
1: आप जब कॉल कर रही हैं तो कोई या फिर यहाँ पे दिक्कत होगा या फिर
2: बताता था।
1: हाँ हाँ, नेटवर्क इश्यू की वजह से।
2: हाँ तो वही बताता है। अच्छा कोई बात नहीं, आपसे बात हो जाता है, वही बात वही बात है। ठीक है मैम,
1: तो गाना प्ले करते हैं।
2: नमस्कार,
1: गाना प्ले करते हैं।
2: ठीक है मैम,
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते, मैं गोपाल ओझा बोल रहा हूँ, ग्राम कटवास्ता जिला गुना से।
1: नमस्ते
0: जी, भारती जी बोल रहे हैं ना आप?
1: नहीं,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: उस दिन बात हुई थी ना आप?
1: जी जी,
0: शुक्रवार को लगाया था मैंने।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: बढ़िया है, अभी तो हमारे घर पर ही है।
1: क्या
0: अभी तो घर पर है हम तो।
1: अच्छा
0: जी
1: जी, तो फरमाइश बता दीजिए।
0: फरमाइश सुनवा दीजिए, वो रंग सुगंधा करना है।
1: कौन सा?
0: वो वाला है ना, तुमने देखे मेरी आँखें इसमें क्या मेरी कथा है, कुमार सानू हल्का ने गाया है आवाज है।
1: जी जी,
0: और क्या?
1: और गाना डेडिकेट भी है?
0: डेडिकेट है ना ये गाना हमारे दोस्तों के लिए।
1: ओके
0: जी।
1: अच्छा, आप रेडियो रिमझिम को कितना समय से सुन रहे हैं?
0: रेडियो रिमझिम सुन रहा है, होगा 5-6 महीने हो गए, होगा 5-6 महीने हो गए। अभी जब उसको बात हुई थी उनसे, अरे सोनी जी मैडम थी, उससे बात हुई थी पहले शुरू में।
1: अच्छा अच्छा, तो रेडियो रिमझिम के बारे में आपको कैसे पता चला?
0: जी हमने चला कर देखा इसलिए।
1: अच्छा,
0: तो सुनते हैं रिमझिम के कार्यक्रम उनको।
1: कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम?
0: रेडियो रिमझिम कार्यक्रम बहुत बढ़िया लगते हैं, कार्यक्रम आते हैं जी, और विविध भारती से भी जुड़े हुए हैं हम तो, सभी कार्यक्रम सुनते हैं आपसे।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम के मतलब कौन सा कार्यक्रम सबसे अच्छा लगता है आपको?
0: सबसे कार्यक्रम तो यही अच्छा लगता है, कोडिंग प्रोग्राम टाइम मिल जाता है तो सुनते हैं जी, और समाचार वगैरह सही सुनते हैं हमसे, टाइम मिल जाता है तो।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो ये रेडियो रिमझिम को आप कैसे सुनते हैं?
0: मोबाइल ऐप पे।
1: मोबाइल ऐप के जरिए?
0: हाँ।
1: अच्छा चलिए बढ़िया। तो मौसम कैसा उधर का?
0: मौसम बारिश हो रही है अभी तो।
1: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: बोल रहे हैं जिला गुना ककवासा गांव।
1: अच्छा, और अपना नाम क्या बताया है?
0: गोपाल ओझा।
1: अच्छा जी, तो आपका गाना प्ले करें? जी, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सुनवाना है, हमारे दोस्त है सुनील साल, ज्योति साल, जीतन डाटा है, उन्हीं के लिए।
1: अच्छा ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी करिए
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ अंकल, मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70-70-75-6300 या 70-70-72-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर कालीघाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम हर हर महादेव।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे शुगर नायका कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स होम डेकोरेशन टॉयज एंड गिफ्ट्स ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करे 86034-48652 पे।
9: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
10: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
9: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
11: हर घर सूर्य घर।
12: पिक इट अप, पिक इट अप।
13: हेलो
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone.

0: गया है आपका?
1: हाँ हो गया है।
0: हाँ, क्या हो रहा है?
1: बस ऐसे ही बैठे हैं। ये ना जब हम व्हाट्सएप पे मतलब वो आस पास देते हैं तो बचता नहीं है।
0: बचता है, 12 बजे से चालू होता है वो तो।
1: हाँ
0: जी तो बचता होगा।
1: नहीं मेरा मैसेज नहीं चेक किया जाता है।
0: क्या ना, बहुत सारे मैसेज आए रहते हैं तो कहीं उसी को पहले देखूंगी।
1: क्योंकि हम 2-3 साल तक से भेज रहे हैं और मैं मैसेज ही नहीं चेक हो रहे हैं। उसके बाद भी भेजते हैं कि मेरा कब बजेगा तो भी नहीं चेक किया जाता है। और कल भी भेजे थे, कल भी नहीं चेक हुआ है।
0: हम उनसे बोलते हैं कि अपना नाम बता दीजिए अपना और कहाँ से।
1: शाजिया नवादा से।
0: तो मौसम कैसा है उधर का?
1: हाँ हरियाली है, हरी भाई। उधर का मौसम कैसा है?
0: इधर का भी वही सुहाना मौसम हुआ है।
1: बहुत सुहाना हुआ है
0: जी। तो आज की फरमाइश बता दीजिए।
1: आज की फरमाइश अभी सोच रहे हैं।
0: बिल्कुल सोचिए।
1: आज मैं ट्राई की है तो पीछा कमर में लग ही गया तो सोचने का भी मौका नहीं मिला।
0: कोई ना, पर हम तो सोच के बता सकते हैं।
1: वो गाना है ना, हम दम की कसम हम दम न मिला, वही वाला बता दीजिए।
0: दो लाइन गा के सुना सकती हैं?
1: ये तो हम सुन रहे हैं, मेरी भाभी बताई है तो हम उसका लिंक
0: भेजिए। कोई बात नहीं है।
1: और ये सॉन्ग सबसे पहले आपको सुनाना चाहती हूँ और सभी लिसनर को, नए पुराने सभी मतलब जो भी जुड़े हैं और अपने घर में सबको सुनाना चाहती हूँ।
0: ओके, तो सादिया जी आप रेडियो रिंगटोन को कैसे सुनती हैं?
1: हम मोबाइल से सुनते हैं, मोबाइल एक छोटा वाला खदाया है उसी में सुनते थे। पहले रेडियो था, अब वो रेडियो खुद गया तो मोबाइल से सुनते हैं।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया। तो रेडियो रिमझिम का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
1: हमको बुहाई सर बहुत अच्छा लगता है।
0: चलिए बढ़िया। तब आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है ना?
1: अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, आप ना बताइए।
0: जी यहाँ पे भी सब कुछ ठीक है। ठीक है साजिया जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैडम जी।
1: नमस्ते
0: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मस्त देश से।
1: जी क्या हाल चाल है आपका?
0: बस रेडियो सुन रहे हैं यहाँ और।
1: बढ़िया, तो क्या हो रहा है?
0: बस बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ?
1: आपके मौसम बनाया हुआ है।
0: रात रात का पानी गिर रहा है, अभी भी गिर रहा है। और क्या
1: जी, अब तो सावन चालू है तो बारिश तो हो गई।
0: जी जी जी, आज चला सोमवार है, बारिश हो रही है, भोलेनाथ काम कर रहे हैं।
1: जी तो आज का फरमाइश बता दीजिए।
0: जी आज की फरमाइश है मैडम जी, पिक्चर का नाम है अंधा कानून और गाने के बोले यही है टाइटल सॉन्ग, ये अंधा कानून है। और सबसे पहले ये गाना आपको डेडिकेट आएगा, और गजराज सिंह लोधी है, मांगीलाल जी है, गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है। हेलो
1: जी जी, वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: कुछ नहीं, खाना खा के फ्री हुए अभी, मैंने सोचा कि फोन लगाया जाए, दो दिन ट्राई कर रहा था, अब जाके लगाइए।
1: अब लग गया ना?
0: जी
1: बढ़िया।
0: तो ये गाना कब तक बजेगा मैडम जी मेरा?
1: ये गाना आपका कल बजेगा।
0: कल बजेगा
1: जी,
0: ठीक है, धन्यवाद
1: जी। गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 FM।
0: थैंक यू।

0: एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
8: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी बढ़िया है, आप कैसी हैं?
12: सब बढ़िया। मैं, मुझे गाना सुनना है।
11: बता दीजिए।
12: ओल्ड मूवी है, इज्जत मूवी है, और उस मूवी का गाना है ये दिल तुम बिन कहीं लगा नहीं, तो वो गाना मुझे सुनना है। और वो गाना मतलब पूरा बजाइएगा
11: जी। और गाना किसी को सुनाना भी है?
12: सबसे पहले आपको और सारे लिसनर्स को।
11: वैसे आपका नाम?
12: खुशी श्रीवास्तव बोल रही हूँ, गोपालगंज।
11: अच्छा खुशी जी, मतलब आप गोपालगंज में कहाँ से बोल रही हैं?
12: गोपालगंज
11: जी। तो क्या कर रही हैं खुशी जी?
12: अभी तो आपके पास कॉल कर रही थी, मुझे तो
11: अब लग गया ना आपका कॉल।
12: हाँ, वो अब 10 मिनट बाकी रह गए, हमको लगा कि आज लगेगा ही नहीं कॉल।
11: नहीं देखिए, लग गया ना।
12: हाँ
11: तो आपके घर परिवार में सब कुछ ठीक है?
12: हाँ सब सब सब अच्छा।
11: चलिए अच्छी की बात है। तो खुशी जी आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनती हैं?
12: हमें ऐसे तो स्टडी टाइम में तो इतना कम टाइम मिलता है, बट ऐसे जब टाइम मिलता है तो सुनती हूँ। और ये नंबर हमेशा याद रहता है कि जब दिन में कुछ छुट्टी हो या टाइम मिले तो कॉल कर दीजिए।
11: मतलब रेडियो रिमझिम को मतलब कैसे सुनती है, मतलब कहने का मतलब ये है कि आप मतलब ऐप के जरिए सुनती हैं या फिर?
12: वो तो हमेशा सुनती हूँ, मतलब जैसे मैं सेल फोन नहीं यूज करती हूँ इसलिए मतलब फॉलो हो जाता है। अभी स्टडी टाइम मतलब नहीं चलाता है फोन इसलिए। ओके मैम, मेरा गाना प्ले कर दीजिएगा।
11: जी जी, तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं। जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
12: थैंक यू।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार
1: मैम। नमस्कार।
0: सुधीर कोल बोल रहा हूँ, देवघर झारखंड से।
1: जी, अपना नाम क्या बताएं?
0: सुधीर कोल बोल रहा हूँ, देवघर झारखंड।
1: ओके, क्या हाल चाल है सुधीर जी?
0: बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आप भर्ती में बोल रहे हैं ना या मनोरमा में?
1: हेलो जी,
0: आप भर्ती में बोल रहे हैं मनोरमा में बोल रही
1: हूँ? जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: जी जी जी, आपसे दूसरी बार बात कर रही हूँ।
1: जी, अब क्या हो रहा है?
0: क्या हो रहा है, ट्राई करते करते अब लगी मैम, सोमवार बुधवार और शुक्रवार को 11 बजे कोशिश करते हैं लगाने का। हेलो मैच में आज सुना दीजिए मैम, सावन बोलोन का गीत है, 36 बार और सावित्री कर्मकार का कथा बोलोन गीत है। बोलो में सावन के महीने बोलो में आए बोलो प्रतिगिति पर।
1: जी, आप दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
0: जी, आए दिन लोग धन सावन के महीना हुआ प्रतिगिति पर।
1: ओके, और डेडिकेट भी है?
0: जी, सबसे पहले मैं आपको रेडियो रिंगे को पूरी टीम को और जितने भी लिसनर हैं सबको सुनाना चाहता हूँ। और कुछ फैन को रहे, मदन को लें, विष्णु प्रसाद यादव है, भोलानाथ को लें, कृष्ण को लें, राजकुमारी है, युगल को लें, कमली को लें, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी मैम।
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
0: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
0: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
10: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
10: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ 1-2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय 10:00 बजे से 2:00 बजे तक।
10: पता, जंगलिया मोहल्ला।

0: नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
4: Jab phone ring de bajte hai to kehte hain hello.
5: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो,
7: सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगी 90.4 FM में।
7: बहुत स्वागत
6: जी, बढ़िया है। आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
7: मैं भी ठीक है। और उधर मौसम कैसे
6: है? मौसम तो बारिश हो रही है जी। अपना नाम बता दीजिए।
7: रहमत अंसारी
6: जी, कहाँ से बोल
7: रहे हैं? अभी तो मैं कश्मीर में
6: हूँ।
7: गाना सुनी थी,
6: बता दीजिए।
7: मैंने जब बोला टोल तुमने भेजा है खत में, टोल में ही मेरा दिल है, ये गाना
6: जी। तो अपना गाना नहीं करते हैं जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकू 90.4 FM में।
1: जी अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है?
1: हमारा तो ठीक है, अपना बताइए।
0: जी मेरा भी बढ़िया है।
1: पहचान लिए?
0: नहीं, आवाज से तो पहचान हुआ लग रहा है, लेकिन नाम बता दीजिए।
1: अच्छा, हमारे फरीदा पड़ेगा ना, फरीदा खातून
0: जी।
1: हाँ, पौधा जुड़े है ना। हाँ, तो जब भी कॉल करते हैं तो लगता नहीं है, कब उसी से पड़ता है तो कब जीजी जीजी जीजी जीजी जाते, इसलिए हम नहीं जुड़ पाते। आज सोचेगा सुने का आपका बहुत लज्जाबाद चल रहा है इस वक्त का। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है, हमको हम सब सुन रहे हैं।
0: जी, कहाँ से बोल रही हैं आप?
1: हम सिवान जिला से। सिवान जिला से, रेडियो से नहीं चलता है ना। उस बगल से।
0: अच्छा जी।
1: जी हाँ, तो बोलते हैं कि वॉइस मैसेज कब से चलता है? 12 बजे से लेकर कब तक चलता है?
0: 4 बजे तक।
1: अच्छा, तो नंबर एक बार बोल दीजिएगा।
0: वो नंबर तो मुझे याद नहीं है, उसमें बताया जाता है, आप एक बार सुन लीजिएगा।
1: जी जी, लाइफ तो बोलिएगा, इस तरह से मत बोलिए, लाइफ का बोलिएगा ना, तो हम सब ले लेंगे। गाना बजा सकते हैं?
0: बिल्कुल।
1: तो अपना परिचय नहीं दिया, आपका नाम क्या पड़ेगा? मैं
0: जी, मेरा नाम मनोरमा।
1: कितना लचकदार नाम है, कितना मधुर चाहे, बोली कितना बन जाएगा।
0: अच्छा जी, बिल्कुल आपके जैसा है ना।
1: नहीं, हमारे तो बहुत अच्छे है ना, मोटा है आप, इतना
0: नहीं, नहीं, आप बहुत नहीं, आप बहुत अच्छा बोलती हैं, इसी ने तो आपको आपको पहचान रहा है, लेकिन नाम बताने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था, तो इसीलिए पूछे आपका नाम।
1: जी जी जी जी, नहीं नहीं, तो पहचान लीजिएगा धीरे धीरे, जब आपको कराएंगे। तो गाना हमको सुना दीजिए।
0: बता दीजिए
1: गाना क्या बोल है, याद है नहीं, दूसरा जाके सुना दे हम।
0: जी जी बिल्कुल,
1: ये गाना सुना दीजिए।

0: प्यार करके
1: ये आप तो बहुत अच्छा गा लेती हैं।
0: नहीं आप जैसे आप मुझे थोड़ी हम सब गाते हैं क्या?
1: नहीं ऐसा बात थोड़ी, आप बहुत अच्छा गा ले रही हैं।
0: अच्छा जी थैंक यू।
1: तो यही गाना सुनिएगा।
0: हाँ हाँ यही गाना सुना दीजिए, स्पेशली आपके लिए है, आपसे पहली बार बात हो रहा है ना।
1: जी जी
0: आपके के लिए ये गाना है।
1: ओके और भी लोगों को डेडिकेट है।
0: जी जी बात नाम भादे।
1: जी जी बिल्कुल।
0: तो सबसे पहले आप हैं
1: जी,
0: उसके बाद शहादत अंसारी जी है, रवि जी है, उर्मिला जी है, और क्या बोलते रामदेव जी है, संतोष जी है, अरमान लाख जी है, अजित नारी जी में दोस्त हमारे सुन रहे हैं लोग, पागल से नहीं रही है, उन पास के लिए है स्पेशली गाना याद करिए यही।
1: ओके जी
0: ओके बाय।
1: गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगम 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल।

0: के पास गोपालगंज, कॉल करे 94512-11001।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: आवाज बहुत कम आ रहा है।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: ठीक है, आप बताइए। इशाद मास्टर बोल रहे हैं ग्राम तनाव से।
1: ओके, क्या हाल चाल है इशाद जी?
0: ठीक है, अपना सुनाइए। मुनम्मा जी।
1: जी,
0: और सब?
1: और सब बढ़िया। आप अपना बताइए, क्या हो रहा है?
0: अरे हम लोग का सिलाई हो रहा है, खेत रुपा रहा था, रुपा गया। हम लगे हैं काम में, कार्यक्रम चल रहा था सुबह से। सब रेडियो रिंकी परिवार ठीक है आप लोग?
1: कोई बढ़िया जी। तो फरमाइश बता दीजिए।
0: फरमाइश तो वह लगा रहे थे 11-5 में, तो बहुत बिजी बचा, तो छोड़ दिए कि लास्ट में लगाएंगे, तो दो बार लगाए बस लग गया। उसे निगाहें मूवी का गाना सुनवा दीजिएगा।
1: जी,
0: निगाहें मूवी।
1: सावन
0: के झूलों में, सावन के झूलों में मुझको झुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। और सबसे पहले आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, और जितनी रेडियो रेंजी में सभी लोग सुनेंगे, हम लोग भी सुनेंगे। जनाव से रोशन टेलर में काम करते हैं हम लोग
1: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
0: जी
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजी 90.4 FM।
0: जी नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकी 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल चाल है आपका?
1: ठीक है मैम,
0: अब क्या हो रहा है?
1: आइए बर्फ खाने।
0: हाँ जी,
1: हम जानी मैम, हमको भूल गई।
0: आप ऐसे भूल सकते हैं?
1: बहुत 80 बार फोन किए हैं, 80 बार।
0: अच्छा जी।
1: देख लीजिए।
0: वो क्या ना कि मतलब एक कॉल करता है तब तक दूसरा आ जाता है।
1: जी जी मौसम कैसा है इधर?
0: मौसम तो सुहाना है।
1: बहुत सुहाना है। हम सब गाना सुना दी।
0: जी गाना सुनाएंगे। आप अपना नाम बता दीजिए जी एक बार और।
1: फास आलम।
0: कहाँ से बोल रहे हैं आप?
1: बिहार बरारी हर से।
0: बिहार में कहाँ से?
1: बरारी हर से।
0: अच्छा,
1: अपना दुकान है।
0: किस चीज का दुकान है?
1: टेलर, बॉम्बे टॉप टेलर।
0: अच्छा,
1: जान रही हूँ। हम जानी मैम, हमको भूल गई है।
0: नहीं,
1: गाना सुना दीजिए मैम।
0: जी बता दीजिए।
1: अब भी 1 घंटा पहले बज रहा था, लेकिन तो बता दी फादर के मदर के बारे में।
0: कौन सा?
1: फादर मदर मैंने माता पिता के।
0: अच्छा अच्छा,
1: याद आ गया।
0: दो लाइन गा के सुना सकते हैं?
1: नहीं मैम, सुनना नहीं। आप सुनने नहीं उठा रही, वो कर गया।
0: चल कोई बात नहीं, आप गाना थोड़ा भी बता दीजिएगा तो हम बजा सकते हैं।
1: जी मैम, फादर मदर। कब तक
0: ये गाना आपका कल बजेगा?
1: 7 बजे।
0: जी जी, 5 से 7 के बीच।
1: तो हम ये खाली चढ़ाई की 5 से 7 बजे तक तो मेरा नाम सुनवाई है।
0: वो क्या ना कि बहुत सारे कॉल्स आ जाते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है।
1: आज नहीं हो पाए।
0: कोशिश रहेगा कि आज ही हो जाए। जी जी
1: ठीक है मैम।
0: जी वैसे क्या करते हैं आप?
1: मैम अभी पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं?
1: 8वां क्लास की, अभी 8वां में।
0: तो कैसे चल रही है पढ़ाई आपकी?
1: अच्छी चल रही है मैम, आज नहीं गए।
0: क्यों?
1: मैम इसी तरह आज गाना सुनने का मन।
0: अच्छा जी,
1: हाँ
0: चलिए बढ़िया।
1: ठीक है मैम।
0: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकू 90.4 FM।
1: ठीक है मैम।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे

0: ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
1: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक थावे रोड गोपालगंज।
2: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करें 87-894-18744।
8: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: Pick it up.
6: Hello.
5: Now pick your phone up.
6: Hello.
7: Jab phone ring de bajte hai to kehte hai hello. Hello.
8: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: हेलो, नमस्कार मैडम।
10: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
9: जी मैडम, कमलेश बोल रहे हैं यहाँ रखुआ से।
10: जी, क्या हाल चाल है कमलेश जी?
9: आप लोग मैडम।
10: जी जी, आपका आवाज कट के आ रहा है।
9: अरे आप लोग ठीक है ना? सब सही है ना?
10: जी जी, यहाँ पे भी सब कुछ बढ़िया है।
9: मौसम तो बहुत ठंडा हुआ है, बारिश हो रहा है क्या उधर?
10: बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश के जैसा मौसम बनाया हुआ है।
9: ठंडा मौसम है ना। गाना सुनना चाहते हैं मैडम
10: जी? बता दीजिए।
9: हम तो गाना सुनना चाहते हैं, सब भूखे हुनर में हरारे मिले हुनर, गाना नहीं है प्रमोद करेंगे तो गाना सुनना है।
10: ओके, तो ये गाना किसी को सुनाना भी है?
9: हमारा मुकेश मिश्री है, उनको सुनाना चाहते हैं। जितना लोग सुन रहे हैं रेडियो रिंगिंग का आने वाला सब किसी को सुनाना चाहते हैं। और आपके भी?
10: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
9: ऐसे हम काम करते हैं, हेल्पर ही में, घर बना रहे हैं।
10: अच्छा,
9: घर बना रहे हैं, जुड़ाई कर रहे हैं।
10: अच्छा, तो अभी कहाँ है? यहीं पे।
9: हाँ, काम कर रहे हैं, काम पे ही।
10: अच्छा,
9: मौसम अच्छा, ऐसे ही मौसम होना चाहिए काम का। मैडम कहीं गई है क्या मैडम?
10: हाँ, छुट्टी पे।

0: कितना दिन के लिए गई
1: अब आएंगे तो।
0: चलिए ठीक है मैडम, बजेगा ना शाम के गाना?
1: जी जी बजेगा।
0: ठीक है मैडम, इंतजार करेंगे हम।
1: ओके तो गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैडम नमस्कार।
1: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: हेलो जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 FM में।
0: इसके लिए दिल से धन्यवाद। मैं नेपाल बिहार रेडियो क्षेत्र संग्राम वाराणसी में प्रदीप चंपारण बिहार से संजय कुमार का।
1: ओके, कैसे हैं संजय जी?
0: एकदम बिल्कुल बढ़िया। आपका सुनिए, आप कैसे हैं? आप रेडियो पूरे इंजिन सबको कैसे हैं
1: जी? सब कोई बढ़िया है।
0: चलिए, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। आज तक अभी तुम्हारी है तो कहीं ना कहीं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद होंगे
1: जी। जी आपको भी,
0: आपको भी रेडियो परिवार सभी परिवार है। और सब सुनाइए, उधर का हाल खबर सुनाइए
1: जी। सब बढ़िया है, आप अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। बारिश हुआ है कि नहीं आजकल?
1: बारिश तो हो रहा है।
0: अभी नहीं हो रहा है। कल हम लोग कल बरसा है, बरसा है
1: इधर भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है बारिश भी।
0: जी जी जी, मौसम सुहाना है।
1: मौसम सुहाना है। तो क्या हो रहा है?
0: अभी तो कोई ना, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। हमारे अभी तो रूम पे बैठे हैं, आपसे बाहर आ गए हैं। खेती बाड़ी हो रहा है तो अभी तो अभी अभी काम लगा है तो कुछ लोग गए हैं कार्य करने के लिए। फिलहाल चल रहा है। जी जी, आज गाना सुना लीजिए। सावनी गाना तो बात करता है।
1: कौन सा?
0: सावनी बात करता है। सावनी हिंदी गाना बात करता है ना?
1: हाँ बजेगा
0: तो गाना एक बजा दिए। जय शंभु कहो, जय शंभु कहो, इसी तरह से गाना है। एक सुना दीजिए।
1: ओके सुनाएंगे। और ये आप गाना किस किस सुनवाना चाहते हैं?
0: क्रिकेट में सबसे पहले आपको रेडियो परिवार संपूर्ण परिवार को हो गया शखान से मोहम्मद सारे जी गाने लगता था कुछ आज की पगान से अलगोरिदम से नगर पंडित दीपक दास जयगान ठाकरे जिम्मेदार से हमारे नाम से जाना चाहते
1: नमस्कार जी, आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले से लेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
9: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
10: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
11: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
12: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
11: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
14: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
15: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
16: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
17: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
18: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
19: हेलो
18: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
19: नमस्कार मैडम जी, कौन बोल रहे? भारती जी बोल रही, सोनी जी बोल रही है?
18: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
19: अच्छा, आज मेरी पहली बार बात हो रही है मैडम जी आज।
18: जी,
19: खाना हो गया आपका?
18: और आपका?
19: मेरा भी हो गया।
18: चलिए बढ़िया, नाम बता दीजिए अपना।
19: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू, मधुसूदन नगर, जिला गुना, मध्य प्रदेश से।
18: ओके, तब क्या हाल चाल है आपका?
19: बस रेडियो सुन रहे हैं आपका, और क्या है।
18: चलिए बढ़िया, तो बता दीजिए फरमाइश।
19: फरमाइश है, पिक्चर का नाम है घर की बेटी और गाने के बोल है समझी तेरी घोड़ी चने के पेट में।
18: एक बार फिर बताइए।
19: पिक्चर का नाम है बड़े घर की बेटी
18: आपके
19: और गाने के बोले समझी तेरी गोली चने के खेत।
18: ठीक है, और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
19: जी ये सोनी जी मैम को है, भारती मैम को है, आपको है, और अपने गोपाल ओझा जी है, गजराज सिंह लोधी है और जितेन धाकड़ जी है।
18: तो
19: और जितने सभी रेडियो और रिमझिम सुन रहे हैं उनको सबके लिए ये गाना डेडिकेट रहेगा।
18: ओके
19: जी
18: जी, तो आपका गाना प्ले करें।
19: कब बजेगा ये
18: गाना आपका? कल बजेगा।
19: ठीक है
18: जी, तो गाना प्ले करते हैं।
19: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
18: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मधु सर यहाँ से बोल रहे हैं, राजकुमार।
1: अच्छा,
0: सॉन्ग सुनना है।
1: जी बता दीजिए।
0: बोलबम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, आज काम तो नहीं गए, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: अच्छा, और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा अच्छा, ये बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, कभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: कैलाश धुआं धुआं है।
3: अरे का हो, काहे मन मार के बैठल बड़ू, कोनो प्रॉब्लम बा?
4: ए जी, एगो बात कही।
3: कहा?
4: बड़ा मन करता देवघर जाए के जी।
3: तब
4: देखी न बाबा, कई दिन से सपना में आओ तनी, अपना नगरी में बुलावा तनी।
3: सपना तो हम देखते, लेकिन क्या करी, पैसे नहीं खेरे।
5: ए साल रहेगा, पर साल चले जाए, ठीक बा? गाड़ियों खाली नहीं खिसा
4: तो हम अब की बार ना मानो, हम तो जेबे करोगे।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
7: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
8: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
7: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
8: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
7: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9974-34468 पे।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
6: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस ₹89,815, HF डीलक्स ₹76,275, ग्लैमर एक्स ₹101,354 और एक्सट्री 125R ₹110,836 में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
6: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97714-86164।
14: ठक ठक।
15: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
16: अच्छा मिला ही नहीं।
15: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
16: जी हाँ कमल श्री, याद रखिए सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
15: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
16: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
17: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
16: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
17: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
16: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
18: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
5: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
19: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
5: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
19: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
5: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अंबेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
19: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
5: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
20: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
20: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
20: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
20: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
21: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
22: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
20: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
20: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
20: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
23: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
24: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
20: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
20: संपर्क करें 9939365923।
25: ओम
23: नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
23: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
23: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
23: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
23: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
23: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर

0: सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92-8-99-22-5-67 या 97-7-14-86-164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
4: कब भौजी? आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नू सारा मार्केट देख लेनी नू सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।

0: कसमानू खाने नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोध गया,

0: 4988 4545।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
7: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
8: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9166664498 पे।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
10: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
9: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से। All right.

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
2: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
1: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
8: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
8: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97 714 86 164।
9: प्रसाद क्लिनिक,
10: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
9: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंड स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
10: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
5: नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
6: बोलबम हर

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मनपसंद कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो बिना देरी किए कार्यक्रम को शुरू करेंगे और हमारे पास यहाँ बहुत सारी फरमाइश पहुँची हुई है। इससे पहले मैं आप सभी के लिए अपनी तरफ से गद्दर 2 का प्यारा सा सॉन्ग प्ले करने जा रही हूँ और गाने के बोल हैं चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। तो गाने को एंजॉय कीजिए सभी के साथ।

अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से गद्दर मूवी का सॉन्ग, चलते रहे इश्क में पड़ जाते हैं, और ज़रूर बताइएगा कि गाना कैसा लगा आपको। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती दी, गुड आफ्टरनून, का हाल बा, मेरा नाम गणेश कुमार, पिपरा नारायण, अंकुश राजा के गाना सुनने के बाद तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, मैं भी जुड़ गया हूँ दीपक चौहान सूरत से, मुझे गाना सुना दीजिएगा, और सॉन्ग कमरिया गजब डोले प्रियंका सिंह का है, तो प्लीज़ गाना सुना दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुँच हुई है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मुझे गाना सुनना है और दिलवाले फिल्म से बजा दीजिएगा, आज मेरा एक सप्ताह पूरा हो गया जलंधर पंजाब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपकी सप्ताह पूरी हो चुकी है, तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं, और दिलवाले मूवी से सॉन्ग है जीता था जिसके लिए, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है, तो चलिए गाना प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई संतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
2: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हैं, उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे तरफ। और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
6: जी,
5: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक ठाक। नमस्ते।
5: नमस्ते। गाना
6: भारतीय जी बोल
5: रही? जी जी, मैं भारती बोल रही हूँ।
6: कैसे हो भारती जी?
5: मैं ठीक हूँ।
6: वो इंडिया में मौसम कैसा जा रहा है?
5: जी हमारे एरिया में तो अभी मौसम ठीक ही है।
6: अच्छी बात है। मैंने गाने की फरमाइश करनी है।
5: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
6: गाना है कितने कितना बेचैन होके तुमसे मिला।
5: और
6: ठीक है, ये गाना
5: गाना किसी को सुनाना भी है?
6: हाँ, आपको सुनाना है भारती जी।
5: जी जी बिल्कुल। तो गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। रेडियो रिमझिम में कॉल किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
6: नमस्ते।
5: नमस्ते।

0: तो अभी हम लोग ने सुना कसूर मूवी का बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग कितना बेचैन हो के उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ में। तो इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो, मुझे गाना सुनना है मैम, आज आए सावन झूम के। और कैसी हैं आप? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और मैं ठीक हूँ। और अपना नाम ज़रूर बताएं कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी, नमस्कार, इरशाद मास्टर रोशन कैलाश ग्राम धनु आपके कार्यक्रम से जुड़ गया हूँ, और क्या हालचाल है? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अभी। और मेरा हालचाल ठीक है, आप अपना बताइए कि आप कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि पाजी यूपी 54 से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि इस फरेबी दुनिया में मुझे दुनियादारी नहीं आती, झूठ को सच साबित करने की मुझे कलाकारी नहीं आती, जिसमें सिर्फ मेरा हित होता हो वह समझदारी नहीं आती, शायद मैं इसलिए पीछे हूँ, मुझे होशियारी नहीं आती। तो बहुत खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं आप? और मुकेश यादव गोपालगंज से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं हमें भी एक गाना सुनना है, सुना दीजिएगा मनोज तिवारी जी की आवाज़ में। और गाने के बोल हैं मुंबई से बोले तनी बुरा समाचार बा। और सुनाना है आपको देवेंद्र भाई को, उत्तम भाई को, बिरजू भाई को और समीर भाई को, हमारे रेडियो रिमझिम के पूरे लिसनर को भी थैंक्स बोलिएगा। और मुझे मुकेश यादव गोपालगंज से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनका एक हफ्ता भी पूरा हो चुका है, तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं मनोज तिवारी की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग।
1: हम बोलतनी, हम मंगरू बोलतनी बम्बई से।
2: अच्छा
1: अच्छा, अकिए भौजी पालाजी
2: सुनाती
1: हेलो मोबाइल टूबाइल। हाँ

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
8: ठक ठक।
9: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
10: अच्छा मिला ही नहीं।
9: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
9: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, हम अहमद अली श्रेया वार्ड नंबर 1 से। गुड आफ्टरनून मैम, मेरा टाइम हो गया है कि मैम भारती मैम बताइएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं का हाल बा भारती मैम, हम दिनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से हमरो हाजिरी लगा दें। और लिखा था नहीं कि दर्द है दिल में पर इसका एहसास नहीं होता, रोता है दिल जब वो पास नहीं होता, बर्बाद हो गए हम उसके प्यार में और वो कहते हैं इस तरह प्यार नहीं होता। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, हम सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरे राज बाबा के नगरी से। तो देवी की आवाज़ में गाना सुनना है मनवा के ललसब पुरादी राजा जी, और अगर समय होगा तुमका तो ज़रूर सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हाय अस्सलाम वालेकुम, क्या खैरियत है आपका, और हमको भी गाना सुना दीजिएगा। और गाने के बोल भेजे हुए हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्ते मैम, मैं विमल कुमारी और आज हमें सॉन्ग सुना दीजिएगा। और गाने के बोल हैं 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, और मुझे फरमाइश किए हुए 1 वीक हो गया है तो मेरा मैसेज को भी देखिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपका मैसेज मैंने देख लिया है और चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं। और गाना बहुत ही खूबसूरत है, मूवी है एक दूजे के लिए, और गाने के बोल हैं 16 बरस की बाली उम्र को सलाम। तो बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ।

0: भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
0: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
7: भरोसे वाले से लेंगे,
6: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
7: और कीमत भी।
6: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
8: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
9: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
10: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
11: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
10: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
12: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
10: कॉल करें 85070-32042 पे।
13: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9852878191 और ये पे जुड़ सकते हैं, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर 7277-16-65-96 पे जुड़ सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं रोहित हैदराबाद से अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनना है और गाने के बोल हैं अजीबो गरीब। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले किया जाएगा। इससे पहले यह हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा, और गाना बजाना है कि नहीं ज़रूर बताइएगा, और आपका गाना आज नहीं बज सकता क्योंकि आपका अभी एक सप्ताह पूरा नहीं हुआ, कल ही आपका गाना प्ले किए थे। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, क्या हाल चाल है? आशा चौहान विलेज सरफरा परसौनी से, कैसी हैं, कैसे हैं आप सभी? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और हम सभी ठीक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बहुत गहरी थी रात लेकिन हम सोएंगे, दर्द भरी बहुत है दिल में मगर हम रोएंगे नहीं। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मुस्तफ़ा सऊदी अरब से जुड़ चुके हैं, और गुड आफ्टरनून। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक्स मेरा गाना बजाने के लिए। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैडम, हमारा सॉन्ग अभी तक नहीं बजा। उपेंद्र शर्मा मुंबई। मैम हमारा भी सॉन्ग सुना दीजिएगा। मैम चाहता गाने के बोल है, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मैं संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मेरा हाल तो ठीक है, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, मैं प्रेम मधेसिया पढ़ रहा हूँ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। और भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं बताइएगा जरूर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और मैं ठीक हूँ, आप सब बताइए आप सब कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशेर मुंबई से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून, और मेरा हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ एक और मैसेज लिख रहे हैं कि खामोशी को समझने वाला मिल जाए तो दुख भी बयां करने की ज़रूरत नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोनी जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, निजामुद्दीन सऊदी अरब से क्या बात है, बहुत सुंदर गाना बजाया आपने, प्यार तेरी पहली उम्र को सलाम, बहुत अच्छा लगा और गाना सुनकर। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से एक गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि घर से बाहर कॉलेज जाने के लिए वो नकाब में निकली और सारी गली उनके पीछे निकली, इनकार करते थे वो हमारी मोहब्बत से और हमारी ही तस्वीर उनकी किताब से निकली। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि भारती जी मेरा भी मैसेज देख लीजिए। तो ऐसा नहीं है, मैं सभी के मैसेजेस देख रही हूँ और आपका भी देख ही लिए हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है गाने की फरमाइश के साथ, और लिख रहे हैं कि नमस्ते मैडम जी, मुकेश खरवरा हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुके हैं और गाने के बोल हैं पुड़वा मलाई खाला। बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाली लपसी। और इसी के साथ लिख रहे हैं कि भारती जी बजा दीजिएगा। और भारती जी मेरा मैसेज नहीं दिख रहा है क्या आपको? नहीं, ऐसी बात नहीं, आपका भी मैसेज दिख रहा है। और लिख रहे हैं कि हर बार दिल से ये पैगाम आए, जुबा खोली तो तेरा ही नाम आए, और तुम ही क्यों भाए दिल को क्या मालूम, जब नज़रों के सामने हसीन हसीन तमाम आए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है, एंजॉय कीजिए सभी इस गाने को। बुढ़वा मलाई खा लो बुढ़िया खा लो लपसी।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
6: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200042403, 6200042403।
7: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
7: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27, बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
7: या अभी कॉल कीजिए 92899225567 या 97714861.
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
10: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मौसम इश्क है तू एक कहानी बन के आ, मेरे रूह को भिगा दे जो तू वो पानी बन के आ। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हैं जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो गुड आफ्टरनून भारती जी, राजसु लाल सिंह नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और आज मॉर्निंग से बारिश हो रहा है तो एक गाना सुनना चाहते हैं, और गाने के बोल हैं थम के बरस, और डेडिकेट है सुहानी दुबे ऑल रेडियो लिसनर को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ मेरे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्ते भारती जी, मैं साकिब जम्मू एंड कश्मीर से और बिहार का रहने वाला हूं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ मेरे पास यहां कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
11: हेलो मैडम जी, प्रणाम।
10: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी जी, का हाल बार और
11: ठीक मैडम जी, बताई
10: हमने के ठीक बनी सन।
11: आज छुट्टी बात है। छुट्टी बाई है सुनी ना, दामन के ऐसी बात है, दामन को जाना एगो बात नहीं, गावत तनी गुला बजावे के बात।
10: तो भक्ति सॉन्ग मत बताएं, हिंदी सॉन्ग
11: ना, ना महाराज, अरे हम जनत नहीं हुआ तो हम आजीवन का ना है कुल हम प्रोग्राम में बराबर हम ऐसी बने जाने रोबा का नया भी नहीं बने हैं ना। हम्म, हाँ तो हम हिंदी फिल्म का गाना है सिंदूर फिल्म का गंदी और डाला था नहीं हम पतझर सावन बसंती बहार पतझर सावन बसंती बहार एक बरस के मौसम चार मौसम चार मौसम चार पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का पतझर सावन बसंती बहार एक बरस के मौसम चार पांचवा मौसम प्यार का इंतजार का। मैडम जी
10: जी जी
11: गाना बजाओ तो बा
10: हाँ सुना था नहीं
11: अरे सुनिए सबसे पहले रहूगा की सुनवा जितना लोग सुनत है सब लोग के हम पूरा परिवार के साथ सुने के चाहत रही ठीक बानी बजाई बजावे खातिर थैंक यू कहें कि हमेशा जो नाक पड़े नहीं हनु छोटा मोबाइल हमारा हाँ ठीक बा बजाई हम प्रोग्राम सुन
10: ठीक बड़ा और गाना प्ले कर दिल बानी एंजॉय करी सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM में।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग पतझड़ सावन बसंती बहार। तो बिना देरी के बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सब ठीक है ना, और लिख रहे हैं कि डॉक्टर क्या बीमारी है भाई, मरीज जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो मुझे वह इंसान दिखाई नहीं देता। डॉक्टर अच्छा, और ऐसा कब होता है? मरीज जब मैं फ़ोन से बात करता हूँ तब होता है। तो बहुत ही खूबसूरत सी चुटकुला है, और नाम तो नहीं मालूम कि कौन और किसने भेजा है, अपना नाम ज़रूर मेंशन करें। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम बारिश आने वाला है क्या? तो ये तो अभी मुझे नहीं मालूम, मुझे देखना पड़ेगा बारिश होगा या नहीं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मेरा भी गाना बजा दीजिएगा बुधवार, मेरा गाना बजाए इसके लिए शुक्रिया, बुढ़वा मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी हो। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और गाना आप इंजॉय किए, ये बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ मेरे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, मैं रोहित हैदराबाद से, और अरिजीत सिंह का गाना सुनना है, और गाने के बोले हैं अजीब गरीब। तो चलिए बिना देरी की आपके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ। बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है अरिजीत सिंह की आवाज़ में, तो एंजॉय कीजिए सभी लोग।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ,

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँच चुका है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग मैम, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं भारती जी हमको भी आज गाना सुनना है, बहुत दिन हो गया है, सुना दीजिएगा तू शायर है मैं तेरी शायरी। तो जी बिल्कुल आपको भी गाना सुनाया जाएगा। इससे पहले हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। जी क्या हालचाल है आपका?
1: ठीक है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है।
1: नाश्ता हो गया? मैं
0: नहीं, अब नाश्ता तो हो गया है लेकिन अब भोजन होगा।
1: अब होगा ना? आप तो सुनाइए।
0: और सब तो ठीक है, आप गाना बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगी।
1: गाना बजवा दीजिए पवन सिंह का, लहंगा से महंगा इनाम दे।
0: गाना बढ़िया है ना?
1: बढ़िया है ना,
0: क्योंकि मैंने तो सुना नहीं है, अब कैसा है?
1: अच्छा
0: है। है ना, बजा दूं?
1: हाँ बता दीजिए।
0: गाने एक बार और बता दीजिएगा। और सॉन्ग किसी को डेडिकेट है?
1: हाँ आप सुनेगा, जितना लोग सुन रहे हैं रेडियो सब कुछ सुनेगा।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
1: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9779786164।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
0: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
0: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
0: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
7: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमें से कॉल करके जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277-16-65-96। यदि व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9852-78-82-91। और इसी के साथ मैं आप सभी को एक और बात बता दूं कि यदि आप सभी को रेडियो रिमझिम के YouTube, Facebook, Twitter पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल के बारे में जान सकते हैं और सुन सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इस बारिश के मौसम में ऐसा गाना बजाने के लिए थैंक यू, और मैं भी हूँ नंबर में। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, भारती जी नमस्कार, मैं कैसी हैं आप, और मैं भी शो से जुड़ गया हूँ, मैं रोहित देहरादून से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोनी जी, सन्यासी रंजन बाबा, नमस्ते बाबा जी, और कैसे हैं, उम्मीद करते हैं आप मस्त होंगे। और जी मैम, ये सुना दीजिएगा। तो मैंने कह दिया है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नौशाद अली मोतिहारी जिला से, और मुझे एक गाना सुना है और गाने के बोल हैं ये धरती ये अंबर जब से। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे। उससे पहले यहाँ वॉइस पहुँचा हुआ है, तो चलिए पहले वॉइस सुनते हैं उसके बाद गाने को प्ले करते हैं।
8: भारती जी, ये गाना का फरमाइश किया हूँ, ये गाना जो है कि बजाइए, और खासकर अपने सोनी जी हैं जो, उनको सुनाना चाहता हूँ और आपको सुनाना चाहता हूँ, और रेडियो रिम जिम जितने सुने हैं उन लोगों को, तो ये गाना थोड़ा बजाइए और इस गाने के साथ थोड़ा गुनगुना भी लीजिए, ठीक है।
7: तो चलिए इनका गाना बिना देरी किए प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग, ये धरती ये अंबर जब से।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा है जो कि लिखते हैं कि हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और सभी लिसनर को, सभी आरजे को गुड आफ्टरनून बोलिएगा। हम अभी लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सन्यासी रंजन जी लिख रहे हैं कि जम के बरस धान सूख जाए, तो बात तो सही है। और चलिए बिना देरी किए हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: मैम मुझे गाना सुनना है।
0: नाम बता दीजिएगा।
1: मेरा नाम सोना है।
0: और कहाँ से हैं आप?
1: गोपालगंज।
0: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: मुझे गाना सुनना है तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: आपको
0: तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। वेलकम।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना नहीं लगता।
0: बेटी, देखिए आप कुछ नहीं आ रही है, आपको अच्छा लगने लगेगा, और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
6: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
7: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
8: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
9: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। जी नमस्ते, नाम बता दीजिएगा अपना।
1: पिंकी तुम्हारी आवाज अच्छी लगती है।
0: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: गाना बुलबुल के राग में जी हाई ना वे
0: होगा। एक बार धीरे से बोलिएगा, मतलब साफ बोलिए, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है।
1: बोल रहे हैं बुलबुल के राह में मर जाए यही ना बेवफा, गाना सुनना है।
0: और सॉन्ग डेडिकेट भी है
1: आपको, सारी रेडियो सुनने वाले श्रोताओं को।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: थैंक यू।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, राह में निकल चला मंजिल कहाँ भिटाई। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्कार जी, आप सभी को उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ और मैम आप भी बहुत अच्छी होंगी। और अभी तक जो भी गाना की फरमाइश आई है बहुत अच्छी है, सुनकर बहुत अच्छा लगा और मेरे भी एक गाने की फरमाइश है, सो प्लीज़ प्लीज़ प्ले कर दीजिएगा। और सॉन्ग और लिख रहे हैं थैंक यू मैम और सॉन्ग प्ले डेडिकेट टाइम ओनली 5 मिनट 30 सेकंड। और सोनू सऊदी अरबिया से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश है जो कि पहुंची हुई है प्रेम मदेसिया पडरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, तो गाना सुनना चाहते हैं और लिख रहे हैं तू शायर है मैं तेरी शायरी गाना सुनना चाहता हूँ। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
5: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403, 6200424403।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 9289-22567 या 97714-86164।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैम हम्बल रिक्वेस्ट है, कैन यू पॉसिबल बिफोर द लंच माई रिक्वेस्ट सॉन्ग प्ले ऑन योर स्टूडियो, आई एम वेटिंग। तो जी बिल्कुल, आपके गाने बज सकते हैं और गाने की फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिंक के माध्यम से पहुंची हुई है, और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है तो गाने की बोल पहुंची हुई है। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग ये दिल तुम बिन लगता नहीं दिल क्या करे। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि वॉइस के माध्यम से इनकी फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनकी फरमाइश।
1: अस्सलाम वालेकुम, मैं अहमद अली फैजाबाद नंबर 1 से बोल रहे हैं। कैसी हैं मैम? हम लोग तो अच्छे हैं, आप कैसी हैं बताएं। खाना वाना खा लीजिए, समाचार का टाइम हो गया है। ठीक है, आज मेरे को सॉन्ग सुनवाइए, हम तुम्हारे हैं सनम का टाइटल ट्रैक। और सुनाना है सबसे पहले आपको, सोनी मैम को, अख्तरी को, दिलीप भाई को, कमरान भाई को, राघव जी को, और जो भी रिम झिम सुन रहे हैं जहां से भी, सभी को।
0: तो बहुत ही खूबसूरत सी गाने की फरमाइश आई हुई है, और चलिए बिना देरी किए हम तुम्हारे हैं सनम का टाइटल सॉन्ग प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

पर एंड इंडियन शटलर्स बिगिन कैंपेन एट कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट इन आसान. And with that, we end the midday news.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित, ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार, तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीका और ईरान की प्रस्तावित शांति वार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ी, और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित की गई। पहले सगन के बाद राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल चलाने की कोशिश की। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: लोकसभा में भी हंगामे की स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रश्नकाल शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। विपक्षी सदस्य विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे थे। श्री बिरला ने सभी सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन में सहयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उचित नहीं है।
2: लोकतंत्र का सर्वोच्च मंच होने के कारण हम सब की जिम्मेदारी बन जाती है कि हम सदन में चर्चा करें, संवाद करें, अपनी सहमति असहमति व्यक्त करें, लेकिन सदन चर्चाओं के लिए ही चर्चा संवाद से हम देश की जनता का कल्याण कर पाएंगे। मैं सबको पर्याप्त अवसर दूंगा।
0: दोनों सदनों की कार्यवाही इस समय जारी है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर संसद के मॉनसून सत्र को बाधित करने का आरोप लगाया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने आज सुबह नई दिल्ली में संवाददाताओं से कहा कि कांग्रेस और उसके गठबंधन दल ने प्रश्नकाल तथा शून्यकाल के दौरान हंगामा किया।
3: करोड़ों रुपए खर्च होते हैं एक सेशन के ऊपर। सभी सांसद अपने क्षेत्रों से प्रश्न लेकर आते हैं, वो चाहते हैं कि प्रश्न पूछा जाए, मंत्रालय जवाब दे, मगर जब से सदन आरंभ हुआ है क्वेश्चन आवर पार्लियामेंट में हो नहीं रहा। 0 आवर के लिए पार्लियामेंट में बाधाएं उत्पन्न की जा रही, लगभग किसी बिल पे चर्चा नहीं हो रही।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007, आयकर अधिनियम 2025 और वित्त अधिनियम 2026 में और संशोधन करेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया गया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विधेयक पेश करते हुए बताया कि इसका उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण से संबंधित प्रावधानों को अधिक कठोर बनाने तथा जन्म और मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लाया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में स्थायित्व लाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। वे आज राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर दे रही थी। उन्होंने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत गन्ना, अनाज, दलहन, तिलहन और अन्य कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि उत्पादन संबंधी प्रोत्साहन योजना PLI एक बड़ी सफलता के रूप में उभरी है, जिससे न केवल प्रमुख क्षेत्रों में विनिर्माण को बढ़ावा मिला है, बल्कि दीर्घकालिक आर्थिक विकास को सहायता देने वाले एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण में भी सहायता मिली है।
4: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME को कई तरह से लाभ मिला है। सबसे पहले MSME की परिभाषा का दायरा बढ़ाया गया है। उन्हें मिलने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह जारी हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन किए गए हैं, जिससे 90 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान संभव हो रहा है। साथ ही उद्यम पोर्टल पर MSME के पंजीकरण होने से उनके लंबित भुगतान का निपटारा भी और अधिक प्रभावी ढंग से किया जा रहा है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन को विवादास्पद बयान के संबंध में पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया। कावेरी जल विवाद को लेकर कल DMK के किसान विरोध प्रदर्शन में श्री उदयनिधि के विवादास्पद भाषण के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया है। तंजावुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप है कि उनके भाषण में महिलाओं के खिलाफ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आगे की कार्रवाई के लिए उदयनिधि को तंजावुर ले जाया गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की संसदीय दल की साप्ताहिक मंगल मिलन बैठक आज संसद भवन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और अन्य नेताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। भाजपा के राज्यसभा सांसद शिवेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA की मंगल मिलन बैठक में वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य पर चर्चा हुई।
5: संदेश बिल्कुल साफ था, जो हमारे जो 12 साल के काम हुए हैं और पीछे के जो काम हुए उसकी तुलना में देश जो है विकास किया है, और जो लक्ष्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले समय में 2047 का, उस लक्ष्य को लेकर हम चल रहे हैं। मनसुख भाई जी ने एक एक विषय पर विस्तार से बताने का काम किया, स्पोर्ट्स के बारे में, GDP ग्रोथ के बारे में।
0: भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुग ने कहा है कि E20 ईंधन नीति के विरोध में अरविंद केजरीवाल का प्रस्तावित मार्च भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है, जिन्हें इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम से लाभ मिल रहा है।
6: उनका ये विरोध भारत के किसानों के आमदन का विरोध है। जो किसान मक्का पैदा कर रहा है, जो किसान गन्ना पैदा कर रहा है, उसके बाद करोड़ों अरबों रुपए जा रहे हैं, आप उसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो भी मिलाया गया है, जितना भी मिलाया गया है, वो साइंटिफिक तरीके से मिलाया गया है और प्रमाणिक तरीके से हुआ है। इसका किसी भी वाहन पर कोई असर नहीं हो रहा है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 के अंतर्गत किसी भी राज्य और लाभार्थी को मिलने वाले अनाज में कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ये जानकारी दी। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है।
7: सभी हितधारकों ने अपने सुझाव दिए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि सार्वभौमिक कवरेज के संदर्भ में देश के 75% परिवारों में 4 से कम लाभार्थी हैं। इन सभी परिवारों को 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है। वहीं लगभग 14% परिवार ऐसे हैं जिनमें केवल एक सदस्य है, ऐसे परिवारों को भी 35 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जा रहा है।
0: स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थ नियंत्रण के क्षेत्र में 27 देशों के साथ द्विपक्षीय समझौतों और 19 देशों के साथ समझौता ज्ञापनों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत किया है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में ये जानकारी दी। वर्ष 2021 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस भारत लाया गया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़े दोनों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृहमंत्री अमित शाह ने भगोड़ों के खिलाफ 3 सूत्रीय रणनीति पर बल दिया, जिसमें वैश्विक संपर्क, मजबूत समन्वय और कुशल कूटनीति शामिल हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद के आरोप लगाए हैं। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदीव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति छात्रों से बातचीत करेगी और 1 से 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें प्रधानमंत्री को पुराने सिक्कों की प्रदर्शनी में भागीदारी के लिए सरकार अधिकृत खरीदार का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि वीडियो फर्जी है और इसे डिजिटल रूप से छेड़छाड़ करके बनाया गया है। ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। महानदी सहित प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: उड़ीसा में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। सोमवार रात से महानदी में बाढ़ का पानी कम होने लगा है।

0: मिथिटा जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। राज्य सरकार ने लोगों से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और भूस्खलन की आशंका वाले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, तटीय कर्नाटक, झारखंड, केरल, माहे और दक्षिण आंध्र कर्नाटक में तेज वर्षा का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अशांति लगातार बढ़ती जा रही है। संयुक्त अवामी कार्रवाई समिति ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर गोलीबारी की और आंसू गैस के गोले दागे। समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर घटनास्थल का फुटेज साझा करते हुए ये जानकारी दी। ये घटनाएं पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना की बढ़ती क्रूरता के बीच हुई है। यहां पिछले कुछ दिनों में कथित तौर पर 50 से अधिक लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं। होर्मुज़ दलदमरू मध्य में जहाज पर हाल के हमलों के कारण संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान की प्रस्तावित शांतिवार्ता पर अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक मालवाहक पोत पर आज होर्मुज़ दलदमरू मध्य से गुजरते समय मिसाइल से हमला होने की खबर है। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार ये घटना रणनीतिक जलमार्ग के दक्षिणी किनारे पर ओमान के अल खसाब से लगभग 20 समुद्री मील उत्तर पूर्व में हुई। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से दक्षिण कोरिया के आसन में शुरू हो गया है। कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय की जोड़ी ने पुरुष डबल्स का पहला मैच जीत लिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित। लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित। ओडिशा की प्रमुख नदियों का जलस्तर घटने के बाद बाढ़ की स्थिति में लगातार सुधार। तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन की विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में बाग जिले में निहत्थे नागरिकों पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के बाद अशांति बढ़ी और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों के अभियान की शुरुआत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 AMZ पर।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता।

0: राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

छोटे से ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टा कॉल के जरिए जुड़ सकते हैं और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। जी हाँ, 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277166596। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं, तो चलिए बिना देरी किए सभी के मैसेज शामिल करते हैं। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण अरे राज बाबा की नगरी से जुड़े हैं और लिख रहे हैं मेरा मैसेज किए हुए 2 घंटा हो गया है, प्लीज़ बजा दीजिए। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हम विष्णु कुमार वीके फास्ट फूड मानसिना खास जिला सिद्धार्थनगर और उत्तर प्रदेश से हमके गाना सुने एक बार और गाने के लिंक भेज दिले बनी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा है जो लिख रहे हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आरजे भारती जी, आपका भी इस प्रोग्राम को भी बहुत अच्छे से चलाते हो और आपका डेली प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपका फरमाइश बहुत ही अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर। और मैसेज करने वाले हैं सोनू सऊदी अरब से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हमें गाना सुनना है और अस्सलाम वालेकुम और गाने के बोल पहुंचे हुए हैं और गाना सुनना है खुदा और मोहब्बत का। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते नमस्कार भारती जी, स्वामी जी, मेरा ब्याज एक सप्ताह पूरा हो गया है और मुझे एक गाना सुनाइएगा। और राम कुमार राम बालाघाट MP स्लोक राइस मिल से गाने का लिंक भेज दिया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं कि विजय कुमार कुशवाहा रसिया से, और विजय कुमार कुशवाहा रसिया से जुड़ चुके हैं और हमें भी एक भोजपुरी गाना सुनना है। तो जी बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाना आपको भी सुनाया जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए। और अपने गाने की लिंक, अपने गाने की बोल लिख के भेज दीजिए ताकि मैं सुना सकूं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हम थाना से बोल रहे हैं, रामाजी प्रसाद।
0: हाँ जी, क्या हाल चाल बा?
1: हाल चाल ठीक बा। गाना सुने बा?
0: बता दी कौन सा गाना सुने?
1: बनाते क्यों बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले।
0: गाना क्यों के सुनाऊं के बा?
1: जितना लोग सुन रहे हैं सब सुने, हम सुना रहे हैं।
0: तो चलिए और गाना प्ले कर दे, लेने एंजॉय कर लिया सभी के साथ रेडियो रंजन 90.4 FM में। नमस्ते।

0: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
8: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
9: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
11: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
9: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 8 94 18 7 44।

0: ब्रेक के बाद जो अभी अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं राजन कुमार तमकुही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से जुड़ गया हूँ और हमारा भी फरमाइश है गाने की और गाना बजा दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, शाहबुद्दीन अंसारी फरीदाबाद हरियाणा से जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं सुनना है गाना और गाना सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: बहुत लग रहा है आज का, क्या बात है
0: जी? कॉल तो अभी लगा है तो उठाई ही हूँ। जी कॉल आते रहते ना, इसीलिए बिजी बता रहा होगा।
1: गाना सुनवा दीजिए।
0: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है।
1: ए मेरे दोस्त लौट के आ जा।
0: और सॉन्ग डेडिकेट भी है।
1: पहले तो फर्स्ट नंबर आपको, बाद में सबको सुना दीजिए।
0: जी जी, तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिए हैं, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: ठीक है, थैंक यू,
0: वेलकम।

अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग ऐ मेरे दोस्त लौट के आ जा, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हमार सॉन्ग तिजोरी में बंद करके रख दिले वानी का, और ये गाना नहीं बजेगा तो बता दीजिए, दूसरा भेज दूंगा। तो ऐसी बात नहीं है, आपका भी बजेगा, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुनना है, कितना प्यारा है ये चेहरा, मूवी राज और सिंगर उदित नारायण की आवाज़ में। और इस लिख रहे हैं कि गाना प्लीज़ बजा दीजिएगा। और मैसेज करने वाले हैं दीपक चौहान सूरत से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
5: हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
6: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
5: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
6: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
5: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
6: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कइले से का फायदा।
7: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
8: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
10: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
10: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
9: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
11: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम सोनी जी, गुड इवनिंग, और सिंगर नेम आशीष यादव और जयवीर कुमार नालंदा बिहार से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और यहाँ गाने की लिंक पहुँची हुई है और लिख रहे हैं कि सॉन्ग नेम भोला से मांगे हैं कहाँ से, और प्लीज़ मैम सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ भक्ति सॉन्ग नहीं बजा सकती, और अगर आप दूसरे गाने की फरमाइश करेंगे हिंदी या भोजपुरी, लेकिन भोजपुरी भी तो बढ़िया में, तो आपके गाने को प्ले कर सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और यहाँ धन्यवाद का मैसेज आ गया है गाना बजाने के लिए, और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय सुनील कुमार, गोपालगंज दिघा दुबौली से जुड़ चुके हैं, और हमें भी हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और क्या हमारा एक हफ्ता हो गया है? तो नहीं, आपका कल एक हफ्ता पूरा होगा, और अपने गाने की फरमाइश कल कीजिएगा। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सुना दीजिए भारती, टाइम की कमी है। तो आपको बता दें कि आपका गाना एक दो दिन पहले ही प्ले किए थे, फिर दोबारा नहीं प्ले कर सकते। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से हैं, और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने के बोल हैं मिले मन से ये मन, और मूवी है नाचे नागिन गले गले। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं ये खूबसूरत सा सॉन्ग सभी के साथ।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना रंजन जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो क्लिक रहे हैं कि भारती जी बहुत बहुत धन्यवाद, मैं खाली नहीं था इसीलिए आपको मैसेज नहीं कर पाया, और सॉरी भारती जी। तो कोई बात नहीं, अभी गाना सुन लिए लेकिन टाइम नहीं मिला और इसीलिए लेट रिप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और कोई बात नहीं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचा हुआ है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते मैडम जी।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 91.4 एफएम में।
1: नेहा बोल रहे हैं भूरे से।
0: हाँ जी, कैसी हैं आप?
1: अच्छा यार, बताएं कैसे
0: हैं? मैं भी ठीक हूँ।
1: खाना हो गया?
0: अभी तो लंच करके आई हूँ। और गाना कौन सा सुनना है बता दीजिएगा।
1: गाना कौन सी के है? प्यार नक्शे लिखल हाथ के लकीर में जाके तक दे रहे।
0: और गाना किसी को सुनाना भी है?
1: सबसे पहले आपको जितना रेडियो रिमझिम आते हैं सब दोस्त सुनते हैं सबके साथ।
0: गाना स्टेज शो है क्या?
1: नहीं, अच्छा गाना।
0: चलिए फिर गाना प्ले कर रहे हैं आपका, एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, नमस्ते।
0: नमस्ते।
2: जीना पाई बयोगोत साथ छूट जाई हो आ तुह से नहीं आ। हेलो, ए ए ऑटो पीछे ऑटो तुह से ए रहने दो, सब हमारे भाई हैं। तुह से नहीं आ के बंधन जे टूट जाई हो।

0: व्यास जी एक मिनट सबको सुन ले, हम अपना मरना भी जानते हैं, कोई अपना मौत नहीं जानता है, लेकिन हम जानते हैं कि कब मरेंगे। एक मिनट सुन लीजिए,
1: सुन पहले हमारे को बात सुन ले बाबा। ए धरती पर इतना लोग बाल भेजा बैठल, ए रुको जाने दो, नहीं नहीं जाने दो, कोई बात नहीं बेटा। इस धरती पे कौन ऐसा जीव है जो मरने के पहले जान जाता है कि मैं जाने वाला हूं और मेरा कितना समय है उस हिसाब से वो जीव अपना रास्ता तय कर लेता है, बताइए।
0: अपना दिल के बात हम बता रहे हैं, पहले मेरा बात सुन लीजिए।
1: अरे हमारा दिल के पहले सुना ना,
0: ये हमको जानकारी नहीं है, ये हमको जानकारी नहीं है ब्यास जी का, अपना हम दिल का उद्गार बता रहे हैं।
1: सुन पहले ना बता पहले लोग तू लोग नू। ए धरती पर बोका ऐसा ने को जीव होला, बोका के मरल के हो देखल बा
0: ना, ना।
1: बोका ही ऐसा एक जीव है, उसको पता होता है कि अब हम जाने वाले हैं और कितने दूरी पे हैं, वो अपने हिसाब से अपना रास्ता तय कर लेता है।
0: लेकिन अपना एक दिल का एक शब्द उगार बोलते हैं व्यास जी,
1: तू अपना पाहुन के ना छोड़ब।
0: सुन ना बतिया पहले व्यास जी, हम दो गाना पर में से एक गाना पर किसी दिन शहीद हो जाएंगे, या तो केहू दुनिया में नहीं खे तोहरा सिवा, प्यार में नहीं खे गोरी हम बेवफा, और नहीं तो रितेश भाई का जाए चाहता, ये दो ही गाना पर हम किसी दिन मर जाएंगे, ये फाइनल है।
2: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
3: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
2: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रुपए, और एक्सट्री 125R 1,10,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
3: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
2: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97746164।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
3: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

भी फरमाइश पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि विजय कुमार कुशवाहा रसिया से, और गाने के लिख रहे हैं कि भोजपुरी गाना सुनना है और गाने के बोल पहुंचे हुए हैं, और लिख रहे हैं कि प्यार में गाना सुनना है, प्यार में नहीं ही गोरी हम व्यवहार। तो चलिए बिना देरी के गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं सभी के साथ पवन सिंह की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग।

पूछू ना, दामाद जी कुछ कहला ना था? मनोज बाबू के साथ ही रिश्ता से खुश तो बाड़ू ना।

तो अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग प्यार में नहीं की हम बेवफा, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले फरमाइश की तरफ। और हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे गाना सुनना है, और सुनील कुमार पश्चिमी चंपारण से जो कि जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं कि गाना सुनना है। देवी जी की आवाज़ में और गाने के बोल हैं तोरा प्रीतिया में भैनी बावरिया, तो बिना देरी के इनके गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
2: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, Glamour X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
2: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861 64।
5: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
2: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं थैंक यू जी मेरा गाना बजाने के लिए, तो आपने इंजॉय किया, अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं हेलो मैम नमस्कार, मैं विनोद कुमार चौहान विलेज कोयनी से जुड़ चुका हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना सावन का है सुना दीजिएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सऊदी से प्रेम वरी जी गाना सुनना है और गाने का लिंक भेज दिया हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि हाय हेलो मैडम जी, मुझे मैं जितेंद्र कुमार बरौली से, और मुझे सॉन्ग सुनना है और गाने के बोल हैं तो याद ना आए ऐसा कोई दिन नहीं, तो प्लीज़ सुना दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के आपके गाने को प्ले करते हैं और इन्जॉय करते हैं सभी के साथ हिमेश रेशमी की आवाज़ में ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हिमेश रेशमी की आवाज़ में, और गाने के बोल थे तो याद ना आया ऐसा कोई दिन नहीं। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज करने वाली है शिवानी कुमारी वृंदावन से, और लिख रही हैं कि प्लीज़ मेरा भी गाना बजा दीजिएगा। और गाने के बोल हैं पराई बेटे केहू के आपन ना होली। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करते हैं और इंजॉय करते हैं ये प्यारा सा सॉन्ग सभी के साथ।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं,
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
10: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
9: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
9: संपर्क करें 99393-65923।
11: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है कि मैडम जी नमस्ते, मैं रतन कुमार बिहार सुपौली जिला से बोल रहा हूँ और मुझे गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। गाने के बोल हैं सावन आया बादल छाए, और गाना सुनाइएगा लबु और श्रवण को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुंची हुई है, लिख रहे हैं कि नमस्कार, हम लालू ग्राम पोस्ट सोनहुला गोकुल से, और अभी हम दुबई से जुड़े हैं, और आज हमें गाना सुना दीजिएगा बहके बहके पुरवैया सॉन्ग, और गाना है उदित नारायण जी का। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आज गाना बजा दीजिएगा, और मेरे गाने की फरमाइश पहुँची है, और लिख रहे हैं अजय कुमार कुशवाहा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और गाने की बोल हैं सिनेरुआ कैसे तेज अब। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सेनोरवा के तेजम में छोटी नंदी, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी हमें गाना सुनना है, और मेरा नाम अनीस, मेरे साथ में सुनने वाले हैं गुलनाज समा, जोया, रुखसार, आसिफ। गाने का नाम है धनी हो सब धन तोहरे नु बाटे। तो आप आज तो आपका गाना नहीं प्ले कर सकती क्योंकि आपके गाने की बारी कल है, और कल फरमाइश कीजिएगा, जरूर आपके गाने को प्ले करूंगी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि कृष्णा अजय अनूप के साथ सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच गाना बजाने के लिए, तो अच्छा लगा आपने गाने को एंजॉय किया। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोहब्बत को जब लोग खुदा मानते हैं, प्यार करने वाले को क्या बुरा मानते हैं, जब जमाना ही पत्थर दिल है फिर पत्थर से लोग क्यों दुआ मांगते हैं। बात तो सही है और बहुत ही गहरी लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं चलते चलते बाय नमस्कार, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय। तो आपको भी बाय बाय। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहा है मैडम जी नमस्ते, मैं रतन कुमार बिहार सुपौली से, और गाना सुनना है सावन आया बादल छाया। तो चलिए बिना देरी किए आपके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788191। और कॉल करना है तो कॉल का नंबर है 7277165696। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं आप सभी से लूंगी विदा। और यहाँ बाय बाय का मैसेज पहुँच रहा है, और इसी के साथ बाय बाय आप सभी को, और ये प्यारा सा सॉन्ग एंजॉय कीजिए सभी के साथ।

0: दूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82101 87952। नियम और शर्तें लागू।
5: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
7: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
8: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
10: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
10: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
10: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
11: All right.

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
4: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।

0: चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
3: All right.

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 9495121100001।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: ST ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए ST ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
8: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच, मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करे 85070-32042 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर X और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर X, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
9: All right.

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
6: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797186164।
6: पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर फोन अप, हेलो, पिक इट अप, पिक इट अप, हेलो, नाउ पिक योर फोन।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: हेलो
2: जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं हेयर एमपी से।
1: जी क्या हालचाल है सुनील जी।
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। अभी तो फोन लग गया तो इंतजार खत्म हो गया मैम।
1: जी
2: मैम, वहाँ के मौसम का क्या हाल चाल है मैम।
1: मौसम बारिश हो रहा है
2: जी, हमारे यहाँ भी बारिश चालू है मैम, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है मैम।
1: जी
2: तो आज एक खरवाइश है मैम, गाने के बोल है घर आ जा कर देसी तेरा देश बुलाए रे। और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, वैसे आप रेडियो केसरी को कितना समय से सुनते हैं।
2: जी मैम।
1: जी आप रेडियो रिमझिम को मतलब कितने समय से सुनते हैं।
2: रेडियो रिमझिम तो मैम मेरे को 4 साल हो गए मैम सुनते हुए, बहुत अच्छा लगता है मैम। जब वो सुनती गई थी जब से मैं सुन रहा हूँ रेडियो रिमझिम, एक आज था वो भी मैं सुन रहा था मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम। जी जी
1: जी। रेडियो रिमझिम का कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है।
2: तभी मैं सुन लेता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है। ये कौन पहले माई डोर ये चलता है, अभी 12 बजे से चलता है ये भी। और फोन इन कार्यक्रम सुनता हूँ मैम, और दोपहर में रिकॉर्डिंग होता है 12 बजे से वो भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है।
1: चलिए बढ़िया, मतलब रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप।
2: मोबाइल एप्लीकेशन में रेडियो रिमझिम एप्लीकेशन लोड किए हैं तो सुनते हैं गोपालगंज वाला।
1: गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किए हैं है ना।
2: जी जी जी जी जी जी। ये तो हिंदी रेडियो में नहीं आता, हम कल से मारते नहीं है, इसका अलग से एक लिंक है उसे लोड किए हैं, उसी में चलता रहता है।
1: एफएम के माध्यम से ना।
2: जी जी एफएम के मैम, ऑनलाइन मैम, लाइव सुनते हैं मैम।
1: चलिए बढ़िया।
2: आप कौन से मैम बात कर रहे हैं मैम, भारती मैम।
1: नहीं
2: मैं सोनी मैम, मैं भारती हूँ। तो
1: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: जी जी जी जी जी। अभी तो आप मैं आज गए हैं, बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम लगता है मैम।
1: सब आप लोग का दुआ प्यार है।
2: जी जी तो हमारा तो बना ही रहेगा मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम। सुशी मैम से भी बात करते थे बहुत अच्छा लगता था, और भारती मैम से भी बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और सोनी मैम से भी बात करे तो अच्छा लगता है, आपसे भी बात किए तो बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: वैसे सुनील जी क्या करते हैं आप।
2: जी हम तो मशीन चलाते हैं मैम, जेसीबी मशीन चलाते हैं, और मशीन में चलते रहता अपना मोबाइल एप्लीकेशन में, और ब्लूटूथ है उसी में कनेक्ट कर लेते हैं, तो शाम के 5 बजे से चलता रहता है 5 से 7 बजे तक, और अभी दोपहर में चलेगा, अभी तो लाइट चालू हो गया 12 बजे से, तो सुनेंगे 4 बजे तक, फिर 1 घंटा वो करेंगे मोबाइल पर थोड़ा ठंडा कर देंगे, फिर वहाँ से 5 बजे से चलेगा 7 बजे तक, तो यही चलता रहता है मैम मोबाइल में। और मशीन चलाते हैं जैसे भी, तो इसी में अपना बचता रहता, बहुत अच्छा दोस्तों से फरमाइश आता है तो बहुत अच्छा लगता है मैम। ठीक है मैम, तो
1: जी गाना प्ले करते हैं।
2: ठीक है मैम, धन्यवाद मैम।
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
1: नमस्कार, बढ़िया हैं। आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। आपका टीम कैसे है?
1: सब कोई बढ़िया
0: बढ़िया का काम है
1: जी।
0: चलिए, हमको सावन का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: कौन सा?
0: कोई भी अपने पसंद का, सावन का कोई भी सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: अच्छा, भोजपुरी में या फिर हिंदी?
0: आपका मर्जी, हिंदी में चलाइए चाहे भोजपुरी में चलाइए। सावन पहली तुम्हारी है
1: जी,
0: आज आपके ऊपर है। देख रहे हैं कौन मन पसंद का सॉन्ग चला रहे हैं।
1: अच्छा जी, तो वैसे आपका नाम?
0: हमारा नाम है ओम साई केला राघो जी, बंजारी पुलिस स्टेशन के सामने गोपाल
1: जी। तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो सिलाई कर रहे हैं, अभी तो बात कर रहे हैं आपसे, तो बाद में सिलाई करेंगे। और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों को साथ में सुनना चाहता हूँ, और सभी आरजे को साथ में सुनना चाहता हूँ।
1: तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: Now pick your phone up.
6: Hello. Jab phone ring de bajte hai to kehte hain hello.
7: Hello. Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
9: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
8: जी। मैम कैसी हैं?
9: जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
8: हम भी मस्त है। और मैम हमसे क्या दिक्कत है, आप लोगों को फरमाइश पूरा नहीं कर रहे हैं?
9: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, फरमाइश पूरा तो जरूर होगा।
8: जी आपसे बात हुई थी शुक्रवार को।
9: जी
8: जी, तो पूरा नहीं हुआ अभी तक।
9: वो क्या ना कि बहुत सारा कॉल्स रहता है तो टाइम लग जाता है थोड़ा।
8: वो तो 2 दिन में बच गया ना मैम, 2 दिन में तो पूरा हो गया। शुक्रवार
9: आज बजेगा और बहुत सारे कॉल था तो बच गया और कुछ है तो आज चलेगा।
8: उसमें का और है क्या मैम?
9: जी जी
8: हम दो दिन इंतजार किए स्कूल में डेली सुनते हैं लेकिन मजा नहीं है।
9: आज मिलेगा सुनने को आपको।
8: इससे पहले भारती मैम से बात हुई था वो भी नहीं बजा।
9: नहीं बजेगा क्या ना कि बहुत सारे कॉल्स हो जाते हैं तो फिर लाइन बाई लाइन बजाना पड़ता है सबको।
8: इसलिए तो मेरे डेली सुनते हैं तो मिस नहीं करते हैं।
9: तो वैसे आपका नाम?
8: जी हम सत्रह जाली बोल रहे हैं।
9: कहाँ से?
8: जी गोपाल गंज से बोल रहे हैं। आप बहुत पुराने मतलब हैं बहुत पहले सुनते हैं ये रेडियो जी। अभी एक दो साल से जुड़ते हैं लेकिन सुनते हैं बहुत पहले से।
9: अच्छा आप रेडियो रेंजी मतलब कितने समय से सुनते हैं फिर भी?
8: मैम जब हमारे पास छोटा वाला फोन था तब से सुनते हैं छह सात साल हो गया जी। लेकिन अभी जुड़ते हैं दो साल से।
9: रेडियो रेंजी को कैसे सुनते हैं आप?
8: जी मैम पहले तो छोटा वाला फोन में सुनते थे अब इसमें ऐप के द्वारा बड़ा वाला फोन में सुनते हैं।
9: डाउनलोड किए हैं गूगल के प्ले स्टोर से?
8: हाँ वो अब तक तो पहले थे ना अब से सुनते हैं ऐप के द्वारा।
9: मतलब
8: पहले आरजे बदल गए हैं ना इसमें। पहले तो रुटी मैम थी
9: जी
8: उनका आवाज और सोनू मैम का आवाज सेम था तो हम तो कंफ्यूज हो गए थे। इसीलिए और आपका कुछ अलग ही है हमारा ना बोल रहे ना
9: क्योंकि
8: हम आपका आवाज ही पहचान गए क्योंकि अलग है आपका सबसे आवाज और आपका अंदाज भी अलग है जी मैम। तो जानने का फरमाइश करें
9: जी बता दीजिए।
8: दो नंबर से
9: जी
8: मैम 11:00 कुछ मिनट पहले से लगा रहे थे लेकिन लगी ना बंद बता रहा था और 11:00 दो मिनट लगा तो बिजी आ रहा था।
9: चलिए कोई ना अब लग गया ना।
8: जी मैम जाने का बोल है मैम देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा।
9: ओके
8: सुनाइएगा बहुत अच्छा है गाना है मैम उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। जी मैम
9: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
8: जी आपको भारतीय मैम को भारत में रहने वाली और सोने को सभी सुनने वालों को खास करके 90s के फैन जितने हैं सभी को आजकल तो बहुत ज्यादा है मैम। चलिए मैम इसी के साथ फरमाइश पूरा कीजिए क्योंकि हमारे बाद और भी लोग हैं इंतजार कर रहे होंगे।
9: गाना प्ले करते हैं।
8: ओके मैम
9: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
8: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: नमस्कार नमस्कार
1: नमस्कार।
0: मैं असम से बोला था, मैं असम से महेंद्र राउत। महेंद्र राउत असम से गाना है वो सुना कर रहा, मैंने देश प्रेमी भोजपुरी गाना है वो।
1: अच्छा,
0: देश गाना सुने कर रहा, बहुत दिन से लगाओ था, 140-142 बार लगाओ नहीं तो अभी कही
1: गाना। बहुत सारा कॉल आवत रहेगा तो
0: जो फोन करे से पड़ा था। असम में तो बहुत बार बैल बा, उन्हें कैसन बा खबर? असम के तो बाढ़ के खबर मिलने हुई सबके,
1: लेकिन गोपालगंज एरिया में बाढ़ नहीं आई, उन्हें देहात के एरिया में आई
0: तो बाढ़। असम में जो राष्ट्रीय सागर चराहे देव कहल जाला, एकदम पानी में गोटे गांव चल गए, मारा 100 आदमी गए पानी में दहात। आओ सब ठीक बात है?
1: चलिए बढ़िया।
0: चलिए तब गाना सुना दी हमारे सुने वाला बालो, हम बानी शशि कला प्रार्थना सुनील अनिल और श्रोतागण सब सुनाए गाना।
1: गाना राउर काल बजी
0: काल बजे
1: जी।
0: बात नमस्कार
1: नमस्कार, सुनत रहे रेडियो 90.4 FM।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99

0: 7888 5 6 या 6203139564।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
9: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
10: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
9: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
10: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
9: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
10: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
9: संपर्क करें 8470103992 या 9765665750।
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
11: Pick it up, pick it up.
12: Hello.
11: Now pick your phone up.
12: Hello.
13: जब फोन रिंग दे बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
14: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
15: हेलो।
16: हेलो
15: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
16: सलामुअलैकुम।
15: वालेकुम अस्सलाम।
16: क्या खैरियत है सर?
15: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
16: हम ठीक है, बेड पर सोए हुए हैं, दूसरा कोई काम है नहीं।
15: क्या तबीयत कैसी है आपकी?
16: 50 कॉल लगाए तो लगा जा करके। हमको एक कव्वाली सुना दीजिएगा। हेलो। अल्लाह का नाम पाक है जो पाक रहेगा।
15: ओके,
16: ठीक है
15: जी जी। और गाना किसी को सुनवाना भी है?
16: हाँ, पहले आप सुने, उसके बाद जितने हमारे प्यारे दोस्त है सब लोग सुनेंगे।
15: ओके, तो आपका नाम?
16: हमारा नाम महदीन अहमद है
15: जी।
16: नाम डुमरिया, उसका गाँव प्लॉट में पड़ता है।
15: अच्छा अच्छा जी, तो आपकी तबीयत कैसी है?
16: तबीयत वही है, ऑपरेशन जो हुआ है उसी में हमारे तकलीफ तो आई है, पूरा फ्रेश नहीं है
15: जी। चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे।
16: ठीक है
15: जी, ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
16: हाँ ठीक है, कब सुनेंगे?
15: ये गाना आपका कल बजेगा।
16: कौन बजे बजेगा?
15: 5 से 7 के बीच शाम।
16: ठीक है,
15: वालेकुम अस्सलाम। रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: रमजान बोल बनारस से
1: जी। अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
0: रमजान बाहर।
1: अच्छा, कहाँ से बोले रमजान जी?
0: बनारस से बोल रहे हैं रमजान।
1: क्या हाल चाल है आपका?
0: तो बढ़िया है।
1: अब क्या हो रहा
0: है?
1: जी बता दीजिए
0: जी। एक बोल शहरत, ये उसमें गाना सुना दीजिए।
1: कौन सा?
0: प्यार के हम मतवाले हैं, नारायण की आवाज में
1: जी
0: उसमें चाहते हैं।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
0: जी जितने चेहरा सभी सुनेंगे, आप लोग भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग के साथ सुनेंगे।
1: ओके,
0: होगा
1: जी आपका कल बजेगा।
0: जी ठीक जी,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-9-11। जी हाँ, 8009-94-9-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
7: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, हजूरा छत्तीसगढ़ से।
6: ओके, क्या हाल है?
7: जी बढ़िया है। हेलो
6: जी।
7: हाँ जी बढ़िया है।
6: चलिए अच्छी बात है, सब क्या हो रहा है
7: अभी? बस घर में है।
6: अच्छा जी, तो
7: गाना सुनना है।
6: बता दीजिए।
7: गाने की बोल है, तुमसे मिलने की तमन्ना है।
6: ओके, ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
7: जी कुछ मित्र लोग हैं, श्रीपाल गोयल जी, लोटन वर्मा जी, दिलीप पहुजा जी, राशन गोवाल जी और सभी
6: साथी। वैसे क्या करते हैं आप?
7: हमारा खेती बाड़ी का मूल काम है।
6: अच्छा, चलिए अच्छी की बात है।
7: जी धन्यवाद
6: जी। तो आपसे गाना प्ले करते हैं?
7: हाँ
6: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
7: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: सलाम अलैकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: गाना सुनने के अच्छा कार्य लग गए।
1: जी जी, गाना सुना, नाम बता दिया अपन।
0: नाम मौलादीन है, गाना खेतारी लाल के बोल रहा हूँ।
1: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी करिए।
1: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल 0 आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
5: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
3: ओनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 आमजेड पर।
0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
6: जब फोन दिन दे बजते हैं तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में।
4: यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
8: नमस्ते, क्या है?
7: जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
8: बिल्कुल
7: क्या करे, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं तो उन्हें भी तो देखना पड़ता है।
8: और क्या बताएं, जेल उठा रहे हैं कि नहीं?
7: और
8: आप
7: गाँव के मंदिर
8: बहुत जान है, बहुत कैसे बताइए?
7: जी सब बढ़िया, आप अपना नाम बता दीजिए।
8: मेरा नाम गणेश कुमार पित्र नारायण।
7: जी नाम एक बार
8: पित्र नारायण। गणेश, तो आप कहाँ गए थे जल्द आदमी खा
7: में? नहीं, यहीं के गांव में।
8: अपना ही गांव में, ये बढ़िया है। और सब बताइए।
7: जी जी यहाँ पे भी सब बढ़िया, तो फरमाइश बता दीजिए।
8: बारिश का मौसम होगा क्या?
7: और आपके
8: मेरे इधर तो पूरा मतलब अनहार हो गया चारों तरफ से। मेरा सुधार सिवान जिला में जो बहरिया नहीं बहरिया, वहाँ से 500 किलोमीटर का आउट दूर है। खाना वाला खाते हैं?
7: और आपका?
8: मेरा भी खाना हो गया है, दो बार अभी तक दो बार हो गया है।
7: चलिए बहुत बढ़िया। तो
8: गाना बजा दीजिए, हम के बरस बरस, हम के बरस, मेरे महाबूब के घर जाना।
7: ओके, और गाना डेडिकेट भी है?
8: सबसे पहले आपको भारती दीदी को, सोनू दीदी को, रेडियो तुम दोनों को सुनना है।
7: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
8: ठीक है,
7: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM
0: में। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: करिश्मा बोलते हैं पठानपट्टी से।
1: जी क्या हाल करिश्मा जी?
0: ठीक बा, आप सुनाए?
1: जी हमरो बढ़िया बा।
0: होगा ना सफल?
1: राहुल भैया।
0: हाँ बोल बना था, फोन लगा फोन लगा था बेटा।
1: हाँ हाँ कहीं के लागल बा राहुल।
0: तो कहिया सुने के मिली गाना?
1: आज
0: आज सुने के मिल जाये। 5 बजे चलो तो मिल जाये सुने के ना।
1: बिल्कुल।
0: अच्छा आओ दो दिन वाला रिकॉर्डिंग
1: ना ना कहना के भी बहुत सारे कॉल बाकी रहा था। कहीं आज बाजी
0: शाम को जब आज बाजी पहुंच गया तो ही कहाँ बाजी तो नहीं बाजी तो
1: बाजी वही बाजी
0: ई बाजी।
1: सब आप
0: हमने भी सब बढ़े बाप ने सुनाई लो।
1: हमने ये भी सबसे बढ़िया बात
0: ये लोग सबको ठीक बा।
1: सबसे बढ़िया। अब बताएंगे कौन गाना सुने के बाद?
0: गाना सुना दी कौन सी गाना को सुना दिया तुम पसंद से बढ़िया?
1: यार वैसा मेहनत से कॉल के लिए बनी तो रही बता दी ना डायरेक्ट फरमाई सुनिए।
0: मेहनत सुनने तो होबे करना एक बार कड़ाई होट को गाड़ी बज जाला को साढ़े बारह तक हो जाला सब लागे आज तो मैं जल्दी लाग गई ना। और सब सुनाई?
1: और सब बढ़िया बा। अच्छा रेशमा जी राहुल घर के लिए पड़ी
0: पठान बट बजा को आए कहो तब ना भेजो तू लगाए बन दू थोड़ी सम
1: जी जी हम टाइम निकाल के कभी रोबस मिले।
0: हां तो भेजो
1: ठीक बावली कहो।
0: हां आए तो भेज कर। और घर का समाचार सब ठीक है?
1: हां हां सब के घर परिवार में भी सब के ठीक ठाक बा। तो गाना बता दी?
0: गाना बता दी हम ही
1: रोज बताएंगे तो मैंने तो कॉल कर।
0: कौन सी गाना बा? आपने मैं गाना चाहता दूर मजे नोट ही जाता
1: और
0: सुनवावे के भी बा गाना सुन के। हाँ सुन रहे सब मैं सुनी लो सबको सुनी।
1: अरे ठीक बात है और गाना प्ले करते हैं।
0: हाँ कौन
1: सुन रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
2: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
3: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
4: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
5: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
3: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
2: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
3: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
5: कॉल करें 87894-18744।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
3: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
3: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
8: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
9: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
10: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
11: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
10: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
8: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
12: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
13: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-9-11। जी हाँ, 8009-94-9-11। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
14: हेलो नमस्कार मैडम।
15: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
14: कमलेश बोल रहे हैं आरक्षण से।
15: जी क्या हाल चाल है कमलेश जी?
14: आप लोग अच्छे हैं मैडम?
15: जी जी आपका आवाज कट के आ रहा है।
14: अरे आप लोग ठीक है ना? सब कुछ सब तीन सही है ना?
15: जी जी यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया है।
14: मौसम तो बहुत ठंडा हुआ है, बारिश हो रहा है क्या उधर?
15: बारिश नहीं हो रहा है लेकिन बारिश के जैसा मौसम बनाया हुआ है।
14: ठंडा मौसम है ना? गाना सुनना चाहते हैं मैडम?
15: यही बता दीजिए।
14: हम तो गाना सुनना चाहते हैं, सब भूखे हुनर में हरारे मिले जाना नहीं है, हिम्मत करो मुझे गाना सुनना है।
15: ओके, तो ये गाना किसी को सुनाना चाहिए?
14: और मुकेश मिस्त्री है, उनको सुनाना चाहते हैं। जितना लोग सुन रहे हैं रेडियो के आने वाले सब किसी को सुनाना चाहते हैं। अगर आपको
15: क्या करते हैं आप?
14: ऐसे हम काम करते हैं, हेल्पर है, घर बना रहे हैं।
15: अच्छा।
14: घर बना रहे हैं, जुड़ाई कर।
15: अच्छा तो अभी कहाँ आएंगे?
14: हाँ काम कर रहे हैं, काम के है। कौन है मैडम, कहीं गई है क्या मैडम?
15: छुट्टी पे है।
14: कितना दिन के लिए गई है?
15: अब आएंगे।
14: चलिए ठीक है मैडम, बताएगा ना शाम के
15: जी जी बजेगा।
14: ठीक है मैडम, इंतजार करेंगे।
15: ओके तो गाना प्ले करते हैं
14: जी मैडम। नमस्कार।
15: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो इंजन 90.4 FM।

0: नमस्कार भारती मैम।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: जी धन्यवाद, कैसी हैं मैम?
1: बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी मस्त हैं मैम। आज भारती मैम नहीं है, आपका नाम क्या है मैम?
1: जी मेरा नाम मनोरमा है।
0: जी मैम, तो हमको एक गाना सुनना है।
1: जी बता दीजिए।
0: गाना का नाम है मौसम की तरह तुम भी, यही वाला गाना सुनना है।
1: ओके, वैसे आपका नाम?
0: जी हम सतोजी बोल रहे हैं, गोपालगंज से।
1: गोपालगंज में कहाँ से?
0: चंद्रगोखर रोड है ना।
1: जी जी
0: जी वही से बोल रहे हैं मैम। भारती मैम हमको जानती है नहीं है क्या हुआ?
1: भारती मैम है, उनका दूसरा काम चल रहा है अभी।
0: जी मैम आज वो तो चलेगा योर वॉइस वाला?
1: जी जी चलेगा,
0: आप उसमें आती है तो अच्छा लगता है, आइएगा।
1: जी बिल्कुल,
0: आपका मतलब फरमाइश सुन रहे थे, मतलब मैसेज शामिल कर रहे थे तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था सुनने। एडवाइस सही है
1: जी।
0: जी मैम, हम कितने नंबर पे हैं?
1: जी अभी आपका अभी दूसरा कॉल है।
0: जी मैम हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि पहला कॉल लग जाए लेकिन लग नहीं पाया, ऐसा नहीं ठीक है।
1: कोई बात नहीं, दूसरा लग गया ना।
0: जी मैम दो मिनट पहले से ही लगा रहे थे कि लग जाए, इसलिए नहीं लग पाया भाई। तो कब तक बजेगा
1: ये गाना आपका? शाम को बजेगा,
0: मतलब आज या कल?
1: आज ही बजेगा।
0: पहले वाला कॉल होगा तो नहीं बज पाएगा, नहीं तो कल।
1: जी
0: जी मैम, थैंक यू,
1: वेलकम,
0: बाय मैम।
1: बाय। रेडियो 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।

0: 309-45-651 या 97-097-06-575।
1: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
2: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
1: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
2: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
3: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
4: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
5: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
6: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
7: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
5: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
4: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
5: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
7: कॉल करे 87-894-18-744।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
7: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
9: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिंग 90.5।
10: नमस्कार मैम।
11: नमस्कार,
10: आप भारती बोल रही हैं?
11: नहीं, भारती नहीं बोल रही, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
10: अच्छा जी मैम, गाना जो एथी करते हैं बोलते हैं कौन दिन को सुनाया जाता है?
11: पहले जो रिकॉर्डिंग होता है उसके बाद ये बजता है अगले दिन।
10: रिकॉर्डिंग तो उसी दिन होता है, सोमवार को होता है, बुधवार, शुक्रवार।
11: जी
10: मैम, बस आप कैसी हैं?
11: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
10: हम भी ठीक हैं मैम।
11: तब क्या हो रहा है?
10: अभी पूजा उजा करके खाना बैठे हैं, खाना खाने तो याद हुआ, तो टाइम देखे तो 12:20 हुआ, तो सोचे क्या की आप कॉल करें।
11: बढ़िया, तो वैसे अपना नाम बता दीजिए।
10: मैम मेरे सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी नाम है सुनीता।
11: और कहाँ से?
10: जियापुर से मैम।
11: ओके, तो फरमाइश बता दीजिए
10: मैम। जो हम साथ में के हैं, मैया जरोदा रीरा रनैया।
11: अच्छा हाँ,
10: गाना बजा दीजिए मैम।
11: ओके, और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
10: सबसे पहले आपको आज इतना रेडियो म्यूजिक पर सुनते हैं, सभी भाइयों और बहनों को, सभी को सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे।
11: जी तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजन 90.4 FM।
10: थैंक यू मैम।
11: वेलकम।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: मैं शाहबुद्दीन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, हरियाणा से।
0: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है फिर?
1: काम हो रहा है।
0: अच्छा,
1: कॉल तो लगता नहीं, पता नहीं कैसे कॉल लग गया आज।
0: चलिए अब लग गया ना।
1: हाँ लग गया है।
0: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: अपना नाम बता दीजिए।
0: जी मेरा नाम,
1: हाँ
0: जी मेरा नाम मनोरमा है।
1: अच्छा
0: जी,
1: आपसे पहली दफा बात हो रही है ना। मैं रेडियो में बहुत ही सुनता हूँ, मैं रेडियो सुनता हूँ 2014 से, लेकिन वो काफी कम सुनता था, टाइम नहीं मिलता है ना।
0: अच्छा, तो फिर गाना बता।
1: सॉन्ग का नाम है छोड़ के ना जाओ या कुछ को मैंने ये दिल दे दिया, और एक लाइन है सुना दूं?
0: जी बिल्कुल,
1: मैं लाइन सुनाता हूँ, ठीक है?
0: जी सुनाइए।
1: दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और तुम कहते तो आंखों में बुला लेते, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। ठीक है, सुना दीजिएगा ये।
0: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: जी शुक्रिया।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6205-62112 पे।
9: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
9: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HFD लक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रूपए और एक्सट्री 125R 110,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
9: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
10: प्रसाद क्लिनिक,
11: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
10: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
11: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
9: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
9: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: मैं बनूंगा।
12: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
14: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
12: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 AMZ पर।
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
15: Pick it up, pick it up.
16: Hello.
15: Now pick your phone up.
16: Hello.
17: Jab phone ring de bajti hai to kehte hain hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello.
18: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein.
13: यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: जी नमस्कार।
18: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजर 90.4 FM।
16: जी सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
18: जी
16: हाँ, चार्ज मास्टर ग्राम धनाव से।
18: ओके,
16: मनोरमा जी बोल रहे हैं।
18: जी जी,
16: और तो बताइए।
18: और तो बढ़िया, क्या हो रहा है?
16: अरे क्या होगा, हम लोग का सिलाई है ना, टेलर का काम है, रोशन टेलर में। आप रोज सुननी करती है, मैसेज आता है।
18: जी जी,
16: और खेती बाड़ी का काम हो रहा है इधर भी। बारिश हो रहा है कि नहीं आते?
18: बारिश तो नहीं हो रहा है,
16: धूप निकला हुआ है।
18: नहीं, सुहाना मौसम है।
16: और चलिए गाना सुना दीजिएगा। तो मूवी का नाम है आई मिलन की रात, गाने मूवी का नाम है आई मिलन की रात, गाने का बोल सावन का महीना।
18: एक बार और गाने के

0: समझ में आ गया ना?
1: जी जी, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं
0: जी। और सुनने वाले हैं सभी हमारे पोता है आजम अंसारी, अयान अंसारी, मुल्तान अंसारी और अलीशान अंसारी, सब हमारे घर के लोग हैं। और हम लोग जितने रेडियो और जितने रेडियो सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहता हूँ। कब बजेगा मैडम?
1: नहीं आज ही बजेगा।
0: आज तो 9 बजे, हम तो रोज सुनते हैं ना कार्यक्रम
1: जी, तो आज ही मतलब कोशिश रहेगा कि आज ही बजे
0: जी। और सोनी जी आएंगे कि नहीं?
1: आएंगी, अभी तो छुट्टी पे है तो।
0: अभी छुट्टी पे है, भारती जी से कल इधर बस में जुड़े थे हम, तो गाना
1: जब तक सोनी जी नहीं आ जाएंगे तब तक भारती जी तो करेंगे
0: जी जी जी।
1: तो गाना प्ले करते हैं
0: जी,
1: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मधु सर यहाँ से बोल रहे हैं, राजू वार।
1: अच्छा,
0: सॉन्ग सुनना है।
1: जी बता दीजिए।
0: बोलबम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, आज काम पर नहीं गए, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा अच्छा, ये बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम, हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956-97-644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
4: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
5: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गली के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 84710-30992 या 90765-65750।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
9: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
5: जी हाँ कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष उभरा। पार्टी विधायक

0: एक्ट 2026 पारित किया। इसके बाद सभाध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। इधर राज्यसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने विपक्ष के हंगामे के बीच शून्यकाल शुरू किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है।
1: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिस यूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एलओसी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भी मौजूद रहे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक औपचारिक मुलाकात थी। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।
2: अनौपचारिक थी, कोई औपचारिक मुलाकात नहीं थी, वो कटसी कॉल थी और कटसी कॉल के लिए गए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी सदैव चिंतित रहते हैं और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा कि हम सबको मिलके बिहार के विकास को और आगे बढ़ाना है और बिहार को विकसित बिहार बनाना है।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना स्थित नासरीगंज घाट से पानापुर घाट तक स्टीमर सेवा का उद्घाटन किया। इस सेवा के शुरू होने से त्यारा इलाके के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में सहकारिता मंत्री ने कहा कि स्टीमर सेवा से पटना के साथ साथ सारण जिले के 7 पंचायतों को लाभ होगा। उन्होंने बताया कि स्टीमर सेवा निःशुल्क है। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी को मिली हार की समीक्षा की जाएगी। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि वे जनादेश को स्वीकार करते हैं।
3: देखिए, जनादेश का जो भी मैंडेट जो है उसको हम लोग जो है स्वीकार करते हैं, लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी के सरकार पर था, मुख्यमंत्री पर था और उनके गलत नीतियों पर था और काम कुछ नहीं किया, अपने काम से वो पीछे हटे हैं, इसलिए जनता ने भाजपा के लोगों को सलाह।
0: इधर बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष के स्वर उभर कर सामने आए हैं। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि यह हार संगठन की कमजोरी के कारण हुई है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे पार्टी को नुकसान हो रहा है।
4: हमारी हार हुई है संगठन की कमजोरी की वजह से भी, और भरोसा जिन लोगों पर पार्टी करती है उनका कोई वजूद समाज में नहीं है, वैसे लोग पर भरोसा करती है। कई ऐसे चेहरे हैं जब हमारे नेता के आजू बाजू बैठते हैं तो लोग कमेंट करता है और असंसदीय शब्दों का प्रयोग करता है, वैसे लोगों को गाड़ी से निकाल देना चाहिए, गाड़ी पर नहीं बैठाना चाहिए और आजू बाजू भी नहीं बैठाना चाहिए, जिससे पार्टी को काफी हानि हो रही है।
0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि इससे किसी भी राजनीतिक दल को खुश होने की जरूरत नहीं है।
5: परिणाम है उसको हम स्वीकारते हैं, लेकिन इससे किसी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। 2009 में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में 17 सीटों पर हम बाय इलेक्शन लड़े थे, 12 सीट हार गए थे और 2010 में 89% स्ट्राइक रेट से बिहार जीता था, इसलिए बहुत लोग खुश न हो।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने उपचुनाव के परिणाम को चौंकाने वाला बताया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस परिणाम की समीक्षा की जरूरत है।
6: थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है। हार जीत तो डेमोक्रेसी में कोई बड़ी चीज नहीं है, कभी हार

0: जीत होती है। वहां की जनता का जो निर्णय हुआ हम लोगों के सर आंखों पर है, लेकिन समीक्षा की जरूरत है कि आखिर क्यों ऐसी स्थिति हुई।
1: प्रदेश के नगर निकायों में सफाई कर्मियों और चालकों की हड़ताल के कारण साफ सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित है। छह दिनों से चल रही हड़ताल के चलते जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार दिखने लगा है। बारिश के मौसम में गली मोहल्लों में कचरे का अंबार लगने से संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस बीच स्थानीय प्रशासन की ओर से साफ सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। इधर बेतिया से हमारे संवाददाता आशीष कुमार ने बताया कि हड़ताल कर्मियों ने स्थानीय विधायक और पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के आवास का घेराव किया। रेणु देवी ने विभागीय मंत्री से बात की और कहा कि कर्मचारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन मिला है।
2: देश देश हमारे बिहार भर में जितना भी एजुकेशन हो रहा है, तीन सूत्री मांग के लिए अभी हमने अपने माननीय नगर विकास मंत्री जी से बात की हूँ और जहाँ तक है कि बात बनेगी। और मैंने एक सुझाव रखा है कि कम से कम फोर्थ ग्रेड के कर्मचारी को जनरल इंश्योरेंस से भी जोड़ा जाए।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह एक अनौपचारिक मुलाकात थी। इस दौरान बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर मुख्य रूप से चर्चा हुई।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी पटना से प्रसारित होने वाले भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में परिवर्तन किया गया है। 7 अगस्त से यह समाचार बुलेटिन संध्या 6:05 की जगह संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 MHz पर FM रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। कटिहार की स्टार्टअप उद्यमी मीसा सिंह को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति सचिवालय से उन्हें आमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। मछलियों को अधिक समय तक सुरक्षित रखने और उन्हें दूर दराज के बाजारों तक बेहतर ढंग से पहुंचाने की तकनीक विकसित करने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है। मीसा सिंह ने इसे अपने लिए गौरव का क्षण बताया।
1: मुझे ये ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम के यहाँ से ये इन्विटेशन आया है जो कि मेरे स्टार्टअप के लिए है, जो कि हम कोल्ड चेन में अपना काम कर रहे हैं उसी के सम्मान में हमें ये इन्विटेशन मिला है और मैं इसके लिए बहुत बहुत बहुत खुश हूँ और बहुत ही ज्यादा मेरे लिए खुशी का पल है और मैं इस खुशी को बयान नहीं कर सकती।
0: पेपर लीक भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और शिक्षा व्यवस्था में सुधार समेत कई मांगों के समर्थन में NSUI समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने आज पटना में प्रदर्शन किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रदर्शनकारियों का जत्था JP गोलंबर से मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए निकला था। इस दौरान इनकम टैक्स गोलंबर पर प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हुई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी और आगे बढ़ने लगे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ और कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। प्रदर्शन में शामिल छात्रों ने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है उनकी लड़ाई जारी रहेगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से राहुल कुमार।
0: रेलवे भर्ती बोर्ड की लेवल 1 भर्ती परीक्षा 3 से 6 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आयोजित की जा रही है। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए पूर्व मध्य रेल ने 2 जोड़ी परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया है। इसमें 1 जोड़ी स्पेशल ट्रेन जयनगर और लखनऊ के बीच जबकि 2री जोड़ी ट्रेन राजगीर और वाराणसी के बीच चलाई जा रही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल और शिक्षाविद DY पाटिल का आज उनके पैतृक आवास महाराष्ट्र के कोल्हापुर में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। DY पाटिल 22 मार्च 2013 से 26 नवंबर 2014 के बीच बिहार के राज्यपाल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हुसैन और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने DY पाटिल के निधन पर गहरा शोक जताया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने भी DY पाटिल के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रदेश में मॉनसून की सक्रियता से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया में सबसे अधिक 160 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 24 घंटों में अररिया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, मधेपुरा, खगड़िया, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अन्य जिलों में भी बारिश की संभावना है।
3: 24 घंटों के दौरान राज्य के पूर्वी भाग के अनेक स्थानों जबकि शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है तथा 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों में 1-2 स्थानों पर मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के अररिया, पूर्वी चंपारण, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, शिवहर एवं सीतामढ़ी जिलों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: प्रदेश के विभिन्न भागों में आज चेहल्लुम पूरी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में यह दिन मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न स्थानों पर ताजिया, सिपर, अलम और मातमी जुलूस निकाले जा रहे हैं। बेगूसराय जिला मुख्यालय के कचहरी रोड में आधार सेवा केंद्र की शुरुआत हुई है। इस केंद्र पर लोग नया आधार कार्ड बनवाने के साथ साथ बायोमेट्रिक सुधार और नाम पता तथा मोबाइल नंबर भी अपडेट करा सकते हैं। सुपौल जिला मुख्यालय स्थित डिग्री कॉलेज चौक पर कोसी पुनर्वासित परिवारों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी बाधित रही। जदयू अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बिहार के विकास से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा। बांकीपुर चुनाव परिणाम के बाद राजद में असंतोष उभरा। पार्टी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा, संगठन की कमजोरी के कारण मिली पराजय। और मौसम विभाग ने अररिया, मधेपुरा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण और शिवहर समेत 10 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: यह आकाशवाणी का पटना केंद्र है। अब प्रस्तुत है शेखपुरा जिले की हलचल। इसे प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे संवाददाता निरंजन कुमार।
1: सावन माह के आगमन के साथ ही शेखपुरा जिला का वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया है। सावन के पहले सोमवार के दिन जिले के प्रमुख मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। गिरिंडा स्थित प्रसिद्ध बाबा कामेश्वरनाथ मंदिर तथा बरबीघा प्रखंड के ऐतिहासिक पंचवदन स्थान में भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु कतारबद्ध दिखे। श्रद्धालुओं ने गंगा जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की तथा परिवार की सुख समृद्धि और मंगल कामना की। इस वर्ष बरबीघा प्रखंड के पंचवदन स्थान पर पहली बार राजकीय श्रावणी मेला का आयोजन किया जा रहा है, जिससे श्रद्धालुओं में उत्साह देखा जा रहा है। जिले में सामान्य से कम वर्षा होने के कारण खरीफ खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कृषि विभाग ने इस वर्ष जिले में 28,000 हेक्टेयर क्षेत्र में धान की रोपाई का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन खेतों में पर्याप्त पानी नहीं रहने के कारण अब तक निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले केवल 43% क्षेत्र में ही धान की रोपाई हो सकी है। जून और जुलाई दोनों महीनों में अपेक्षित बारिश नहीं होने से किसानों को धान की रोपाई में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ किसानों को डीजल पंप के सहारे सिंचाई कर अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जिससे खेती की लागत भी बढ़ रही है। शेखपुरा जिले ने 31 जुलाई को अपना 32वां स्थापना दिवस उत्साह और उल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर जिले भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य समारोह का आयोजन समारणा

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: टॉप रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया या? दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।
8: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
9: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
10: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मिलती हैं।
11: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03 62042434-03।
12: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
13: रेडियो रिमझिम।
12: सुनो दिल।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
4: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
7: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
8: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
8: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजैट पर।
9: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
10: रेडियो रिमझिम।
9: सुनो दिल से।

0: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर जे शरण एमडी फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिको जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर जे शरण जी शाम 5 बजे से 7 बजे तक बैठ रहे हैं अपने निवास स्थान शबनम होटल के पीछे आजाद नगर गोपालगंज।
1: डॉक्टर साहब के यहाँ पर्ची का नंबर मोबाइल से भी लगाया जा सकता है।
2: आशा मेडिको में किसी भी प्रकार की लिखी दवाएं मिलती है, मोबाइल से दवा का ऑर्डर भी किया जा सकता है। मोबाइल नंबर है 76545 67 666।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
4: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
3: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
4: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
3: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
4: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
3: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
4: बोलबम हर हर महादेव।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल। दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
7: रेडियो एमजेम।
6: सुनो दिल से।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
7: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
8: रेडियो रिमझिम।
7: सुनो दिल।

0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
1: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
2: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस वक्त ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
5: दिल बोले म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4। सुनो दिल।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
3: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
4: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत वस्त्र आयुक्त कार्यालय मुंबई में 6 युवा पेशेवरों और एक विधि पेशेवर की नियुक्ति के लिए पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पात्रता मानदंड जैसे विस्तृत विवरण के लिए देखिए कार्यालय की वेबसाइट www.txcindia.gov.in। व्यय विभाग के प्रापण नीति प्रभाग के अंतर्गत लेवल 13 में निदेशक के एक तथा लेवल 11 में उपनिदेशक के एक पद को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाना है और इसके लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदवार, पात्रता मानदंड और अन्य विवरणों के लिए देखिए वेबसाइट doe.gov.in अथवा 1-7 अगस्त 2026 के रोजगार समाचार पत्र में प्रकाशित QR कोड को स्कैन करके भी आप आवश्यक जानकारी हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा आमंत्रित कर रहा है प्रोफेसर के 6 पदों के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के 3 पदों के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के 2 पदों के लिए आवेदन। पात्रता की शर्तों, वेतन, आरक्षण, तैनाती का स्थान आदि की विस्तृत जानकारी के लिए देखिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.hindiviswa.org। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 17 अगस्त 2026। सैनिक स्कूल

0: अधिशासी अभियंता सिविल, चिकित्सा अधिकारी एलोपैथी और सहायक रजिस्ट्रार। चयन प्रक्रिया भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी भर्ती नियमों और कार्यालय ज्ञापनों के अनुसार संचालित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए देखिए संस्थान की वेबसाइट www.nitap.ac.in। मुरगांव पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक और वरिष्ठ उप मुख्य लेखाधिकारी एक एक पद रिक्त हैं। अधिक जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.mormugaonport.gov.in। मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सहायक प्राध्यापक ग्रेड 2, सहायक प्राध्यापक ग्रेड 1, सह प्राध्यापक समूह ए और प्राध्यापक समूह ए। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट www.manit.ac.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: अरे मुन्नी, तुम आ गई। चल मेरा कान का झुमका ला।
7: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
6: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
7: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
7: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सजा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
7: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
11: भरोसे वाले से लेंगे,
10: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
11: और कीमत भी।
10: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
12: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
13: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ SP ज्वेलर।

0: जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
1: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
2: दिल बोले म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक बोले दिल, दिल की फ्रीक्वेंसी 90.4
3: रेडियो रिमझिम।
2: सुनो दिल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में पदक विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या डीएम द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद दी जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चलने नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन खड़गे जी को जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं हर समय। हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार एनओपी का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मंत्रालय ने कहा कि 2014 से पहले भारत के केवल 37 देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौते थे और आर्थिक भगोड़ों से निपटने या उनकी संपत्ति जब्त करने के लिए कोई समर्पित कानून भी नहीं था। भारत ने पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को पूरी तरह दिखावा बताया है। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि इस तरह के खोखले प्रयास वास्तविकता को छिपा नहीं सकते।
3: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में यह तथाकथित चुनाव पूरी तरह से एक दिखावा है। वास्तविक स्थिति तो वहां हो रहे जन प्रदर्शन और पाकिस्तानी बलों द्वारा की जा रही निर्मम हत्याओं की है। इस वर्ष जून से अब तक वहां जन प्रदर्शन जो चल रहा है उसमें 90 लोग मारे गए हैं और कई एक अन्य में घायल हुए हैं। पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था ने जनता के असंतोष का जवाब गोली से, संचार बंदी से, धमकी से और दमन से दिया है। इसके लिए उसे जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और विश्व समुदाय को मानव अधिकारों पर पाकिस्तान के पाखंडपूर्ण उपदेशों के इस खोखले मुखौटे के पार वास्तविकता को देखना चाहिए।
0: सितंबर महीने में दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के निमंत्रण पर श्री जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को इस साल फरवरी में पदभार ग्रहण करने पर भारत की द्विपक्षीय यात्रा का औपचारिक निमंत्रण दिया गया था। उन्होंने बताया कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संबंध में भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को बिम्सटेक के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के जनसंपर्क सत्र में शामिल होने के लिए अलग से निमंत्रण दिया है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाताओं से संवाद पर प्रवक्ता ने कहा कि यह संवाद एक निजी मीडिया संस्था ने आयोजित किया है।
3: वो एक प्राइवेट मीडिया संस्थान उसका आयोजन कर रहा है। भारत सरकार का इस आयोजन से कोई लेना देना नहीं है और साथ ही साथ वहाँ पर इस मंच से उठाए गए विषय या उस मंच से बोले गए शब्दों का कोई समर्थन हम नहीं करते हैं, ना हमारा कोई उससे कोई रिश्ता नहीं है।
0: पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित दो सीमा पार आतंकी मॉड्यूल के 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुरक्षा प्रतिष्ठानों की निगरानी में भी शामिल थे। उन्होंने रेलवे ट्रैक के पास निगरानी कैमरे लगाए थे और फुटेज विदेशी एजेंटों के साथ साझा कर रहे थे। जांच जारी है। निर्वाचन आयोग ने दिल्ली और महाराष्ट्र में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के कार्यक्रम को 17 अगस्त तक बढ़ा दिया है। मतदाता सूची का मसौदा 24 अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची अब 27 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। आयोग ने बताया कि नागरिक 24 अगस्त से 23 सितंबर तक अपने दावे और आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की CBI जांच की मांग को लेकर रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन आज 11वें दिन भी जारी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा तक मार्च निकालने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदिव्य कुमार की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले की CBI जांच की मांग की है। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भर्ती आयोगों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद का आरोप लगाया है।
4: झारखंड में हजारों लाखों छात्र किस प्रकार से आंदोलन में हैं? कांग्रेस पार्टी एक शब्द झारखंड में आंदोलन में बैठे छात्रों के पक्ष में बोलते नजर नहीं आ रही है, पार्लियामेंट में उस विषय को उठाते नजर नहीं आ, क्योंकि ये सिलेक्टिव आउटरेज है और इसके पीछे केवल राजनीतिक रोटी सेकने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी की है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत देश भर में 50 लाख से ज्यादा परिवारों को छतों पर सौर पैनल लगवाने का फायदा मिला है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि ये योजना नागरिकों को सशक्त बना रही है, ये भारत को स्वच्छ और ऊर्जा सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने में गति प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि 19 लाख से ज्यादा परिवारों का बिजली का बिल अब शून्य हो गया है। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में ग्लाव झील को भारत का 101वां रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इसे जैव विविधता संरक्षण, जल और जलवायु सुरक्षा तथा सतत आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वी हिमालय में स्थित ये कमलांग बाघ अभयारण्य और वन्य जीव अभयारण्य के भीतर बसा हुआ स्वच्छ मीठे पानी की झील जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। यूपीआई ने पिछले महीने 236 करोड़ 60 लाख रुपए का लेन देन किया है। वित्त मंत्रालय ने डिजिटल भुगतान को अपनाने और इसको आगे बढ़ाने के लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। मंत्रालय ने लोगों से देश में लेन देन के तरीके को बदलने की इस यात्रा को जारी रखने का आह्वान किया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
5: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 210 अंक घटकर 78,429 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक नीचे आकर 24,615 पर दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में एक डॉलर की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर होकर 95.38 पैसे पर बंद हुआ।
0: खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी, जूडो और पैरा एथलेटिक्स में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में एक समारोह में स्वर्ण पदक विजेताओं को 30 लाख, रजत पदक विजेताओं को 20 लाख और कांस्य पदक विजेताओं को 10 लाख रुपए के पुरस्कार प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि 36,000 करोड़ रुपए की संशोधित खेलो इंडिया योजना से भविष्य में खेलों के विकास में निरंतर निवेश सुनिश्चित होगा।
6: सरकार ने खेलो इंडिया स्कीम लाया, स्पोर्ट्स के लिए सारी फैसिलिटी व्यवस्था खड़ी करी, लास्ट वीक में 36,000 करोड़ रुपया दिया जो आपके लिए यूज करा जाए। सरकार स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी नहीं चलाई। आप जैसे जो एथलीट रिटायर करेंगे, जो स्पोर्ट्स को जीते हैं, मैं आपको कहूंगा कि आप चलाओ, पैसा हम देंगे। देश की आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षा है। हमें हर बार नए लक्ष्य को तय करना है और लक्ष्य को अचीव करने के लिए प्रयास करना।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने डबल्स प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। उन्होंने थाईलैंड के वोरापोल थोंगसानगा और चालो एम्पोन चारोएन कितामोर्न को हराया। फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2379 में उड़ान के दौरान अत्यधिक ऊंचाई पर विमान में कुछ समय के लिए झटके महसूस किए गए, जिसके कारण विमान के सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को नई दिल्ली में सुरक्षित उतारा गया। विमान में 137 यात्री और 8 चालक दल के सदस्य सवार थे। 13 यात्रियों और 4 चालक दल के सदस्यों को मामूली चोटें आईं। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दिन में दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में भी तेज बारिश की संभावना है। केरलम, माहे, राजस्थान, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश में भी अगले 2-3 दिनों में ऐसी ही स्थिति रह सकती है। सुरों के जादूगर किशोर कुमार की जयंती पर उनकी जन्मस्थली खंडवा में पूरे दिन उत्साह का माहौल रहा। देश भर से पहुंचे हजारों प्रशंसकों ने उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी। समाधि परिसर में दिन भर किशोर कुमार के सदाबहार गीत गूंजते रहे। बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने बॉम्बे बाजार स्थित उनके पैतृक निवास का भी भ्रमण किया। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित। ये विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और सख्त बनाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया को तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया। गृह मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाया गया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में तथाकथित स्थानीय चुनावों को दिखावा बताया। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
8: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
9: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
10: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
8: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
11: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
8: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
9: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
12: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
13: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
12: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
13: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
12: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
13: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
12: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
13: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
14: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
15: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
14: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
15: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
16: ठक ठक।
17: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
18: अच्छा मिला ही नहीं।
17: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
8: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
17: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
8: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
19: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
20: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
12: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
13: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
12: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
13: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष
16: विशेषज्ञों द्वारा।
21: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
16: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
21: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
16: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।
22: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। पूरे जिले में चहल्लुम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। दाहा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। गोपालगंज के सांसद ने सवियां फील्ड को लेकर मंत्री से की मुलाकात। शहर में पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान। 10 रुपए के लिए हुए विवाद में घायल एक महिला की इलाज के दौरान हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज चहलुम को लेकर पूरे जिले में पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। सभी इलाकों में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। इस वजह से चहलुम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करा लिया गया। बताया जा रहा है कि कई क्षेत्रों में चहलुम का जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से निकाला गया। इस दौरान पुलिस के जवान भी साथ में मुस्तैद रहे। जिलाधिकारी समीर सौरभ और SP विनय तिवारी के निर्देश पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ इलाकों में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती की गई थी। इसके वजह से सभी इलाकों में शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार को संपन्न कराया गया। मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी बाजार के पास दाहा नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक सूरज कुमार लगभग 18 साल का था। परिजनों के अनुसार यह दाहा नदी के पास गया था, इसी बीच पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया जिससे डूब गया। इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने SDRF की टीम को बुलाया और कई घंटों की मशक्कत के बाद आज सूरज कुमार के पार्थिव शरीर को नदी से बरामद किया गया। इसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने आज केंद्रीय नागर विमानन मंत्री किंज रापू राम मोहन नायडू से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने हथुआ अनुमंडल के सबिया फील्ड को भारत सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान योजना के अंतर्गत शीघ्र संचालित कराने का आग्रह किया। इस अवसर पर मंत्री जी को विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा गया। सांसद ने अवगत कराया कि सबिया एयरफील्ड एक रक्षा एयरफील्ड है जिसे पहले ही उड़ान योजना में शामिल किया जा चुका है। एयरफील्ड लगभग 473 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है जिसमें से लगभग 280 एकड़ भूमि पूर्णतः अतिक्रमण मुक्त एवं परिचालन के लिए उपलब्ध है। रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत सांसद निधि से इस भूमि का सीमांकन एवं पिलरिंग का कार्य भी कराया गया है। इसके अतिरिक्त रक्षा संपदा निदेशालय के द्वारा 4.41 करोड़ की स्वीकृति के बाद संपूर्ण 473 एकड़ भूमि की बाउंड्री पिलरिंग एवं फेंसिंग का कार्य भी पूरा किया गया है। सांसद ने कहा कि जिले के लगभग 1.5 से लगभग 1.5 से 2 लाख लोग खाड़ी देशों में कार्यरत हैं, जिनका राज्य की अर्थव्यवस्था एवं विदेशी मुद्रा अर्जन में महत्वपूर्ण योगदान है। वर्तमान में हवाई संपर्क के अभाव में बड़ी संख्या में लोगों को दिल्ली सहित अन्य महानगरों तक सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ती है। प्रतिदिन 200 से अधिक निजी बसों के संचालन के कारण सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं भी सामने आती हैं। उन्होंने कहा कि सबिया एयरफील्ड के चालू होने से यात्रियों को सुरक्षित सुलभ एवं त्वरित हवाई संपर्क उपलब्ध होगा। साथ ही एयरफील्ड के परिचालन से केवल गोपालगंज ही नहीं बल्कि सिवान पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण सारण तथा उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भी लाखों लोगों को सीधे इसका लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि एयरफील्ड का सर्वेक्षण किया जा चुका है। बिहार सरकार ने 9 जून 2025 को एयरपोर्ट के संचालन के संबंध में केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भी भेजा है। सांसद ने यह भी उल्लेख किया कि मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के अंतर्गत 5 चरणों में बोली प्रक्रिया पूरी किए जाने के बावजूद अब तक किसी एयरलाइन के द्वारा परिचालन का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि एयरलाइनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु मंत्रालय स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप कर शीघ्र अग्रेतर कार्रवाई किया जाए ताकि सब यहाँ एयरफील्ड से हवाई सेवाओं का संचालन प्रारंभ हो सके। मुलाकात के दौरान मंत्री जी ने सांसद के उठाए गए विषयों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों के साथ इसकी समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन भी दिया। गोपालगंज नगर थाना की पुलिस और नगर परिषद ने मिलकर संयुक्त रूप से स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान पोस्ट ऑफिस चौक से मोनिया चौक तक सड़कों की सफाई की गई। नगर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में भारी पुलिस बल भी तैनात रहे। इसी दौरान सफाई कार्यों का विरोध करने के लिए नगर परिषद के स्वच्छता कर्मी पहुंच गए, जिनमें एक महिला और एक पुरुष को पुलिस ने हिरासत में लिया। नगर परिषद के चेयरमैन, वार्ड पार्षद, सफाई कर्मी और पुलिस जवानों ने खुद झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। जिन कर्मियों को पुलिस ने हिरासत में लिया उन्हें थाने ले जाया गया। बताया जा रहा है कि थाना पर भी बहुत सारे सफाई कर्मी पहुंचकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद पुलिस के वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंचे और किसी तरह समझा बुझाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। बताया जा रहा है कि नगर परिषद के सफाई कर्मी लगातार अपनी कुछ मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके वजह से शहर के अलग अलग इलाकों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इसी से निजात पाने के लिए शहर के मुख्य सड़कों पर आज पुलिस ने नगर परिषद के पदाधिकारियों और वार्ड पार्षदों के साथ मिलकर खुद ही स्वच्छता अभियान शुरू किया, परंतु ये सफाई कर्मी इसका विरोध करने लगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों को लेकर हड़ताल किया है। विरोध करने पर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद बवाल हुआ। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित किया गया है और नगर परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी तथा नेतागण भी सफाई कर्मियों से इस अनिश्चितकालीन हड़ताल को लेकर लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। थामे थाना क्षेत्र के मठ गौतम गांव में मात्र 10 रुपए के लेन देन को लेकर एक विवाद हो गया, जिसमें एक महिला को मारपीट कर घायल कर दिया गया था। महिला का गोरखपुर में इलाज चल रहा था और वहां इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। आज जैसे ही महिला का शव दरवाजे पर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि विवाद को लेकर एक आरोपी ने टांगी से महिला के सिर पर वार किया था। हालांकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें आधा दर्जन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, न्यायिक हिरासत में भी भेजा गया है। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर भी परिजन अड़े हुए थे। पुलिस ने आश्वासन दिया और समझा बुझाकर कड़ी सुरक्षा के बीच करीब 12 घंटे बाद महिला के शव का अंतिम संस्कार कराया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि सत्य प्रकाश सिंह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे और समझा बुझा कर स्थिति को नियंत्रित किया गया। पुलिस ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस हत्या में शामिल आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास एक कार को पकड़ा, जिसके अंदर से 216 लीटर से अधिक शराब मिली है। इस कार में उत्तर प्रदेश के रहने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी सिया यादव है और दूसरा आरोपी प्रेमचंद यादव है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहे थे, तभी उत्पाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। शराब और गाड़ी को जब्त कर इन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। उत्पाद पुलिस ने 27 लीटर विदेशी शराब के साथ एक मोटरसाइकिल सवार प्रिंस कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। यह उत्तर प्रदेश के भटनी का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश से शराब लेकर आ रहा था, तभी भिंगारी चेक पोस्ट पर इसे उत्पाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसकी शराब और गाड़ी को जब्त कर अब आरोपी पर पुलिस विधिक कार्रवाई कर रही है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी 99 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ 2 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस ने मानिकपुर तीरमुहानी के पास छापेमारी की, जहां से 94 लीटर देशी शराब को बरामद किया गया। इस दौरान तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त किया है और तस्करों की पहचान कर रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अलग अलग थाना क्षेत्रों में लगातार पुलिस के द्वारा पेट्रोलिंग किया जाता है। रात्रि में भी पुलिस अपने क्षेत्रों में पेट्रोलिंग करती है और पुलिस कर्मियों की पेट्रोलिंग को लेकर जांच पड़ताल करने के लिए वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी सुपर पेट्रोलिंग करते हैं, जिसमें DSP और इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लगातार सुपर पेट्रोलिंग के तहत रात्रि में तैनात पुलिस कर्मियों और चौकीदारों इत्यादि की जांच करते हैं। प्रत्येक दिन वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी अलग अलग क्षेत्रों में सुपर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार की रात भी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कई इलाकों में सुपर पेट्रोलिंग की। मीरगंज थाना क्षेत्र के बरईपट्टी गांव के पास सोमवार को दाहा नदी में एक मगरमच्छ देखे जाने की सूचना मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। आसपास के ग्रामीणों में भय का माहौल हो गया। स्थानीय लोगों ने सभी ग्रामीणों से अपील किया है कि वे अपने बच्चों को नदी के किनारे जाने से रोकें, साथ ही नदी में स्नान करने, मछली पकड़ने या किसी भी अन्य गतिविधि के लिए फिलहाल नदी में न उतरें। जब तक प्रशासन और वन विभाग की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक पूरी सावधानी बरतें। ग्रामीणों ने प्रशासन और वन विभाग से जल्द ही मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ की मौजूदगी की पुष्टि करने तथा लोगों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है। प्रशासन ने भी जनता से अपील किया है कि आप दाहा नदी के आसपास रहते हैं तो सतर्क रहें, किसी भी तरह के अफवाह फैलाने से बचें। मगरमच्छ दिखाई देने पर तुरंत स्थानीय प्रशासन या वन विभाग को इसकी सूचना दें। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी शराब तस्करी के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त मुन्ना सिंह को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी गोपालपुर थाना क्षेत्र के बोधा छापर गांव के नंदलाल सिंह का पुत्र है। इस पर पहले से शराब तस्करी का मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। अब जिले के सदर अस्पताल, अनुमंडलीय अस्पताल, रेफरल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले आपातकालीन मरीजों का भी भाव्या पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक मरीज का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी आभा आईडी भी बनाया जाएगा और उसका इलेक्ट्रॉनिक्स हेल्थ रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। इससे मरीजों का पूरा इलाज और स्वास्थ्य से संबंधित रिकॉर्ड मोबाइल पर सुरक्षित रहेगा, जिसे देश के किसी भी सरकारी अस्पताल में जरूरत पड़ने पर आसानी से देखा जा सकेगा। और आज के मौसम का तापमान, गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। पूरे जिले में चहल्लुम का त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से हुआ संपन्न। दाहा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। गोपालगंज के सांसद ने सवियां फील्ड को लेकर मंत्री से की मुलाकात। शहर में पुलिस ने चलाया स्वच्छता अभियान। 10 रुपए के लिए हुए विवाद में घायल एक महिला की इलाज के दौरान हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम, हर हर महादेव।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
23: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।
0: सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
0: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
0: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
6: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034 48652 पे।
24: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
25: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
24: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
25: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
24: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
25: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
26: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
24: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
27: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
28: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमछीम 90.4 FM पे। यदि आप भी इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है एक छोटा सा, जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम टाइप करना है और सेंड करना है हमारे नंबर 72 77 16 65 96 पे। ध्यान रखना है कि बशर्ते आप पुराने गाने की फरमाइश करेंगे ताकि आपकी फरमाइश पूरी हो सके। आप नए गाने की फरमाइश करेंगे तो आपका समय भी बर्बाद हो जाएगा और आप गाने भी नहीं सुन पाएंगे। तो आप कोशिश करें कि पुराने गाने फरमाएं और अपने गाने के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए, तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और यहाँ पे मेरे पास पहला मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय कैसे हैं आप शाम, तेरी जवानी बड़ी मस्त। और इससे मैसेज को करती हैं मनीषा फ्रॉम अमोवा से, और डेडिकेट करती हैं काजल, पिंकी, सरिया, शनम और सभी को। तो चलिए आपके गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, आज मैं भी जुड़ गई हूं आपके शो से और मेरी और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम। और इस मैसेज को करती हैं शबीना खातो फ्रॉम दुलुलिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सजिया नवादा से, और क्या हाल है आपका, और सॉन्ग सुनना है, तो बिल्कुल बढ़िया है और आपकी फरमाइश है तो पूरी करेंगे, लेकिन आप जिस गाने के फरमाइश की हैं उस गाने को हम पूरा नहीं कर सकते हैं। कल ही आपके गाने हम पूरे कर चुके रहते, लेकिन आपने नए गाने की फरमाइश कर रही हैं, तो नए गाने की वजह से आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो पा रही है। तो आप गाने को चेंज करें, बिल्कुल आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और इस मैसेज को करते हैं रोहित जी। तो फिलहाल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपकी लाइन को भी शामिल करने का प्रयास करेंगे कुछ ही देर में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज शव्य फील्ड से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है कमलेश जी और बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज आते जा रहे हैं तो मैसेज को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को गाने के साथ शुरुआत करते हैं। और पहले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं मनीषा की, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुंचा हुआ है, तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त।

कमल के सॉन्ग रेडियो रेमझिम 94 एफएम पे सुन रहे हैं आप सब। और कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं तो आप भी सुन सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 7277165696। ध्यान रखना है कि 90s या ओल्डीज गोल्ड गाने की फरमाइश करना है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, थैंक्स सॉन्ग सुनाने के लिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझिम सुनने के लिए। और आगे मैसेज कई पहुँचे हैं, आगे कुछ मैसेज है तो शामिल करें। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, सोनू बाबू कैसे हैं, यहाँ झूमकर सावन बरस रहा है। ओ बिल्कुल, मैं तो बढ़िया हूँ, अपना बताएं आप कैसे हैं। और गाने की फरमाइश करते हैं तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल स्वागत है इस कार्यक्रम में वीरेंद्र गुप्ता भैया खेखरिया जक्सल नेपाल बॉर्डर से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि पिता शराब है और कहता है नशा खराब है, खुद सुधरता नहीं और कहता है कि किस्मत खराब है, यहाँ हर एक आदमी की यही कहानी है। मेरे दोस्त अच्छा खुद नहीं है और कहता है कि ज़माना खराब है। सुनो भाई, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पहले खुद को सुधारना है फिर दूसरे को और जमाने को दोष देना है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि उजर बगुला बिना प्योरो ना शोभे, सुरेश शाह तिरबिरवा से मैसेज करते हैं। तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में सुरेश जी, और गाने की फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो, तो फिलहाल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, आगे भी मैसेज सेंड करें। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है कि मेरा सॉन्ग अभी मत प्ले कीजिएगा, बिल्कुल आपके आदेशानुसार ही प्ले होगी और जब आप कहें। आगे मैसेज अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं और इस गाने की फरमाइश करती हैं, कल से लाइन में लगी हैं शाजिया नवादा से। और गाने को चेंज करते हुए गाने का बोल देती हैं, मैंने अपना दिल दे दिया उस पागल दीवाने को। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक।
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।
4: थोड़ा सा ब्रेक हो गया खात्मा और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो MCM 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, मेरा सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल, आपकी भी सॉन्ग सुनाएंगे। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय, हेलो, प्रणाम, सलाम, मेरे तरफ से प्यार भरा प्यारे प्यारे ऑल लिसनर को नमस्कार एंड सलाम बोलिएगा। और मैं आपके संगीत शो में एंट्री कर चुकी हूँ, नीसा भारती उज्जवलिया उसका गांव प्रखंड से। सुपर सॉन्ग, वेरी नाइस, माय बेस्ट सॉन्ग, और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, निशा भारती। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि और हम भी हैं MD महमूद केरला से, एक महीने तो हो ही गए होंगे। और बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हाय, मेरा नाम अलेक्स रितेश किंग, भगवानपुर गोपालगंज से, और मेरा भी एक गाना है, शौरी शौरी। तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, गाने हैं तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि थैंक यू सर। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो रेमझन सुनने के लिए शाजिया। और आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो रेमझन 94.4 FM पे। अगली फरमाइश कमलेश जी की और गाने का बोल देते हैं। पतंग जैसा हवा में लहराए दुपट्टा मेरा मलमल का, सुनते हैं इनके पसंद के गाने हम सभी।

कभी प्यारा शाम सुनने हम सभी रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम पे सो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि हेलो सर, मेरा भी एक गाना, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और आपके भी गाने हैं तो पूरा करने की कोशिश है रितेश जी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं वीरेंद्र गुप्ता भैया जी की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और गाने का बोल दिया गया है झूमता सावन देखो आया। चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करते हैं यहाँ पे और डेडिकेट आप सभी को बोलते हैं। तो चलिए हम सभी हैं और हम सभी भाई बहन आपके गाने के साथ एंजॉय करेंगे और सुनेंगे। फिलहाल आप सुन रहे हैं कि नहीं ये भी बताइएगा। फिलहाल हम तो गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395651 या 97097506575।

थोड़ा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 91.4 एफएम पे और शो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का। और यहाँ पे मिसेज पहुँचा हुआ है और कहा जा रहा है कि सच में सोनू बाबू बरखा ने आज प्यार बरसा रहा है, शुक्रिया। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो एमजीएम सुनने के लिए और चलिए मौसम के अनुसार गाने के फरमाइश करने के लिए खूब इंजॉय किए होंगे और आगे बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा नाम सौम्या मिश्रा है और मेरी बहन का नाम श्रेया मिश्रा है और मेरे भाई का नाम अतिक्ष मिश्रा है और मैं बिहार के गोपालगंज ज़िले के गणेश स्थान गांव के रहने वाली हूं। कृपया मुझे भगवान महादेव का कोई सुंदर सा भजन या गीत सुनाए। तो बिल्कुल, आप कौन गाने सुनेंगी, गीत बताएं, भजन तो नहीं सुना सकते, गीत बताती हैं तो सुनाने की कोशिश रहेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं शबीना खातून की और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, कुछ भूल गए कुछ याद रहा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और यहाँ पे कहती हैं कि सुनाना चाहती हूँ आपको और ऑल रेडियो दोस्तों को। बिल्कुल, सब कोई सुनेगा और साथ में हम भी हैं, प्ले करते हैं।

आप सब रेडियो MCM 90.4 FM पे इस गाने को शबीना की तरफ से फरमाए गए गाने के साथ एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक यू। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो MCM सुनने के लिए। और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और गाने को फरमाया जा रहा है भंडारी हंसराज रघुवंशी का। तो इस गाने को हम नहीं सुनाएंगे, आप पुराने गाने के नाम बताएं शमिया जी, और आगे बढ़ेंगे। आगे अगली गाने के फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस गाने के फरमाइश करते हैं सुरेश जी त्रिबिरवा से, और गाने का बोल तो दिए हैं लेकिन वैसा तो हमें नहीं मिल रहा है, और उसी से मिलता जुलता मिला हुआ है हमें गाना श्रद्धा सिन्हा जी की आवाज़ में। तो उनको हम सुनाते हैं सुरेश जी, और आप सुने, इंजॉय करें।

रेडियो एमजीएम 94.4 एफएम सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश का, और काफ़ी प्यारा गीत सुन रहे थे हम सभी श्रद्धा सिन्हा जी की आवाज़ में। और इस गाने के फरमाइश करने वाले थे सुरेश शाह जी तिरुविरमाशा, और इन्होंने गाने के फरमाइश जो बताए थे वो बीच का लाइन बताए थे, जिसकी वजह से हमें सस्पिशन लग रहा था कि पता ना ये गाने आप जो बताए हैं वो है कि नहीं। और मुख्य गाने का नाम है कोयल बिन बगिया ना सोहे। तो चलिए आगे से ध्यान रखिएगा कि इस गाने को जब भी फरमाइएगा तो मुख्य गाने का नाम लेकर फरमाइएगा, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, इसकी चाहत ना रहे कि पता ना ये गाने है कि नहीं। जो भी सुरतागढ़ गाने फरमाए तो आप मुख्य नाम बताएं, ताकि आपकी फरमाइश बेझिझक हम सभी जब कार्यक्रम करें तो आप सभी को सुनाएं, और हम भी जब कार्यक्रम करें तो सुनाएं। जब आप लोग बीच के गाने की फरमाइश करते हैं तो थोड़ी सी दिक्कत होती है और परेशानी होती है, लगता है कि पता ना ये गाने है कि नहीं, तो थोड़ा सा समझना है। और आगे मैसेज पहुंचे हुए तो मैसेज को शामिल करेंगे। आगे गाने की फरमाइश हमारे पास पहुंचा हुआ है शौरी शौरी पवन सिंह का आवाज़ में, तो चलिए आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुनते हैं। इस गाने के फरमाइश मैसेज को करने वाले रितेश जी हैं भगवानपुर से।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और इस कार्यक्रम की समाप्ति का समय हो चुका है, तो इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे और अंतिम गाने प्ले करेंगे और इस गाने के फरमाइश करती हैं सौम्या मिश्रा। तो आपकी फरमाइश तो हम नहीं प्ले कर रहे हैं, अपने तरफ से गाने हम प्ले करते हैं, आपकी इच्छा को पूरी करते हैं हम। और यदि आप पुराने गाने के फरमाइश की रहती तो आपकी फरमाइश हम प्ले करते आपकी फरमाए गए गाने को, लेकिन आपने पहले वाले मैसेज में कही थी कि कोई भी सुना दीजिएगा सुंदर सा। तो चलिए गुलशन कुमार जी और अनुराधा पौडवाल और सुरेश वाडकर जी की आवाज़ों में आपकी फरमाइश हम पूरी करते हैं और सुने आप एंजॉय करें और हम इस कार्यक्रम से निकलते हैं। फिर कल मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में। तो आप सब सुनते हैं रेडियो रमछिम 94.4 FM जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। यहाँ पे मैसेज पहुँचा, थैंक यू सो मच सर, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमछिम सुनने के लिए रितेश जी, और हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: गुजरियाए।
1: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। संसद ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसे राज्यसभा ने आज स्वीकृति दी। लोकसभा पहले ही विधेयक को पारित कर चुकी है। विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में संशोधन करना है। नया विधेयक विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों को और अधिक सख्त बनाने और जन्म तथा मृत्यु की घटनाओं की समय पर सूचना देने को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया है।
1: इस विधेयक का उद्देश्य जन्म और मृत्यु के पंजीकरण में होने वाली देरी को रोकने और लोगों को समय पर पंजीकरण के लिए प्रोत्साहित करना है। नए प्रावधान के तहत अगर किसी जन्म या मृत्यु की जानकारी एक साल बाद लेकिन दो साल के भीतर दी जाती है तो उसका पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट, उपमंडल मजिस्ट्रेट या DM द्वारा अधिकृत कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति मिलने के बाद ही होगा। अनुमति देने से पहले अधिकारी को यह जांच करनी होगी कि उस व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी सही है या नहीं। यदि जन्म या मृत्यु की सूचना दो वर्ष से अधिक समय के बाद जाती है तो उसका पंजीकरण केवल प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर ही किया जाएगा। जन्म और मृत्यु का पंजीकरण कराना सभी के लिए अनिवार्य है और इसके बाद मिलने वाला प्रमाण पत्र किसी व्यक्ति की कानूनी पहचान का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा ने आज विनियोग विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इसमें 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्त वर्ष के दौरान कुछ सेवाओं पर स्वीकृत राशि से अधिक खर्च की गई थी। इस राशि को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से धन के विनियोग को अधिकृत करने का प्रावधान है। सरकार ने कुछ अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि मांगी है। ये राशि ऋण चुकाने पर खर्च की जाएगी। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अयोध्या राम मंदिर से कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करने वाली कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब चंदे की कथित चोरी को लेकर नाटक कर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं।
2: मुद्दा को लेकर के वो संसद के बाहर भी हंगामा करते हैं या चले नहीं देते हैं। इधर ऑपोजिशन करके जो जितना समय दिया वो मिसयूज करना चाहते हैं। हर समय हम लोग इसको मंजूर नहीं कर सकते हैं और बाकी जो मेंबर लोग ये नोटिस दिया हुआ है उनको मौका मिलना चाहिए। हर बार NOP का नाम से वो खड़े होकर के एक ही मुद्दे को दिन भर उठाते रहते हैं।
0: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि एथेनॉल कृषि क्षेत्र के लिए बड़ा अवसर है, बशर्ते इसकी नीति किसान केंद्रित हो और फसल का उचित मूल्य सीधे किसानों तक पहुंचे। नई दिल्ली में आज अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक में श्री चौहान ने किसान नेताओं के सुझाव सुने और भरोसा दिलाया कि सरकार एथेनॉल से जुड़े उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने रिजर्व बैंक को फर्जी खातों और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े अवैध खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और प्रसारित करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों को शिकायत निवारण को मजबूत करने को भी कहा है। धोखाधड़ी से प्राप्त धन की वसूली में तेजी लाने और डिजिटल धोखाधड़ी के मामलों से निपटने में सुधार करने के लिए कई निर्देश भी जारी किए। भारत 2019 से 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़े अपराधियों को वापस लाया है। गृह मंत्रालय ने कहा कि भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। भारत ने भगोड़े अपराधियों से निपटने के लिए एक एकीकृत खुफिया आधारित और प्रौद्योगिकी संचालित मॉडल विकसित किया है। मौसम विभाग ने कल असम और मेघालय में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश की संभावना है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में कृष्णा प्रसाद गरागा और पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय ने पुरुष डबल्स प्री क्वार्टर में जगह बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. The Parliament has passed the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 with the Rajya Sabha approving it today. Lok Sabha has already passed the bill. Minister of State for Home Nityanand Rai moved the bill in the upper house, which aims to amend the Registration of Births and Deaths Act 1969. Following the passage of the bill, the Rajya Sabha was adjourned for the day. The Lok Sabha has passed the Appropriation No. 3 Bill 2026 today. Following the passage of the bill, the lower house was also adjourned for the day. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman introduced the Taxation and Other Laws Amendment Bill 2026. The lower house witnessed repeated disruptions by opposition members over several issues, including alleged police action against students during the protest over the NEET paper leak issue. The Supreme Court today directed the Reserve Bank of India to prepare and circulate a Standard Operating Procedure, SOP, for dealing with mule accounts and bank accounts linked to cyber fraud. The court also issued a series of directions to states, union territories, law enforcement agencies and banks to strengthen grievance redressal, speed up the restoration of defrauded money and improve the handling of digital fraud cases. India has brought back 274 fugitive criminals from 36 countries between 2019 and 2026. The Ministry of Home Affairs said that to strengthen action against fugitives, the government enacted the Fugitive Economic Offenders Act in 2018. It added that India has developed an integrated intelligence-led and technology-driven model to combat fugitive criminals. India has condemned the attack on the Indian-flagged commercial vessel that sank in the Red Sea off the coast of Yemen today. In a statement, Ministry of External Affairs said all 13 Indian nationals have been rescued. It said the Indian embassy in Riyadh is closely monitoring the situation and proactively coordinating with the Yemeni authorities for the safety and security of the crew. The ministry thanked the Yemeni authorities for their support. It said the continuing incidents of attacks on commercial shipping in the region are deeply worrisome. An Air India flight AI2379 operating from Phuket to Delhi today experienced a brief in-flight turbulence related event during cruise, resulting in a momentary change in altitude. The aircraft landed safely in Delhi and all passengers and crew have safely disembarked. The aircraft was carrying 137 passengers and 8 crew members. Air India said that of these, 13 passengers and 4 crew members sustained injuries and were taken to hospital for medical evaluation. It also confirmed that there have been no serious injuries as of now. The Election Commission has revised the schedule of the ongoing Special Intensive Revision SIR of the electoral roll in Delhi and Maharashtra. According to the revised schedule, the house-to-house verification by booth-level officers will continue till the 17th of this month. The draft electoral roll will be published on the 24th of this month, while the final electoral roll will now be published on 27th October. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh today said that ethanol is a big opportunity for the farming sector, provided its policy is farmer-centric and the correct price of the crop reaches the farmer directly. During a meeting with a delegation of the All India Kisan Coordination Committee held in New Delhi, Mr. Chauhan heard all the suggestions of farmer leaders and assured that the government will take their views on ethanol seriously. India has termed the so-called local elections in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir as complete farce, saying such hollow exercises cannot hide reality. Briefing media in New Delhi this afternoon, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal pointed out that the real happening is that of public protests and wanton killings by Pakistani forces. In badminton, unseeded Indian pair Krishna Prasad Garga and Pruthi Krishnamurthy Roy upset 6th seeds Kalimpong Charo Enkita Morn and Warapol Thongsanga of Thailand 21-16-21-18 to advance to the men's doubles second round at the Korea Masters Tournament in Asan today. And that is the end of this news bulletin.
4: अब सुनिए आज शाम
5: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: All right.

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम और समय हो गया है हेलो माय चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
1: हेलो
2: जी मैम, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैं एलपी से।
1: जी क्या हालचाल है सुनील जी।
2: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम। अभी तो फोन लग गया तो इंतजार खत्म हो गया मैम।
1: जी
2: मैम, वहाँ के मौसम का क्या हाल चाल है मैम।
1: मौसम बारिश हो रहा है
2: जी, हमारे यहाँ भी बारिश चालू है मैम, बहुत अच्छा बारिश हो रहा है मैम।
1: जी
2: तो आज एक फरमाइश है मैम, गाने के बोल है घर आ जाता देसी तेरा देश बुलाए रे, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिमझिम जो लोग सुनते सभी दोस्तों के साथ सुनना चाहते हैं।
1: ओके, वैसे आप रेडियो केसरी को कितना समय से सुनते हैं।
2: जी मैम।
1: जी आप रेडियो रिमझिम को मतलब कितने समय से सुनते हैं।
2: रेडियो रिमझिम तो मैम मेरे को 4 साल हो गए मैम सुनते हुए, बहुत अच्छा लगता है मैम। जब वो सुनती रही थी जब से मैं सुन रहा हूँ रेडियो रिमझिम, एक आज था वो भी मैं सुन रहा था मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम। जी जी जी।
1: रेडियो रिमझिम का कौन सा कार्यक्रम आपको सबसे अच्छा लगता है।
2: मैं सुन लेता हूँ मैम, बहुत अच्छा लगता है। ये कौन पहले माई डोर ये चलता है, अभी 12 बजे से चलता है ये भी, और ये पोलिंग कार्यक्रम सुनता हूँ मैम। दोपहर में रिकॉर्डिंग होता है 12 बजे से, वो भी सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: चलिए बढ़िया, मतलब रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप।
2: मोबाइल एप्लीकेशन मैम, रेडियो रिमझिम एप्लीकेशन लोड किए हैं तो सुनते हैं गोपालगंज वाला एप्लीकेशन
1: है। गूगल के प्ले स्टोर से
2: लड़की
1: है ना।
2: जी जी जी जी जी जी, ये तो हिंदी रेडियो में नहीं आता, हम कल से मारते नहीं है, इसका अलग से एक लिंक है जिसे लोग किए, उसी में चलता रहता है।
1: एफएम के माध्यम से ना।
2: जी जी एफएम के मैम, ऑनलाइन मैम लाइव सुनते हैं।
1: चलिए बढ़िया।
2: आप कौन से मैम बात कर रहे हैं, भारती मैम।
1: नहीं
2: मैं सोनी मैम, मैं भारती हूँ। तो
1: मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: जी जी जी जी जी, अभी तो आप नए आ गए हैं, बहुत अच्छा आपका कार्यक्रम लगता है मैम।
1: सब आप लोग का दुआ प्यार है।
2: जी जी, तो हमारा तो बना ही रहेगा मैम, बहुत अच्छा लगता है मैम। सूफी मैम से भी बात करते थे बहुत अच्छा लगता था, और भारती मैम से भी बात करे तो बहुत अच्छा लगता है, और उनसे भी बात करें तो अच्छा लगता है, आपसे भी बात किए तो बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: वैसे सुनील जी क्या करते हैं आप।
2: जी हम तो मशीन चलाते हैं मैम, जेसीबी मशीन चलाते हैं, और मशीन में चलते रहते हैं अपना मोबाइल एप्लीकेशन में, और ब्लूटूथ है इसी में कनेक्ट कर लेते हैं, तो शाम के 5 बजे से चलता रहता है 5 से 7 बजे तक, और अभी दोपहर में चलेगा, अभी तो लाइट चालू हो गया 12 बजे से, तो सुनेंगे 4 बजे तक, फिर 1 घंटा वो करेंगे मोबाइल को थोड़ा ठंडा कर देंगे, फिर वहाँ से 5 बजे से चलेगा 7 बजे तक, तो यही चलता रहता है मोबाइल में, और मशीन चलाते हैं जैसे भी, तो इसी में अपना बचता रहता, बहुत अच्छा दोस्तों से फरमाइश आता है तो बहुत अच्छा लगता है मैम।
1: ठीक है मैम,
2: तो
1: जी गाना प्ले करते हैं।
2: ठीक है मैम, धन्यवाद मैम,
1: दे रही है सबके साथ रेडियो।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम, कैसे हैं?
1: नमस्कार, बढ़िया हैं। आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। आपका टीम कैसे है?
1: सब कोई बढ़िया
0: बढ़िया का काम है
1: जी।
0: चलिए, हमको सावन का सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: कौन सा?
0: कोई भी अपने पसंद का, सावन का कोई भी सॉन्ग चला दीजिएगा।
1: अच्छा, भोजपुरी में या फिर हिंदी?
0: आपका मर्जी, हिंदी में चलाइए चाहे भोजपुरी में चलाइए। आज सावन पहली सुमारी है
1: जी,
0: आज आपके ऊपर है। देख रहे हैं कौन मन पसंद का सॉन्ग चला रहे हैं।
1: अच्छा जी, तो वैसे आपका नाम?
0: हमारा नाम है ओम साई केलर राघो जी, बंजारी पुलिस स्टेशन के सामने गोपाल
1: जी। तो क्या हो रहा है अभी?
0: अभी तो सिलाई कर रहे हैं, अभी तो बात कर रहे हैं आपसे, तो बाद में सिलाई करेंगे। और सुनाना चाहता हूँ सभी रेडियो दोस्त को, जितना रेडियो दोस्त सुन रहे हैं उन सभी लोगों को साथ में सुनना चाहता हूँ, और सभी आरजे को साथ में सुनना चाहता हूँ।
1: ओके, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone din de bajte hai to kehte hello.
5: Break ke baad aap sabhi ka fir se swagat hai Hello My Choice ke show mein. यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो, सलाम, नमस्कार मैम।
7: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो
6: जी। मैम कैसे हैं?
7: जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
6: हम भी मस्त है, झकास है। बोल रहे हैं मैम, हमसे क्या दिक्कत है, आप लोगों को फरमाइश पूरा नहीं कर रहे हैं?
7: नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, फरमाइश पूरा तो जरूर होगा।
6: जी आपसे बात हुई थी शुक्रवार को।
7: जी
6: तो पूरा नहीं हुआ अभी तक।
7: क्या ना कि बहुत सारा कॉल्स रहता है तो टाइम लग जाता है थोड़ा।
6: वो तो दो दिन में बच गया ना मैम, दो दिन में तो पूरा हो गया वाला।
7: आज बजेगा, और बहुत सारे कॉल्स था तो बच गया, और कुछ है तो आज चलेगा।
6: उसमें का और है क्या मैम?
7: जी जी,
6: हम दो दिन इंतजार किए, सुनने डेली सुनते हैं लेकिन होता नहीं है।
7: आज मिलेगा सुनने को आपको।
6: इससे पहले भारती मैम से बात हुई था, वो भी नहीं बजा।
7: नहीं बजेगा, क्या है ना कि बहुत सारे कॉल्स हो जाते हैं तो फिर लाइन बाई लाइन बजाना पड़ता है सबको।
6: इसलिए तो डेली सुनते हैं तो मिस नहीं करते हैं।
7: वैसे आपका नाम?
6: जी हम सत्रह जल्दी बोल रहे हैं।
7: कहाँ से?
6: जी गोपालगंज से बोल रहे हैं।
7: अच्छा,
6: आप बहुत पुराने मतलब हैं, बहुत पहले सुनते हैं ये रेडियो? जी अभी एक दो साल से जुड़ते हैं लेकिन सुनते हैं बहुत पहले से।
7: अच्छा, आप रेडियो रेंज मतलब कितने समय से सुनते हैं फिर भी?
6: मैम जब हमारे पास छोटा वाला फोन था तब से सुनते हैं, 6-7 साल हो गया जी, लेकिन अभी जुड़ते हैं 2 साल से।
7: रेडियो रेंज को कैसे सुनते हैं आप?
6: जी मैम पहले तो छोटा वाला फोन में सुनते थे, अब इसमें ऐप के द्वारा बड़ा वाला फोन में सुनते हैं।
7: डाउनलोड किए गूगल के प्ले स्टोर से?
6: हाँ, वो अब तक पहले थे ना, अब से सुनते हैं इसके द्वारा।
7: चलिए बढ़िया,
6: पहले आरजे बदल गए ना इसमें। पहले तो रुचि मैम थी
7: जी,
6: उनका आवाज और सोनी मैम का आवाज सेम था तो हम तो कंफ्यूज हो गए थे।
7: अच्छा,
6: इसीलिए। और आपका कुछ अलग ही है, हमारा रोना मैम बोल रहे ना
7: जी,
6: हम आपका आवाज ही पहचान गए क्योंकि अलग है आपका सबसे आवाज और आपका अंदाज भी अलग है जी मैम। तो गाने का फरमाइश करे
7: बता
6: दीजिए। दो नंबर पे
7: जी
6: मैम, 11 बज के कुछ मिनट पहले से लगा रहे थे लेकिन लगी ना बंद बता रहा था, और 11 बज के 2 मिनट लगाया तो बिजी आ रहा था।
7: चलिए कोई ना, अब लग गया ना।
6: जी मैम, गाने का बोल है मैम, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा।
7: ओके,
6: सुनाइएगा, बहुत अच्छा गाना है मैम, उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगेगा। जी मैम,
7: और ये गाना किसी को सुनवाना दिया?
6: जी आपको, भारतीय मैम को, भारत में रहने वाली सभी सुनने वालों को, खास करके 90s के फैन जितने हैं सभी को। आजकल तो बहुत ज्यादा है मैम। चलिए मैम इसी के साथ फरमाइश पूरा कीजिए क्योंकि हमारे बाद और भी लोग हैं इंतजार कर रहे होंगे।
7: जी जी, गाना प्ले करते हैं।
6: ओके मैम,
7: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: धन्यवाद।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: नमस्कार नमस्कार
0: नमस्कार।
1: शाम से बोला था मैं, शाम से महेंद्र राउत। महेंद्र राउत का शाम से गाना है वो सुने के रहा, मैंने देश प्रेमी भोजपुरी गाना है वो।
0: अच्छा,
1: वो गाना सुने के रहा बहुत दिन से लगाओ कहीं 140-142 बार लगाओ नहीं तो अभी
0: गाना बहुत सारा कॉल आवत रहे
1: तो हम करे के पड़ा था। शाम में तो बहुत बार बैल बा उन्हें कैसन बा खबर
0: भी बारिश
1: होता। शाम के तो बाढ़ के खबर मिलने हुई सबके उसे,
0: लेकिन गोपाल के एरिया में अभी बाढ़ नहीं आई, उन्हें देहात के एरिया में आई
1: तो बाढ़ है। शाम में जो रात शिव सागर चढ़ाई देव कहल जला एकदम पानी में गोटे गाँव चल गए, मारा सौ आदमी गयल पानी में दहा। और सब ठीक बात सब
0: चलिए बढ़िया।
1: चलिए सब गाना सुना दी हमार सुने वाला बालो हम बानी कथी कला प्रार्थना सुनील अनिल श्रोतागण सब सुनायम गाना।
0: गाना राउर काल बजे
1: काल बजे
0: जी
1: बात। नमस्कार
0: नमस्कार, सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम,
3: क्या खैरियत है सर?
2: जी बढ़िया है, अपना बताइए।
3: हम ठीक है, बेड पर सोए हुए हैं, दूसरा कोई काम है नहीं।
2: तबियत कैसी है आपकी?
3: 50 कॉल लगाए तो लगा जा करके। हमको एक कव्वाली सुना दीजिएगा। हेलो, अल्लाह का नाम पाक है जो पाक रहेगा।
2: ओके,
3: ठीक है
2: जी जी। और गाना किसी को सुनवाना भी है?
3: हाँ, पहले आप सुने, उसके बाद रिमझिम के जितने हमारे प्यारे दोस्त है सब लोग सुनेंगे।
2: ओके, तो आपका नाम?
3: हमारा नाम मनदीन अहमद है
2: जी।
3: नाम डुमरिया, उसका गाँव तलाक में पड़ता है।
2: अच्छा अच्छा जी, तो आपकी तबीयत कैसी है?
3: तबीयत वही है, ऑपरेशन जो हुआ है वो उसी में हमारे तकलीफ तो आई है, पूरा फ्रेश नहीं है
2: जी। तो चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे।
3: ठीक है
2: जी, ठीक है, तो गाना प्ले करते हैं आपका।
3: हाँ ठीक है, कब सुनेंगे?
2: ये गाना आपका कल बजेगा।
3: कौ बजे बजेगा?
2: 5 से 7 के बीच।
3: हाँ ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम, बते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: लश्कर बहा दिया।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: हम रमजान बोल बनारस से।
2: जी अपना नाम बता दीजिए और कहाँ से?
1: हम रमजान बाहर हूँ।
2: अच्छा, कहाँ से बोले रमजान जी?
1: बनारस से बोल रहे हैं रमजान।
2: क्या हाल चाल है आपका?
1: तो बढ़िया है।
2: अब क्या हो रहा है?

0: जी बता दीजिए।
1: जी एक बूढ़ी वयस्क औरत ये उसने गाना सुना जी।
0: कौन सा?
1: प्यार के हम मतवाले हैं, नारायण की आवाज में
0: जी
1: सुनना चाहते हैं।
0: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी चाहते हैं?
1: जी जितने चाहते हैं सभी सुनेंगे, आप लोग भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे, अपने दोस्त लोग के साथ सुनेंगे।
0: ओके,
1: प्ले होगा आज? प्ले हो जाए
0: जी, आपका कल बजेगा
1: जी। ठीक जी,
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंकिम 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: जी हम योगेश जांगड़े बोल रहे हैं हजूरा छत्तीसगढ़ से।
2: ओके, क्या हाल है?
3: जी बढ़िया है। हेलो
2: जी।
3: हाँ जी बढ़िया है।
2: चलिए अच्छी की बात है। तब क्या हो रहा है
3: अभी? बस घर में है।
2: अच्छा जी, तो
3: सारा गाना सुनना है।
2: बता दीजिए।
3: गाने की बोल है, तुमसे मिलने की तमन्ना है।
2: ओके, ये गाना आप डेडिकेट भी करना चाहते हैं?
3: जी कुछ मित्र लोग हैं, कृपाल गोयल जी, लोकन वर्मा जी, दिलीप पहुजा जी, रौशन देवान जी और सभी
2: साथी। वैसे क्या करते हैं आप?
3: हमारा खेती बाड़ी का मूल काम है।
2: अच्छा, चलिए अच्छी की बात है।
3: जी धन्यवाद
2: जी। तो आपका गाना प्ले करते हैं?
3: हाँ
2: जी, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
3: धन्यवाद।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: सलाम अलैकुम मैडम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: गाना सुने तो अच्छा सारी लग रहे।
1: जी जी, गाना सुना, नाम बता दिया अपन।
0: नाम मौलादीन मियां। गाना खेसारी लाल के बोल बम के।
1: अच्छा ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी करिए।
1: जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
3: नमस्ते, क्या हाल
2: है? जी बढ़िया है, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
3: बिल्कुल बढ़िया हूँ।
2: क्या हो रहा है?
3: क्या हो रहा है, तुम्हें कॉल लगा रहे हैं, दो घंटा होने वाला है, कॉलेज भी कर रहे हैं।
2: क्या करें, बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं तो उन्हें भी तो देखना पड़ता है।
3: और क्या बताएं, जल उठा रहे हैं कि नहीं?
2: जाने
3: वाले फोन होगा
2: तो गाँव के मंदिर में
3: बहुत जान पानी हूँ, बहुत भीड़ था।
2: बहुत ठीक चल रहा है।
3: कैसे बताइए?
2: सब बढ़िया। आप अपना नाम बता दीजिए।
3: मेरा नाम गणेश कुमार पिपरा नारायण।
2: जी नाम एक बार?
3: पिपरा नारायण से। गणेश, तो आप कहाँ गए थे? जलदार में था?
2: नहीं, यही के गांव में।
3: अपना ही गांव में?
2: ये
3: बढ़िया है। और सब बताइए।
2: जी जी, यहाँ पे भी सब बढ़िया। तो फरमाइश बता दीजिए।
3: बारिश का मौसम होगा क्या?
2: और आपके?
3: मेरे इधर तो पूरा मतलब अनहार हो गया चारों तरफ से। मेरा सिवान जिला में जो बहरिया, नहीं बहरिया, वहाँ से 5-6 किलोमीटर आउट दूर है। खाने वाला खाते हैं?
2: और आपका?
3: मेरा भी खाना हो गया है, दो बार हो गया है।
2: चलिए बहुत बढ़िया। तो
3: गाना बजा दीजिए। हम के बरस जरा थान के बरस, मेरे महबूब के घर जाना।
2: ओके, और गाना डेडिकेट भी है?
3: सबसे पहले आपको, भारती दीदी को, सोन दीदी को, रेडियो रिमझिम को सुनना है।
2: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
1: मैं इस्लाम लिखूँ।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: रेशमा बोलते हैं पठानपट्टी से।
0: जी क्या हाल है रेशमा जी?
1: ठीक बा, आप सुनाए?
0: जी हमरो बढ़िया बा।
1: हो गया नाश्ता पानी?
0: राहुल भाई लो।
1: हाँ हम फोन लगा था बेटा।
0: हाँ हाँ कहीं के लागल बा राहुल।
1: तो कहिया सुने के मिली गाना?
0: आधे
1: आधे सुने के मिल जाये। 5 बजे चालू करें तो मिल जाये सुने के ना?
0: बिल्कुल।
1: अच्छा आओ दिनों वाला रिकॉर्डिंग
0: ना कहना के भी बहुत सारे कॉल बाकी रहा था। कहीं आज बाजी
1: शाम को जब आज बाजी पहुँच गया तो ही कहाँ बाजी तो नहीं बाजी तो
0: बाजी वही बाजी
1: ये बाजी
0: सब और सब
1: हमने भी सब बढ़े बाप ने सुनाई लो।
0: हम लोग ये भी सबसे बढ़िया
1: बात ये लोग सबको ठीक बा
0: सबसे बढ़िया। अब बताएंगे कौन गाना सुने के बाद?
1: गाना सुना दी कौन सी गाना कौन सुना दी अपने पसंद से बढ़िया
0: यार वैसा मेहनत से कॉल कर ले बनी करो ये बता दी ना डायरेक्ट फरमाई सुनिए ले।
1: मेहनत सुनना तो हो गए करना एक बार ट्राई हो तो सारे बार जला को सारे बार तक हो जला सब लागे आज तो मैं जल्दी लाग गई ना। और सब सुनाई?
0: और सब बढ़िया बा। अच्छा रेशमा जी राहुल घर के लिए पड़ी
1: पठान बट बजा को आए तो तब ना भेट हो जाए बहन दूर थोड़ी जाए।
0: जी जी हम टाइम निकाल के तभी रोबस मिले।
1: हाँ तो बहन तो भेट हो
0: बावल ही कहो।
1: हाँ आए तो भेट कर और इस बार को समाचार सबको ठीक है?
0: हाँ हाँ सबके घर परिवार में भी सबके ठीक ठाक बा। तो गाना बता दी?
1: गाना बता दी
0: बताएंगे
1: तो कौन सी से गाना बा अंगना में गाना चाहता दूर मजनो पीटा था
0: और
1: सुनवावे के भी बा गाना सुन के सुन लो जितना लोग सुनो सबको सुनी।
0: अरे ठीक बात है और गाना प्ले करते हैं।
1: हाँ कौन
0: सुन रही सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: नमस्कार मैडम।
3: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: कमलेश बोल रहे हैं यहाँ रसुआ से।
3: जी, क्या हाल चाल है कमलेश जी?
2: आप लोग
3: मैडम? जी जी, आपका आवाज कट के आ रहा है।
2: अरे आप लोग ठीक है ना? सब कुछ सब चिंता है ना?
3: जी जी, यहाँ पे भी सब कोई बढ़िया है।
2: मौसम तो बहुत ठंडा हुआ है, बारिश हो रहा है क्या उधर?
3: बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन बारिश के जैसा मौसम बनाया हुआ है।
2: ठंडा मौसम है ना। गाना सुनना चाहते हैं मैडम?
3: जी बता दीजिए।
2: हम तो गाना सुनना चाहते हैं, तो भूखे हुनर में हरारे मिले गाना नहीं है, हिम्मत करेंगे तो गाना सुनना है।
3: ओके, तो ये गाना किसी को सुनाना भी है?
2: और मुकेश मिस्त्री है, इनको सुनाना चाहते हैं। जितना लोग सुन रहे रेडियो रिमझिम के आने वाले सब किसी को सुनाना चाहते हैं। अगर आपको
3: क्या करते हैं आप?
2: हम काम करते हैं, हेल्पर ही है, घर बना रहे हैं।
3: अच्छा।
2: घर बना रहे हैं, जुड़ाई कर।
3: अच्छा, तो अभी कहाँ है? यहीं पे।
2: हाँ, काम कर रहे हैं, काम पे है। कोनी मैडम कहीं गई है क्या मैडम?
3: छुट्टी पे है।
2: कितना दिन के लिए गई है?
3: अब आएंगे।
2: चलिए ठीक है मैडम, बताएगा ना शाम के गाना?
3: जी जी बजेगा।
2: ठीक है मैडम, इंतजार कर रही हूँ।
3: ओके, तो गाना प्ले करते हैं।
2: जी मैडम, नमस्कार।
3: नमस्कार, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार भारती मैम।
1: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंग 90.4 FM में।
0: जी धन्यवाद, कैसी हैं मैम?
1: बढ़िया, आप अपना बताइए, आप कैसे हैं?
0: जी हम भी मस्त हैं मैम। आज भारती मैम नहीं है, आपका नाम क्या है मैम?
1: जी मेरा नाम मनोरमा है।
0: जी मैम, तो हमको एक गाना सुनना है।
1: जी बता दीजिए।
0: गाना का नाम है मौसम की तरह तुम भी, यही वाला गाना सुनना है।
1: ओके, वैसे आपका नाम?
0: जी हम बोल रहे हैं, गोपालगंज से।
1: गोपालगंज में कहाँ से?
0: चंद्रगोखर रोड है ना?
1: जी जी
0: जी वहीं से बोल रहे हैं। भारती मैम हमको जानती है नहीं है क्या हुआ?
1: भारती मैम है, उनका दूसरा काम चल रहा है अभी।
0: जी मैम आज वो शो चलेगा योर वॉइस वाला?
1: जी जी चलेगा।
0: आप उसमें आती है तो अच्छा लगता है, आइएगा।
1: जी बिल्कुल।
0: आपका मतलब फरमाइश सुन रहे थे, मतलब मैसेज शामिल कर रहे थे, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा था सुनने।
1: जी
0: जी मैम, हम कितने नंबर पे हैं?
1: अभी आपका अभी दूसरा कॉल है।
0: जी मैम हम बहुत ट्राई कर रहे थे कि पहला कॉल लग जाए, लेकिन लग नहीं पाया, ऐसा नहीं टिक गया।
1: कोई बात नहीं, दूसरा लग गया ना।
0: जी मैम दो मिनट पहले से ही लगा रहे थे कि लग जाए, अब इसलिए नहीं लग पाया भाई। तो कब तक बजेगा
1: ये गाना आपका? शाम को बजेगा,
0: मतलब आज या कल?
1: आज ही बजेगा।
0: पहले वाला कॉल होगा तो नहीं बज पाएगा, नहीं तो कल।
1: जी
0: जी मैम थैंक यू,
1: वेलकम,
0: बाय मैम।
1: बाय। रेडियो 90.4 FM कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: ओके मैम।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
2: नमस्कार मैम।
3: नमस्कार,
2: आप भारती बोल रही हैं?
3: नहीं, भारती नहीं बोल रही, मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
2: अच्छा जी मैम, गाना जो ऐसी करते हैं बोलते हैं कौन दिन को सुनाया जाता है?
3: पहले जो रिकॉर्डिंग होता है उसके बाद ये बजता है अगले दिन।
2: रिकॉर्डिंग तो उसी दिन होता है, सोमवार को होता है, बुधवार, शुक्रवार।
3: जी
2: मैम, आप कैसी हैं?
3: मैं बढ़िया हूँ, आप अपना बताइए, आप कैसी हैं?
2: हम भी ठीक है मैम।
3: तब क्या हो रहा है?
2: अभी पूजा उजा करके खाना बैठे हैं, खाना खाने तो याद हुआ तो टाइम देखे तो 12:20 हुआ तो सोचे का कि आप कॉल करें।
3: जी,
2: 2 मिनट बात करें।
3: बढ़िया। तो वैसे अपना नाम बता दीजिए।
2: मैम मेरा सुनीता कुमारी, सुनीता कुमारी नाम है सुनीता।
3: और कहाँ से?
2: हाजियापुर से मैम।
3: ओके, तो फरमाइश बता दीजिए।
2: मैम जो हम साथ साथ में के हैं, मैया जसोदा, रीरा रंगैया।
3: अच्छा हाँ,
2: गाना बजा दीजिए मैम।

0: ओके और ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहती हैं?
1: सबसे पहले आपको आज इतना रेडियो म्यूजिक पर सुनते हैं और सभी भाई और बहनों को सभी को सुनाएंगे, हम भी सुनेंगे
0: जी। तो चलिए गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: थैंक यू मैम,
0: वेलकम।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं शाहबुद्दीन बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, हरियाणा से।
1: अच्छा जी, तो क्या हो रहा है फिर?
0: काम हो रहा है।
1: अच्छा,
0: कॉल तो लगता नहीं, पता नहीं कैसे कॉल लग गया आज।
1: चलिए, अब लग गया ना?
0: हाँ लग गया है।
1: तो बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मेरा नाम
0: हाँ
1: जी मेरा नाम अनुरमा है।
0: अच्छा
1: जी।

0: अगर पहली दफा बात हो रही है ना, मैं रेडियो पर बहुत ही सुनता हूँ, मैं रेडियो सुनता हूँ 2014 से, लेकिन वो काफी कम सुनता था जब टाइम नहीं मिलता है ना।
1: तो फिर गाना बता,
0: सॉन्ग का नाम है छोड़ के ना जाओ या तुझको मैंने दिल दे दिया, और एक लाइन है सुना दूँ?
1: जी बिल्कुल,
0: मैं लाइन सुनाता हूँ, ठीक है?
1: जी सुनाइए।
0: दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, दिन में मिल लेते रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या, और तुम कहते तो आंखों में बुला लेते, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। ठीक है, सुना दीजिएगा।
1: तो चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी शुक्रिया।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: Jab phone ring ring bajti hai to kehte hain hello, hello, hello, hello, hello.
5: Break के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश का रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009494911। जी हाँ, 8009494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: जी नमस्कार।
7: नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंजिंग 90.4 FM।
6: जी सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
7: जी
6: सर, मास्टर ग्राम धनाव से।
7: ओके,
6: मनोरमा जी बोल रहे हैं।
7: जी जी,
6: और सब बताइए।
7: और सब बढ़िया, क्या हो रहा है?
6: अरे क्या होगा, हम लोग का सिलाई है ना, टेलर का काम है, रोशन टेलर में। आप रोज सुन नहीं करती है, मैसेज आता है।
7: जी जी,
6: और खेती बाड़ी का काम हो रहा है इधर भी। बारिश हो रहा है कि नहीं आपके तरफ?
7: बारिश तो नहीं हो रहा है,
6: धूप निकला हुआ है।
7: नहीं, सुहाना मौसम है।
6: और चलिए गाना सुना दीजिएगा। तो मूवी का नाम है आई मिलन की रात, गाने मूवी का नाम है आई मिलन की रात, गाने का बोल सावन का महीना।
7: एक बार और गाने के बोल।
6: सावन का महीना आया है घटा से, बरसा है पानी, ओए माहिया बुझा दे आगे जिया से हो। समझ में आ गया ना?
7: जी जी, आप तो बहुत अच्छा गा लेते हैं
6: जी। और सुनने वाले सभी हमारे पोता है आजम अंसारी, अयान अंसारी, मुल्तान अंसारी और अलीशान अंसारी, सब हमारे घर ही के लोग हैं। और हम लोग जितने रेडियो सुनने वाले हैं सभी श्रोताओं के लिए सुनवाना चाहता हूँ। कब बजेगा मैडम?
7: नहीं, आज ही बजेगा।
6: आज तो 9 बजे, हम तो रोज सुनते हैं ना कार्यक्रम।
7: जी तो आज ही, मतलब कोशिश रहेगा कि आज ही बजे।
6: जी, और सोनी जी आएंगे कि नहीं?
7: आएंगी, अभी तो छुट्टी पे है। तो
6: अभी छुट्टी पे है, भारती जी से कल एयर बस में जुड़े थे, हम गाना।
7: जब तक सोनी जी नहीं आ जाएंगे तब तक भारती जी शो करेंगे।
6: जी जी जी,
7: तो गाना प्ले करते हैं
6: जी।
7: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
0: मधु सर यहाँ से बोल रहे हैं, राजू वार।
1: अच्छा,
0: सॉन्ग सुनना है।
1: जी बता दीजिए।
0: बोल बम के खेसारी लाल के आवाज में कोई भी अच्छा सॉन्ग बजा दीजिएगा।
1: अच्छा, और सुनवाना भी है किसी को?
0: रिमझिम सुनने वाले सभी श्रोताओं को।
1: तब क्या हो रहा है, खाना वाना हो गया?
0: हाँ, आज काम पर नहीं गए, छुट्टी में है।
1: वैसे क्या करते हैं आप?
0: गाड़ी उड़ी चलाते हैं खेत पर।
1: अच्छा, और रेडियो रिमझिम कैसे सुनते हैं?
0: यही मोबाइल में।
1: इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो हेडफोन के माध्यम।
1: अच्छा अच्छा, ये बढ़िया। और ये रेडियो रिमझिम कितने समय से सुन रहे हैं आप?
0: हम तो बहुत दिन से सुन रहे हैं, कभी कभी सुनते हैं, कभी कभी नहीं सुनते हैं।
1: अच्छा, तो कैसा लगता है आपको रेडियो रिमझिम?
0: अच्छा लगता है, सभी कार्यक्रम अच्छा लगता है।
1: ये बढ़िया,
0: ठीक है
1: जी। रेडियो रिमझिम 90.4 FM में कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो 8009294911 पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो अब हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
4: माता जी, रवा कहाँ जाए के तैयारी कैले बानी?
5: पुत्र गणेश, अब हमने के कैलाश पर ना रहल जाई।
4: काहे माता जी?
5: तो हर पापा बहुत तंग करता रहे।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

कहा भाई भैया कि तिरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तिरिया छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहा थे, सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।